गॉड इट्स फ्राइडे दोस्तों, स्वागत है आप सबका बर्फ पर 9 FM फनी जॉय रेडियो पर, मेरे शो पर जिसका नाम ही है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। हम सब थैंक गॉड इट्स फ्राइडे दिल से कह रहे हैं, लेकिन मेरा शो तो टोटली बज रहा है विथ थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। दोस्तों पता है, कभी कभी ना झेलू नाम कुछ भी करते रहते हैं, फ़ोन कर करके कुछ भी पूछते रहते हैं, एंड आई एम लाइक व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू झेलू नाम। उनका कॉल आया, कहते हैं नवनीता आप बताओ मुझे, आज तक पानी देखकर मुंह में रसगुल्ला आया है आपका, हर समय क्या करूं, रसगुल्ला देख के मुंह में पानी क्यों आ जाता है, क्यों पानी देख के मुंह में रसगुल्ला, आई मीन राइट पॉइंट टू बी नोटेड, पानी देख के कभी मेरे मुंह में रसगुल्ला नहीं आया है।

0: beautiful Ali Zafar, Aditi Rao Hyderi, one of the very cute romantic songs of 104.9 FM Funny Jar Radio सुन रहे हैं. मेरे अब बीच एक मेरे लिसनर जुड़ रहे हैं फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल. टोटली चैलेंज होके वो आ रहे हैं. लेट मी टेक हिम ऑन एयर. वेलकम टू गर्ल हिंदी हिंदी बोल आसिफ सर. हाउ आर यू? आई कांट हियर यू. हेलो Just one minute. Yes, you're on air.
1: Yeah.
0: Now I can hear you. Sorry. So yeah, तो आप challenged हो गए हैं अपनी wife से, right?
1: Yeah, I just accepted the challenge with my wife, so I just called you.
0: All right, so cute.
1: Calling the program.
0: तो very very nice. तो हम गल हिंदी हिंदी खेलने वाले हैं, but मैं सबसे पहले सबको बता दूँ, आप नेपाल से हैं, right? And you,
1: yeah.
0: How have you learned Hindi?
1: जो हमारा घर है ना, घर के वो मतलब करीब करीब 40 किलोमीटर के आजू बाजू में वो बॉर्डर रहता है.
0: अच्छा, अभी मैं ऑन एयर करती हूँ. अभी मैं वक्त स्टार्ट करती हूँ, हम बात उसी में करते हैं, राइट? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ आसिफ. अब आप कमाल की हिंदी बोलेगा, नो इंग्लिश एट ऑल. ओके
1: ओके,
0: देखिए ओके मत बोलिए, ठीक है? अभी ओके को छोड़ देते हैं, बट अभी हम शुरू करते हैं. ओके बोलो. ओके ओके, बहुत स्टाइल में. ऑलराइट, सो व्हाट वर यू सेइंग?
1: जो हमारा घर था, घर के करीब करीब वही मान लीजिए 40 और 50 ऐसा ही मैं लगता था वहाँ जाने के लिए. तो मार्केट करने के लिए हम लोग वहाँ जाते थे.
0: मार्केट करने के लिए? मार्केट तो किलोमीटर आप खा गए, मेरे को समझ आ गया कि मेरे को आपने संभाल दिया अपने आप को, बॉर्डर को भी हटा दिया, लेकिन हम मार्केट में घुस गए. सो क्यूट, आप वेरी वेरी नाइस. और कितना है, मतलब कितना क्यूट हिंदी बोलते हैं. आपने सीखा कैसे, आपने क्या बोला?
1: यस प्लीज.
0: योर वाइफ सेड कि आप हिंदी बोलते नहीं हो.
1: शी इज सो हैप्पी
0: ना. ओ माय गॉड, सुपर. टेक केयर बोथ ऑफ यू, एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द वीकेंड. आप हार गए, उनको खुशी दे दी, बस इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. आप तो बहुत सस्ते में छूट गए. All right.
1: Okay, all
0: right. So welcome so much. बोलो, किसी को इतना खुशी दे दो आप इतने सस्ते में, इससे बेटर बात ही क्या हो सकती है.
2: That's right.

0: such a beautiful, happy, happy song, right? Salame Ishq, Adnan Sami ki awaaz to bas very unique hai. So we just, you know, hum pehchan mein aa jaati hai without even telling kaun hai singer. That was Adnan Sami. Chale, lete hain apne agle caller ko. Good evening, Fanisha. Radio par aapka swagat hai. Naam kya hai?
1: Sandeep.
0: Sandeep, aapka swagat hai. Ab aap bhi challenge par आए हैं.
1: हाँ जी, हाँ जी.
0: क्यों बताइए?
1: ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, मैं उनको उनकी खुशी के लिए आया हूँ.
0: उनकी खुशी के लिए आया हूँ. अच्छा, क्यों?
1: बस उनको ये चाहिए था कि मैं कोशिश करूँ, तो मैं कोशिश करने आ गया.
0: चलिए शुरू करते हैं आपका वक्त देन.
1: जी,
0: संदीप का वक्त शुरू हो चुका है और ये कोशिश कर रहे हैं अपनी उनकी वाइफ जो ऑलरेडी जीत चुकी हैं एक बार, और आज संदीप जीतने वाले हैं. राइट,
1: कोशिश करूंगा.
0: वेरी नाइस. तो कहाँ चली आपकी ये सवारी?
1: मैं अपने दूसरे बेटे के साथ भ्रमण के लिए निकला हूँ.
0: दूसरे बेटे? पहला बेटा मतलब यू हैव टू किड्स?
1: हाँ जी.
0: तो एक बड़ा है और एक छोटा है.
1: हाँ जी, ये चार पैर वाला मेरा बच्चा है जिसको गाड़ी में घूमने का आदत है.
0: फरी बेबी?
1: हाँ जी.
0: राइट. सो उसको आपने ऐसे आदत क्यों डलाई?
1: जब भी मैं अपने गाड़ी की चाबी उठाता हूँ तो उसको लगता है कि उसका टाइम हो गया है घूमने का.
0: टाइम?
1: तो वो आके बैठ जाता है.
0: टाइम?
1: हाँ जी, गड़बड़ होगी.
0: छुट्टी हो गई.
1: हाँ जी.
0: आई नो. तो क्या है आपके ये फरी बेबी का नाम?
1: गब्बर.
0: गब्बर रखा आपने? रियली?
1: हाँ जी, हाँ जी.
0: आई लव इट. आज आपने शोले सुना था? शोले का स्टोरी हम
1: लोग आप उसको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, गब्बर इन डैलस.
0: ओह रियली, हाउ स्वीट. गब्बर इन डैलस. अच्छा ठीक है, ये तो फॉलो करना पड़ेगा मुझे, देखना तो पड़ेगा ही.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: ओके, थैंक यू संदीप. एंड दिस वाज नाइस. गब्बर इन डैलस. कितने आदमी थे वैसे?
1: हमारे पास तो दो ही
0: है ना. सुपर. गब्बर के पास भी दो ही थे. थैंक यू.
1: थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.
0: बाय बाय.
2: और ये तुम्हारा अपना, हमेशा तुम्हारा अपना रहेगा.

सच ब्यूटीफुल सॉन्ग, मीठे घाट का पानी और रंग शरबतों का, तो दोनों मीठा मिला के मीठा शरबत बनता, राइट? रंग एंड मिठास इज द शरबत। वैसे जिंदगी में मिठास आती है मीठे बोल से, मीठे केयर से। इफ समबडी डेफिनेटली केयर्स फॉर यू, उससे हमारी ज़िंदगी में भी मिठास घुल जाती है। और स्पेशली जब हम बीमार हो ना, अगर कोई ख्याल रखे ना, तो वहीं मिठास आ जाती है। और वही दावा करते हैं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर हमारे साथ, सब वक्त बिता के। बिकॉज़ एवरी डॉक्टर डज नॉट स्पेंड जस्ट लाइक 5 मिनट आपको सुना और आपको रफा दफा कर दिया। दे वुड डेफिनेटली लिसन टू यू, गिव यू एन अपॉइंटमेंट फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, लिसन टू यू एंड टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज दे ट्रूली मेक एन एफर्ट टू गिव यू इनफ टाइम फॉर योर हेल्थ एंड ट्रूली अंडरस्टैंड यू। बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली। और पता है आपकी और आपके फैमिली के लिए पैशन हेल्थ जो है प्राइमरी हेल्थ, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, 30 मिनट इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल एनजाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटामिन B12 डिफिशेंसी टेस्टिंग एंड मोर आर ऑल अवेलेबल एट पैशन हेल्थ। तो फिर करना क्या है, फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए, अपना स्केड्यूल आज ही कर लीजिए, 214-666-6259, एंड यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट देयर। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज़ अ पैशन एंड दैट इज़ वॉट दे से ऑल द टाइम। सुन रहे हैं 104.9 FM, फनी जो रेडियो।

0: सुपर ओ मेरी लैला 104.9 FM फनीजा रेडियो सुन रहे हैं. वेलकम, स्वागत है आपका, स्वागत है ऑन फनीजा रेडियो.
1: हेलो,
0: हाय.
1: हाय.
0: ओके, व्हाट्स योर नेम?
1: अंकित.
0: अंकित, अच्छा. हाय, हाउ आर यू? आप क्या स्पीकर फोन पे हैं या ब्लूटूथ पे?
1: नहीं, मैं स्पीकर पे हूँ, घर पे हूँ.
0: हाँ, तो स्पीकर से हट जाइए प्लीज.
1: हाँ जी.
0: ओके, आप घर पे हैं? आप घर पे रेडियो सुन रहे हैं?
1: मैं कॉल पे था बट टाइम लग गया कॉल लगने में, सो आई केम बैक होम.
0: ओके, मतलब गाड़ी में चले थे, फोन लगाते रहे और अब घर पहुंच गए. मुझे पूरा सीन समझ आ गया है. तो आपका वक्त शुरू किया जाए?
1: बिल्कुल.
0: ऑलराइट, हियर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सुपर डुपर, तो ये लंबी चौड़ी सवारी दूर से आ रही है, कहाँ से आ रही है?
1: हाँ, दूर से आ रही थी.
0: क्या कर रही थी?
1: हाँ, अपने बेटे को तैराकी केंद्र लेके गया था.
0: ओके, वाओ, तैराकी केंद्र, आई लव दैट. ओके, सो इट वाज अ हॉट डे बट इट्स एन इंडोर और एन आउटडोर पूल?
1: ये अंदर था.
0: अच्छा, तो माय गॉड, अब तो एयर कंडीशनिंग ऐसे ही रहती है, नथिंग रियली इज हॉट. So, कैसा? So, is he a competitive swimmer, your son?
1: नहीं.
0: नहीं.
1: अभी वो सीख रहा है.
0: कितना छोटा है?
1: वो 10 साल का है.
0: Nice. तो फिर सिखाने में थोड़ी सी देर किए कि ऐसा है कि हमने सोचा कि अब तैरना सीखना चाहिए?
1: नहीं, सीख रहा है काफी वर्षों से.
0: मतलब सीख लेते तो एक बार सीख

0: कि हमने सोचा कि अब अब तैरना सीखना चाहिए?
1: नहीं, सीख रहा है काफी वर्षों से।
0: मतलब सीख लेते तो एक बार सीख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या सीखते हैं?
1: धीरे धीरे आगे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं एक एक करके।
0: लेवल्स?
1: हाँ जी।
0: राइट, वेरी नाइस। व्हाट डू यू डू?
1: मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ।
0: ओह, कंप्यूटर नहीं बोल सकते?
1: अच्छा, ऐसा था।
0: ऐसा था, कंप्यूटर नहीं बोल सकते? ओह माय गॉड, क्या करूँ। ये कंप्यूटर का जो वर्ड है, कंप्यूटर आया ही है जब हमारी जिंदगी से हिंदी चला गया है।
1: ये तो है।
0: है ना? ओके, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बट आई नो आपने बहुत प्रतीक्षा की और फिर लगाया, और यू नो इसको क्या बोलते हैं, संगणक। ओह माय गॉड, मैं तो अब मैं कोई तो, हाँ संगणक, नेक्स्ट टाइम
1: संगणक, आई थॉट कैलकुलेटर होता है।
0: हाँ, बट हमारा जो महाराज है ना गूगल साहब, वो कह रहे हैं कंप्यूटर इज, हाँ संगणक।
1: ओके, थैंक यू मेरा ज्ञान वृद्धि करने के लिए।
0: शुक्रिया, थैंक यू मेरा भी ज्ञान वृद्धि करने के लिए, मुझे भी नहीं पता था, बट थैंक यू। यू हैव अ वंडरफुल वीकेंड। ओके,
1: यू टू, बाय बाय
0: बाय बाय। सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो, और बस सुनते रहिए। कभी कभी ना मुझे कुछ ख्याल आता है, वो ख्याल मैं आपको अभी बताओ सोच रही थी, लेकिन फिर मेरी आंखें जो है सामने लगी घड़ी पर गई, और मुझे दिख रहा है कि हम एक छोटे से प्यारे से नन्हे से ब्रेक की तरफ बढ़ने वाले हैं। सो ब्रेक में ये होता है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं, और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शायद अभी इसी वक्त आपके दिमाग में चल रहा हो कि कहाँ मिल सकता है ये इन्फॉर्मेशन। यहीं यहीं यहीं तो है वो, सुनते रहिए।
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest. Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
5: Beta, 95% aaye?
6: Haan, mummy.
5: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
7: Mera?
5: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated?
8: School ka report card saal mein ek baar aata hai, but business ka report card har mahine. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
9: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
11: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
10: Jahan har flavor करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज।
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
13: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
14: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
13: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
16: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है।

0: चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
1: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1000.
2: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
5: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
7: वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फनेशिया रेडियो पर. दोस्तों पता है, सोचने की बात है. ये जो आप जब ये जो वेट वाइप्स होते हैं ना, वेट वाइप्स के जो पाउचेस होते हैं, उसमें से जब आप वेट वाइप निकाल रहे होते हैं तो एक निकालते हैं, तीन निकल जाते हैं, चार निकल जाते हैं. होता है आपके साथ यार? एग्जैक्टली एक निकालने के लिए आपको बहुत स्मार्टली निकालना पड़ता है, सिर्फ एक वो निकले गए. सोच के देखिए, जिसने भी ये पैकेट को ऐसे डिज़ाइन किया है, ये हमारे एटीएम मशीन्स को ऐसे डिज़ाइन नहीं कर सकते थे कि आप खाली एक निकाल रहे हो, चार पांच निकल रहा है. यू नो एटीएम, यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. वेलकम बैक, स्वागत है. ये आखिरी आधा घंटा मेरे साथ.

0: सो ब्यूटीफुल फहीम अब्दुल्ला की आवाज़, म्यूज़िक भी उन्हीं का, अरशाद निज़ामी और तनिश बागची एंड बोल इरशाद का, इरशाद कामिल के, सुपर्ब, लव दिस सॉन्ग, ब्यूटीफुल। सुन रहे हैं 104.9 FM फनी जॉय रेडियो। मेरे ये आखिरी लिसनर जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ गल हिंदी बोल में, गुड इवनिंग फनी जॉय रेडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम बताइए प्लीज।
1: जी किरण है मेरा नाम।
0: गुड इवनिंग, वंडरफुल। सो किरण, यू वांट टू प्ले गल हिंदी बोल?
1: जी,
0: तो वक्त शुरू किया जाए।
1: जी बिल्कुल,
0: सुपर वंडरफुल। वेयर आर यू फ्रॉम किरण?
1: मैं हैदराबाद से हूँ।
0: आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट। माय ठीक है, हैदराबाद से हैं आप? ओके, सो यू ग्रो अप इन हैदराबाद और बॉर्न?
1: जी मेरी पैदाइश हैदराबाद में हुआ है।
0: हाँ, एंड देन
1: हमारा जन्म वहाँ पे हुआ है, हमारा पढ़ाई वहाँ पे हुआ है। फिर 20 साल पहले हम यहाँ आए पढ़ने के लिए।
0: ओ, 20 इयर्स पहले आप पढ़ने के लिए आए, एंड देन यू डिड योर पोस्ट ग्रेजुएशन?
1: जी, हम अपनी ऊपरी विद्यालय में पढ़ने आए।
0: But how is your Hindi so good?
1: जी, हम जब हमारे 10वीं कक्षा में हम प्रायोजित हुए, 11 और 12 कक्षा पढ़ने में हमारे को सुलभ दिया गया।
0: आइदर माई नो, बट यू आर गुड मैन। ऐसे वैसे बहुत हैदराबाद आप लोग इतना अच्छा हिंदी बोल लेते हैं विद एन एक्सेंट, बट सुपर ऑसम। बट यू गाइस हैव थर्ड लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज हिंदी?
1: ये हमारी मातृभाषा तेलुगु है और हिंदी सेकंड लैंग्वेज है।
0: सेकंड, सो फर्स्ट तो इंग्लिश पढ़ते हैं आप स्कूल में?
1: जी हाँ, पढ़ने के टाइम में ब्रिटिश इंग्लिश।
0: हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश, एंड देन तेलुगु सेकंड लैंग्वेज।
1: जी,
0: एंड देन थर्ड लैंग्वेज इज हिंदी?
1: हिंदी जी, थर्ड हमारा थर्ड लैंग्वेज है। SSC सिलेबस था हमारे के जमाने में।
0: हाँ,
1: अभी SSC नहीं है, अब पूरा सेंट्रल सिलेबस CBSE हो गया। मगर वेन हमारा 11 और 12 में अपने को चॉइस दिए तो आई चूज हिंदी।
0: Nice.
1: So that's why I'm very reading and affluent in Hindi. Actually, it's been a while, but yeah.
0: Right. For us, it was Sanskrit. So I had done my third language, Sanskrit. Oh my God, abhi tak Sanskrit nahi aani jaani, raat ko yaad karni, subah bhool jaani. I used to say. Matlab phalam phale phalani, usme hota hai. Phalam phale phalani, humko Sanskrit nahi aani jaani, raat ko yaad karni, subah bhool jaani. Aisa. बट ऑसम
1: शायरी, बहुत अच्छा है
0: शायरी। मैं तो बना लिया है क्योंकि ऐसा ही होता था रट रट के, वो जो 40% आ जाता था विद संस्कृत जो पढ़ो वही लिख दो, बट द ट्रांसलेशंस वर माय गॉड फॉर मी क्रेजी।
1: हमारे को भी एग्जाम के टाइम में लिखना है तो पूरा रट्टा मार के जाते थे
0: संस्कृत रट्टा मार के। लव इट, ऑसम, थैंक यू सो मच। यू हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड enjoy your hindi whatever, jo bhi aap hindi mein kha le.
1: Ji, thank you so much, really appreciate. You have a good weekend too.
0: You too, bye bye. sun rahe hain sunte rahiye.
2: Pure hafte ka bharat tay ho gaya. Waise aap itni

ये फिल्म केदारनाथ से लिया गया, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है. एंड यू नो द साउंड ऑफ द वादियाँ, यू कैन फील इन द सॉन्ग, डोंट यू थिंक सो? है केदारनाथ के इर्द गिर्द ये फुल्ली ऑन द माउंटेन्स शूटिंग डन देयर एंड द म्यूजिक जस्ट लाइक दैट. एंड दिस म्यूजिक डन बाय अमित त्रिवेदी. सिंप्लिसिटी में ही वो इतना कुछ कह जाते हैं. जस्ट लव दिस म्यूजिक डायरेक्टर. I love that we have AG Fintechs in town, and this part of my show is brought to you by them, AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. Whether you are in an individual, a startup or an established business, AG Fintechs aapko offer karte hain innovative financial solutions tailored to your needs. Bookkeeping le lijiye, payroll accounting, bank and credit card reconciliations, to proactive tax planning, har kuch, tax compliance, financial reporting, business advisory services. They help keep your finances organized, compliant and future ready. To phir kya sochna? Trusted, efficient, committed hain aapki success ke liye. AG Fintechs naam hai and they are your partner in building a stronger financial future. फोन उठाई, नंबर दबाइए 4699429888 या फिर विजिट कीजिए agfintechs.com. अब जो आ रहा है ना, एकदम ब्रांड न्यू गाना आ रहा है फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक. एंड दिस इज अगेन यू नो फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निज़ामी और तनिष बागची का मिला जुला एफर्ट collaboration. And I know a lot of you are still waiting to play Hindi Hindi. Ab humne girl Hindi Hindi bol aaj ke liye bas utna hi tha. A little bit more of the show till I say sayonara. Right? Yes.

ब्रांड न्यू टॉक्सिक का गाना टॉक्सिक जो रिलीज होने वाली है अगस्त में, यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, क्यू मकरेशी और तारा सुतारिया एंड डायरेक्टेड बाय गीतू मोहनदास. बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये रिलीज़ होगी, कन्नडा, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम और इंग्लिश में भी. वाओ, सो मैनी लैंग्वेजेस एंड दिस इज़ अ फेरी टेल मलयालम. टॉक्सिक फेरी टेल. सुनते रहिए 104.9 FM फन एजा रेडियो. और पता है, एक फेरी टेल अगर हो, हेड टू मालाबार गोल्डन डायमंड्स ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. आपका डेस्टिनेशन है फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन. From beautiful rings and earrings to dazzling necklaces and contemporary diamond styles, find the perfect piece for engagements, anniversaries, celebrations, ya phir simply treating yourself. Wo sabse best hai, apne aap ko aise treat kar lene ka. Experience kijiye unmatched craftsmanship and brilliance at Malabar Gold and Diamond in Frisco. Aur phir bhuliyega mat, download kar lijiye Malabar Gold and Diamond mobile app for the latest collections, updates and more details. ये एक गाना है, ये भी ब्रांड न्यू है लेकिन पुराना गाना 2.0. इसमें अभी 2 ही डाला है, 2.0 नहीं बनाया. ऐसे याद है वो इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन, ये आवारापन.

0: Did you see this? Oh my God, kya beautiful. Different. Lee made the same song, Awarapan. Jaane ka waqt to ho gaya hai mera. Waise aaj ka din kaafi acha tha, temperatures ke anusar. Aur tonight it is again partly cloudy. 80s mein pahunch gaya hai low. So that's beautiful. Kal shaniwar, partly cloudy again. 78 low, 99 high. 12 miles per hour pe hawaye chalengi. संडे को मोस्टली सनी रहने वाला है बट 77 हाई एंड 100 हाई 77 लो सॉरी 77 लो एंड 100 हाई सो अगेन बिकॉज सन बाहर आ जाएंगे तो आज तपिश किसी ने मेंशन किया कि आज बिकॉज क्लाउड्स थे तो तपिश कम थी अब तपिश आ रही है संडे को मंडे को भी वैसा ही मोस्टली सनी 101 हाई ट्यूजडे टेरिफिक ट्यूजडे 102 हाई मजा दो भाई वेडनेसडे को 100 हाई मैं लोअर नहीं बोल रही हूँ वो 78 टू 80 के बीच में ही है थम्स अप थर्सडे 98 हाई 80 लो तो फ्राइडे फिर मैं आ जाऊँगी आज ही की तरह आज से थोड़ा हाई टेम्परेचर रहेगा क्योंकि आज 95 हाई एंड 80 लो बट थम्स अप फ्राइडे नेक्स्ट फ्राइडे को 98 हाई 79 लो पर जैसे ही आऊँगी आके यहाँ पर बहुत सारा तूफान मचाऊँगी और उसके बाद वाले सैटरडे को थंडर स्टॉर्म्स है तो आज देती हूँ आपको ये सूचना कि मैं जाने वाली हूँ दैट इज़ द एंड ऑफ माय शो टुडे एंड आने वाली हैं स्वाति अगले हफ्ते मुलाकात होगी पर थैंक यू सो मच शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरा साथ देने के लिए और किसी ने कहा है पेशेंस एंड साइलेंस आर टू मोस्ट पावरफुल एनर्जीज Your patience makes you mentally strong and your silence makes you emotionally strong. Oh my God. So patience or silence, apne hathiyar hain, un hathiyar ko apna hathiyar samajhiyega self-protection ke liye. Okay? Use it sometimes for self-protection. With that thought, good night, sleep tight, get up happy, fresh and bright. Wishing you a flowerful morning, a colorful noon, a joyful evening and a peaceful night. And I know, it's going to be a fantastic day for you tomorrow. Started with a cup of positivity. Phir dekhe din kaisa jata hai. Bilkul positive. Kyunki aap positivity hi phailayenge, hai na? To wahi kijiye, pure hafte, agle hafte milungi. 5 se 8, straight from the heart on, thank God, it's...
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
0: कहाँ गया कहाँ रखा था सुनो ना मेरा वो वाला सेट कहाँ है
3: कौन सा
0: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
3: अरे सारे तो सेम है
0: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये देखो ये वाला
3: ओ हाँ ये तो अलग है
4: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
0: Oh... उमर ख्वाजा
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com
6: भूख लगी
7: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग
9: अ क्विक बाइट अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर यू गो टू Page 3 हब 121 मैकिनी
10: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
9: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
16: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
17: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
16: नहीं।
17: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
16: नहीं।
17: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
16: वो भी नहीं।
17: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
18: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.

मैंने भी एंट्री मार ली है और मुझे भी इंतजार है कि कब मेरे भी फोन की घंटी बजे और मैं यानी कि आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम। मेरा और आपका साथ रहने वाला है अगले दो घंटे यानी कि पूरे 10 बजे तक। तो शुरू करते हैं आज का शो। आज का टॉपिक ना काफी हटके है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन हिंदी सॉन्ग्स के बारे में जिनके बीच में अचानक से कोई दूसरी लैंग्वेज आ जाती है। कभी तमिल में एक लाइन, कभी तेलुगु, कभी पंजाबी, कभी बंगाली और कभी मराठी का एक कोई पॉपुलर फ्रेज। तो आज का सवाल भी आपसे यही है कि आपको ऐसे गाने याद है क्या जहां पे बीच में हिंदी सॉन्ग के बीच में बेसिकली दूसरे लैंग्वेज का कुछ वर्ड्स, कोई लिरिक, कोई फ्रेज यूज हो रहा हो। अगर आपको याद है तो आप हमें भी बताइए बाय कॉलिंग अस 972-235-5555। और मैं आज का जो सेगमेंट है वो पंजाबी तड़के से शुरू करना चाहती हूँ। आई एम गोना प्ले सरी गली फॉर यू और इसके बाद एक और अमेजिंग सा पंजाबी का सॉन्ग बजाऊंगी। स्टे ट्यून्ड।

आज हम बात कर रहे हैं उन हिंदी सॉन्ग्स के बारे में जिनके बीच में ना लिरिक्स या कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज दूसरे लैंग्वेज में होता है। और शुरुआत हमने पंजाबी के साथ की थी, सड़ी गली प्ले किया था और बहुत सारे कॉलर्स ने भी हमें कॉल किया और याद किया कि उनकी कौन कौन सी ऐसी फेवरेट सॉन्ग्स है जिसमें दूसरे लैंग्वेजेस यूज किए हैं। और सबसे पहले नंबर पे उसमें ये वाला सॉन्ग है कि अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती में कहते हैं, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज हुए हैं। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी एप्ट सॉन्ग फॉर टुडेज सेगमेंट। चेतन ने कॉल किया और एक और लिसनर ने मेरे को कॉल किया था। और इसके अलावा वैशली जी ने भी कॉल किया, उन्होंने याद किया मुन्ना भाई MBBS का जो एंट्री सॉन्ग है ना, जब वो बोलते हैं कि MBBS का फुल फॉर्म क्या है, बोले तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज हुए हैं दूसरे लैंग्वेज के। सुजाता जी का कॉल आया था और उन्होंने याद किया सेनोरिटा एंड दिल से। इनमें ना, और दिल से अगर आपको याद, सेनोरिटा तो ऑफकोर्स इसमें दूसरे लैंग्वेज का यूज है ही, और दिल से में जो वो एक पर्टिकुलर, आई थिंक हम दोनों ही कंफ्यूज थे कि वो तमिल है या मलयालम है, लेकिन अंजरी मंजरी कंजरी का आप समझ रहे ना वो कौन से ट्यून या सेगमेंट की मैं बात कर रही हूँ। और अब आगे बढ़ते हैं बंगाली वर्ड्स का यूजेज की तरफ और शुरुआत करेंगे आमी जे तुमार से। आई मीन बंगाली सॉन्ग अगर हिंदी या बॉलीवुड मूवीज में बात करें तो यही है जो हम टॉप लिस्ट पे आता है। इसके अलावा एक कहानी मूवी से है एंड दैट्स एकला चलो रे, लेकिन आज हम बजाने वाले हैं आमी जे तुमार।

0: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
1: लिया।
0: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
1: नहीं आया।
0: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
2: Visit www.sanadainc.com today.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
3: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
4: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ।
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ।
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ।
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है, SFL Worldwide को कॉल कर।
7: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
3: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com।

0: strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

फन एशिया 104.9 एफएम हो और ढोल ना बजे, अच्छे अच्छे गाने ना बजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तो और आरजे सिम्मी के शो पे ना बजे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप है मेरे साथ अगले 1.5 घंटे तक, भाई पूरे 10 बजे तक मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। बहुत सारे मस्ती मजाक होने वाली है। वैसे आज का सेगमेंट काफी स्पेशल था। आज हमने बात की उन सारे हिंदी सॉन्ग्स के बारे में जिनके बीच में ना दूसरे लैंग्वेजेस के वर्ड्स, फ्रेज, लिरिक्स, सेंटेंसेस यूज हुए हैं। और इसके साथ बहुत सारे लैंग्वेजेस का मजा लिया हमने। कभी कभी बंगाली का इमोशन सुना, कभी पंजाब द प्यार, मराठी का फोक फ्लेवर, राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, तमिल, तेलुगु, थोड़ा रह गया, टाइम नहीं बचा, लेकिन अगले शो में जरूर करेंगे इसको। और यही तो सबसे अच्छी बात है, अगर हम सारी चीजों को लेके एक साथ आते हैं ना, तो अलग ही एक फ्लेवर, अलग ही एक अंदाज, अलग ही एक शो बन के आता है। और अभी तो बहुत कुछ है आपसे बातें करनी है, लेकिन एक नेक्स्ट अमेजिंग सा सॉन्ग प्ले कर देती हूँ आपके लिए। स्टे ट्यून, दिस इज फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

तेनू लेके मैं जा मांगा, लेकिन लेके जाओगे कहाँ यार, घर भी तो होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास घर नहीं है अपना, जैसा भी हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, और अगर आपको जैसा ना सपना है आपका कि यार एक घर अपना हो, तो ड्रीम होम मॉर्गेज आपको इसमें काफी मदद कर देंगे, और उन्होंने काफी मदद की है बहुत सारी फैमिलीज की सिंस 1998। और इनके पास सारे के सारे US के 50 स्टेट्स के लाइसेंस भी अवेलेबल है, और इतने सालों से जो ये सर्विसेज देते आ रहे हैं, इसकी वजह से इनकी टीम को काफी एक्सपीरियंस हो गया है। और अगर आपको ना एक राइट लोन ऑप्शन चाहिए जो कि आपकी जरूरतों के अकॉर्डिंग टेलर किया गया हो, चाहे आप अपना पहला घर खरीद रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, या फिर रीफिनेंसिंग ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ड्रीम होम मॉर्गेज आपको इसमें काफी मदद कर देंगे। तो अभी कॉल कीजिए उन्हें एट 972-245-5626, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज ड्रीम होम मॉर्गेज.com।

धुम तारा धुम। और वक्त आ गया है हमारे गिव अवे राउंड का, तैयार हो जाइए क्योंकि हम एक नहीं पूरे दो विनर चूज करने वाले हैं एक सवाल के बाद। और अगर आप ये जीतते हैं तो आपको मिलेगा सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से एक फ्री डोसा, जो भी आपकी चॉइस हो, आपको प्लेन, मसाला, घी, गरम, जो भी खाना हो वो एक डोसा प्लस एक फिल्टर कॉफी भी। मेरे लिए तो ये पूरा का पूरा मील है भाई, एक टाइम का खाना है और ये पूरी तरह से 100% वेजिटेरियन है। तो अगर आप वैसी रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं जहां प्योर वेज मिलता हो तो देन दिस इज योर रेस्टोरेंट गाइस। सवाल पूछ लेती हूं मैं फटाफट आपसे। आपको बताना है तीन ऐसे सॉन्ग्स जिसमें ये वर्ड माही यूज हुआ हो, ठीक है? और आपको मुझे कॉल करना है बताने के लिए। 9722355555 पे कॉल कीजिए और मुझे बताइए। और दो विनर होने वाले हैं जैसे कि मैंने बताया, तो मैं इंतजार कर रही हूँ भाई आपके कॉल का।

0: तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: वेट, इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं हीरो।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
1: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
9: What?
10: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
11: बेटा, 95% आए?
12: हाँ मम्मी।
11: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
13: मेरा?
11: हाँ। Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
13: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूं आरजे सिमी और स्टूडियो में वक्त हो गया है 9:08 और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों से पूछा था आज का गिव अवे राउंड का क्वेश्चन, आपको बताने थे वो तीन सॉन्ग जिसमें ये वर्ड माही यूज होता है और आज के विनर हैं, एक्चुअली दो विनर्स हैं हमारे पास, आशीष एंड ईशान। सो कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, आपको मिलता है सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से फ्री डोसा एंड अ फिल्टर कॉफी और 100% प्योर वेज रेस्टोरेंट है। यहां आपको क्रिस्पी डोसा मिल जाएगा, फ्लपी इडलीज मिलेंगे, पूरा साउथ इंडियन का जो फेवरेट ब्रेकफास्ट वगैरह होता है ना, एकदम जो टेस्टी होता है, जो यू नो ग्लोबल लेवल पे जो इडली डोसा वगैरह होता है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा और शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी मिलती है गाइज यहाँ पे, तो जरूर जाइए और एंजॉय कीजिए यहाँ का खाना। फैमिली डिनर हो या केटरिंग सर्विसेज हो, आप सैन इडली रेस्टोरेंट को जरूर याद करें और ये लोकेटेड है हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन पे। सो गाइज डू विजिट इट।

वैसे अगर आपको डांस से प्यार है, डांस करना पसंद है, डांस परफॉर्मेंसेस देखना पसंद है, तो आप लोगों के लिए खास और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि प्रभु देवा आ रहे हैं भाई डैलस में लाइव, वो भी पहली बार उनका शो हो रहा है यहाँ पे। तो और वो अकेले नहीं आ रहे, बहुत सारे अमेजिंग डांसर्स के साथ आ रहे हैं, जैसे कि लॉरेन गॉटलिब हो गई, उनको आपने देखा होगा, वो ABCD मूवी की लीड स्टार थी, जो पहला ABCD थी ना उनकी वो लीड एक्ट्रेस थी। एंड सोनल भदौरिया आ रही हैं, अलेक्जेंडर नोएल, हरिणी आ रहे हैं, एंड नताशा एंड सानवे, बहुत सारे अमेजिंग डांसिंग स्टार्स आ रहे हैं। एक अल्टीमेट पैन इंडिया डांस कॉन्सर्ट होने वाला है सैटरडे को, August 1 को, एट टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी। तो आप लोग जरूर जाएं, एंड प्रभु देवा के फैंस यार, आप लोग तो अभी तक अगर आप तो टिकट्स नहीं खरीदी हैं तो कॉल करके खरीद लीजिए। कॉलिंग के लिए नंबर मैं बता देती हूँ, इट्स 2482333828, या फिर आप फन एशिया नेटवर्क के किसी भी सोशल हैंडल पे चले जाइए, वहाँ पे सारे पोस्ट पिन किए हुए हैं, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे कि कैसे आपको प्रभु देवा की कॉन्सर्ट के लिए टिकट्स खरीदने हैं। और इतनी सारी बातें हो रही है प्रभु देवा की, बात और मुकाबला सॉन्ग ना बजे, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। We are the sounds of the streets.

इश्क तो भाई देखिए है ही मुश्किल कर देता है जीना, लेकिन एक और चीज़ है जिसकी वजह से जीना मुश्किल हो सकता है अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए. बहुत डिफिकल्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करना. एक तो है कि आप जो लॉस से डील कर रहे हैं, मतलब एक्सीडेंट हो गया अगर कुछ, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही हेल्थ रिलेटेड और हॉस्पिटल. और अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये पार्ट तो एटलीस्ट टेकन केयर ऑफ है, लेकिन आपको पता चलता है कि ऐसा नहीं है. उनके इनसे कॉम्पनसेशन का अमाउंट निकलवाना इतना मुश्किल है कि तो वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप उनसे डील करेंगे. तो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं ओमर ख्वाजा, ये अटर्नी है और इनकी जो पूरी टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है. ये इंश्योर करेंगे कि आपको अपना पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन मिले, और तब तक आपको इनको पैसे नहीं देना है जब तक कि आप अपना केस जीत नहीं जाते. अगर आपको इनसे कोई कंसल्टेशन लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं @469-300-5046, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, which is attorneyomar.com.

बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट सॉन्ग, मुझे आप सब लोगों से ये सवाल करना है यार कि वाई डू यू हेट लव स्टोरी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, हमने कहा कि हम जो है लव स्टोरी को हेट करते हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू आस्क द रेस्ट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द जनता जो लव स्टोरीज को पसंद नहीं करते, भाई मुझे भी बताइए यार कॉल करके कि वाई डू यू हेट लव स्टोरी। कौन कौन से, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे रील्स देखे हुए हैं कि सख्त लौंडा इश्क मोहब्बत में नहीं पड़ेंगे, एंड गर्ल एंड गोज फॉर बोथ द जेंडर्स, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सख्त लौंडा है तो लड़कों की बात कर रहे हैं। तो मुझे भी बताइए, मुझे भी जानना है, मैं भी अपने लिसनर्स को ये बताना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है आज सबके यूथ जनरेशन के दिमाग में। कॉल कीजिए मुझे 9722355555।

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive Media Partner, Panacea.
1: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
2: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
1: व्हाट,
3: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर वैलिड टिल August 3rd। विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स।
4: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
5: Aaj hi sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
6: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

आई होप कि आपको फन एशिया रेडियो सुन के भी उतना ही मजा आता होगा और आप भी बोलते रहते होंगे कि वाओ क्या शो है, अमेजिंग। और एक और चीज है जिसके बारे में अगर आप बातें करेंगे, उनके सर्विसेज अवेल करेंगे, तो आपको ऐसे ही वाओ वाली फीलिंग आने वाली है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो ये बड़ी काम की चीज है आपके लिए। अगर आपको एक स्मार्ट कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन ढूंढना है तो तारा कमर्शियल एनर्जी जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है अपनी सर्विसेज के लिए। इनके रेट्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, रिलायबल है इनकी सारी फैसिलिटीज़, और इनके जो एनर्जी प्लान है ना वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज की जाती है। इज इन दिस अमेजिंग। आपको अगर उनको कॉल करना हो तो नंबर मैं बता देती हूँ, आप फटाफट लिख लीजिए और उनको कॉल कर लीजिए। इट इज़ 8444282808, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, which is taraenergy.com।

कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं अपॉइंटमेंट वगैरह लेके, एक तो कि यूएस में ना अपॉइंटमेंट की भी बड़ी टेंशन रहती है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल नहीं है. आप मतलब आप सोचिए कि आपको आज बुखार हुआ है और आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है लाइक 4 दिन बाद, तब तक तो पता नहीं क्या ही हो जाए. लेकिन इन सबसे दूर एक ऐसी फैसिलिटी है, एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सेम डे आपका इलाज हो सकता है. आप सेम डे जो है जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं, और सिर्फ 5-10 मिनट के लिए मिलना नहीं है, पूरे के पूरे आधे घंटे मिलते हैं आपको अपने डॉक्टर्स के साथ. क्योंकि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का मानना है कि आपको अपने डॉक्टर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, ताकि आप उनको सब कुछ अच्छे से बता पाओ कि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आपको ये प्रॉब्लम कब से हो रही है, कैसा है, क्या एग्जैक्टली फील हो रहा है. प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, ताकि जो है आपका अगर कुछ होने वाला है, मतलब प्रिवेंटिव केयर जिसको बोलते हैं, वो काफी जरूरी है. और इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी दूसरी सर्विसेज हैं, जैसे कि अगर आपको एनुअल फिजिकल चेकअप कराना हो, एंग्जाइटी केयर चाहिए, फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हो, या फिर कोई विटामिन डिफिशेंसी की टेस्टिंग करानी हो, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में ये सब कुछ उपलब्ध है, अवेलेबल है. और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं 214-666-6259 पे.

इतने ही हिट होंगे आपके सेलिब्रेशंस अगर उसके ऑर्गेनाइजर्स वैनेसा इवेंट्स हो, प्लानिंग अ वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या फिर कोई भी सेलिब्रेशन, ये सब कुछ करना इतना ज़्यादा कभी कभी स्ट्रेसफुल हो जाता है ना. मतलब वेन्यू चूज करो, डेकोर देखो, केटरिंग डिसाइड करो और लिटिल डिटेल्स भी काफ़ी मायने रखते हैं कि अरे ये छूट ना जाए. लेकिन ये सब कुछ स्ट्रेस ना आप वैनेसा इवेंट्स पर छोड़ दीजिए. आप तो बस फन और एंटरटेनमेंट की तैयारी कीजिए, मज़े लीजिए और ये सारे जो बाकी के निटीज एंड ग्रिटीज हैं वो वैनेसा इवेंट देख लेंगे. चाहे वो आपका वेन्यू सिलेक्शन हो या फिर ब्यूटीफुल डेकोर हो, बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी हो, हॉस्पिटैलिटी हो आपके गेस्ट के लिए या फिर डिलीशियस केटरिंग आपको करना है, तो ये भी एक रिनाउंड बसेरा ग्रैंड से आता है इनके केटरिंग सर्विसेज. तो आप अपने सेलिब्रेशंस को, मेमोरीज को बनाने में ध्यान रखिए और बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए. जैसा कि मैंने बताया वैनेसा इवेंट्स पे आपको हरी बसेरा जी को कॉल करना है अगर आपको इनके सर्विसेज चाहिए तो, और नंबर है 4694428770. वेनेसा इवेंट्स आपका सेलिब्रेशन का पार्टनर.

और इसके साथ मेरे जाने का वक्त करीब आ रहा है। मैं यानी कि आरजे सिमी और मेरा शो खत्म हो जाएगा 10 बजे। और इसके पहले कि मैं जाऊं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज का जो 8 से 10 का शो था, ये दिस वाज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म एंड अकाउंटिंग फर्म इन यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आपका कोई एक स्टार्टअप है या फिर चाहे एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, एजी फिनटेक्स आपके लिए ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन, जो कि आपके नीड्स के अकॉर्डिंग टेलर किया गया है। चाहे बुक कीपिंग हो, पेरोल अकाउंटिंग हो, या फिर बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशन हो, या फिर प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग हो, टैक्स कंप्लायंस हो, फिनेंशियल रिपोर्टिंग हो, या फिर कोई भी बिजनेस रिलेटेड आपको एडवाइजरी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो एजी फिनटेक्स है ना, आपके फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज रखने में, कंप्लायंट रखने में और फ्यूचर रेडी रखने में आपकी काफ़ी मदद कर लेंगे। ये ट्रस्टेड हैं, एफिशिएंट हैं और कमिटेड हैं कि आप जो है सक्सेसफुल हो, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, या फिर आप एक इंडिविजुअल लेवल पे आपने जो गोल्स डिटरमाइन करके रखे हैं कि मुझे ये चाहिए, आप वो सारे अचीव कीजिए। और अगर आपको इनसे कंसल्टेशन लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं 4699429888, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, which is ajfintax.com।

0: अगर आपको शानदार के शानदार गानों के अपडेट्स चाहिए
1: then click right here and subscribe.
2: Porque lo sé, everybody come on, let's do baila tres, dos, uno, everybody.

0: roll. This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार
5: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं
4: व्हाट
6: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स
7: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funnacious Radio.

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: हॉट झुमका
1: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया, फन एशिया।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
4: So, ruko jara, sabar karo.
5: Agla gana, full vibe badalne wala hai. Stay tuned to Fun Asia.

0: अब क्या?
1: क्लॉस्ट्रोफोबिया। व्हाइट हाउस की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया, प्लीज चेक।
2: अच्छा, कौन सा? वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर, कोर्ट में बात कीजिए।
2: अश्रत, सिक्योर लाइन है, प्लीज डोंट इरिटेट मी, नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा। हाँ, फाइनल चेक्स एवरीवन। शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है, कम ऑन, गेट रेडी।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

tracks that put you on the right track.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: back. Bollywood tag, Fun Asia. Fun Asia.
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना

0: कैसी बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: हाय, दिस इज रानी मुखर्जी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: खुद सीज कर लो। एक टीम को कोऑपरेटिव बैंक भेजो और वो लॉकर्स भी सील कर लो। अभी क्या रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज राइस मिल के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरी है, वो डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो।
1: FM turns up the heat in Dallas.

जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

कुड़ी अट कुड़ी अट कुड़ी चाकू तलवार ये छुरिया कुड़िया दी गवर्नमेंट कर दी नमस्ते ब्लॉन्ड लट्टी नु ते चिटिया हाय कुड़ी हेलो कुड़ी मजा मजा ले लकुड़ी सॉल्टी स्पाइसी ते मिठिया।

0: मैं मंदर क्यों जावा, मेरा यार खुदा है। मैं मस्जिद क्यों जावा, मेरा यार खुदा है।
1: बिल्लो

नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी। उसे तकते है उम्र गुजारूं,

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
8: Call 857-891-8942 today.
9: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
9: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
10: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
10: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
17: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली, और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
10: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन.
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
18: Kya matlab?
19: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
18: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
19: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
18: Ab to karna hi padega, madam.
20: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
21: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
22: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
21: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
22: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
0: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
1: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
0: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
0: सच में सब संभाल लेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

नेशन का फन स्टेशन फनेशिया रेडियो 104।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
3: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे। हु आर द एम्प्लॉइज योर कंपनी सिंपली कैनॉट अफोर्ड टू लूज? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
4: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal, call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
5: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं।
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं।
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं।
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

Rest a while and run a mile with Fun Asia Radio.

0: KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.
1: Okay.
2: Oh, shit.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
8: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
9: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
10: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
10: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
10: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641।
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
17: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
18: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
17: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
19: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
20: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
0: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

0: सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत हम आप ही के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपको मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक, और हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। I hope you're having a great start to the weekend. Weekend is here. Weekend आने के पहले ही भाई चला जाता है और पता भी नहीं पड़ता। But I'm here to tell you कि ये जो दो घंटे हैं वो बीतेंगे साथ साथ with really beautiful music and take you to some beautiful places. Not literally, but you know, with music you are elsewhere, right? आप खो जाते हैं और enjoy करते हैं गीतों को और अपने ख्यालों में खो जाते हैं. With that said, opening with this beautiful track from the film Parinita.
1: La la la, hey hey hey, say you're mine.
2: What do you think?

बहुत ही प्यारा गीत फिर एक बार फिल्म परिणीता से लिया, जिसके लिए आवाजें दी सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने और संगीत तैयार किया शंतनु मोइत्रा ने। और शंतनु मोइत्रा एंड श्रेया घोषाल, टेक मी टू अनदर स्वीट डेवलपमेंट फॉर अ फैंटास्टिक आई गेस सॉन्ग, और वो आपको सुनवाने वाली हूँ मैं। नाउ दिस इज अबाउट, चलिए ऐसा करते हैं, गाने को सुनिए और मुझे बताइए आपने ये गाना पहले कहाँ सुना स्लैश देखा था। 9722355555 पे बताइएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। तो हियर वी गो।

इतना प्यारा गीत आवाज श्रेया घोषाल की, संगीत शंतनु मोइत्र का, और ये लिया है बॉलीवुड वेब सीरीज से। सो यस, जैसे मैं कह रही थी कि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट एंड इंटरेस्टिंग वन फॉर श्योर, जहां पर बॉलीवुड के बहुत ही जाने माने स्टोरी टेलर राजकुमार हिरानी, जिन्होंने बनाई है फिल्में जैसे कि मुन्ना भाई एंड थ्री इडियट्स, पीके, संजू एंड दुनकी, वो ही राजकुमार हिरानी अब ले आए हैं हमारे लिए वेब सीरीज। जी, इन्होंने कदम रखा है इन द वर्ल्ड ऑफ वेब सीरीज विद दिस वन कॉल्ड प्रीतम एंड पेड्रो, और ये है एक साइबर क्राइम कॉमेडी ड्रामा, और इसमें दिखाई देंगे अरशद वारसी और राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी एज द एक्टर। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दिस वन इज, अगर आपने नहीं देखी आई वुड रिकमेंड दैट। मैंने हाल ही में देखी थी और हाल ही में रिलीज हुई है एक्चुअली ये वेब सीरीज, आई थिंक इट वॉज अर्ली इन जुलाई, और बहुत ही क्यूट सा यू नो शो बनाया है इन्होंने। आई रियली रियली लाइक्ड इट, इट्स ग्रेट स्टोरी टेलिंग एंड इट्स nicely done, well performed. I think Veer Hirani has some potential to do well in the industry. If you think differently, let me know. If you think you've seen it and you want to make a comment, give me a call in the studio and let me know your thoughts about Pritam and Pedro at 972-235-5555. This is also an indication ki OTT platforms are here to stay and they're giving these filmmakers a whole new platform or whole new canvas to explore fresh ideas. What say?

0: आई थिंक राजकुमार की राजकुमार हिरानी की फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कोलैबोरेशंस एंड दोज इंक्लूड श्रेया घोषाल, शंतनु मोइत्रा फॉर म्यूजिक. उसके अलावा संजय दत्त दिखते हैं टाइम एंड अगेन, एंड संजय दत्त दिखाई देते हैं इस वेब सीरीज में भी एज अ गेस्ट अपीयरेंस, बट डेफिनेटली सो इंक्लूडिंग वन मोर नेम, अरशद वारसी. नाउ ही डज नॉट हैव अ गेस्ट अपीयरेंस, ही एक्चुअली इज वन ऑफ द बिगर स्टार्स ऑफ द शो. जब देखेंगे शो मुझे कॉल कीजिएगा, बताइएगा व्हाट यू थिंक ऑफ इट. आई थॉट इट वाज प्रीटी कूल.
1: डालस की धड़कन 104.9 एफएम फनीजिया रेडियो.
0: What else is trending, or rather who else is trending? Well, I want to tell you ki Ranbir Kapoor is trending currently, and wo nata hai inka film Ramayan se. Ramayan that has become so popular even before it has been released, and is film ke charche kafi sare ho rahe hain. Aur iske baare mein kuch details mein batati hu main aapko, ye batane ke baad ki aapko naam yaad rakhna hai Omar Khwaja ka. और ये नाम कब याद रख के कब काम में आएंगे? वेल, डेफिनेटली व्हेन यू रियली रियली नीड इट. और वो होते हैं जब किस्से होते हैं, कभी किसी इंसिडेंट के ऑफ लाइक अ फॉल और अ स्लिप, या कभी कोई एक्सीडेंट के सिलसिले होते हैं. आपने इनका नाम याद रखना है, इनका फोन नंबर भी याद रखना है, एंड दैट नंबर इज 4693005046. सो व्हाई वुड यू लाइक टू यू नो वांट टू कीप attorney Omar Khwaja's name and number handy? Well, when you are in a situation such as an accident or a slip and fall incident, Omar Khwaja will fight your case and will help you get the compensation that you deserve. Dealing with insurance companies, this is actually crucial, a moment which is very, very stressful, and that's when you need them. So dealing with insurance companies mein bhi ye aapki madad karte hain, and you need an attorney at that time who makes sure you are compensated. So attorney Omar Khwaja ke liye free consultation ke liye number hai 4693005046. And also want to tell you that you don't have to pay anything to them until you win your case. So remember the name, attorney Omar Khwaja, the website attorneyomar.com, the phone number 4693005046. Back to Ranbir Kapoor. And we will talk about the film Ramayan that we are all looking forward to, featuring Mr. Ranbir Kapoor unke saath. Aur bhi log hain, and everybody is really excited about this film. Talk about it in a minute here.

0: तो जैसे कि मैं कह रही थी आपको, रणबीर कपूर दिखाई देंगे आपको फिल्म रामायण में, उनके साथ होंगे यश एंड देयर इज आल्सो साई पल्लवी। एंड ये जो फिल्म है बहुत ही हंगामा मचा रही है एंड इज करेंटली फीचर्ड एट कॉमिक कॉन दिस वीक, एंड दिस कॉमिक कॉन इज हैपनिंग इन सैन डिएगो। तो व्हाट इज कॉमिक कॉन? वेल, आए हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने, तो ये है क्या कॉमिक कॉन? वेल, यू वांट टू थिंक ऑफ कॉमिक कॉन एज एन ओलंपिक्स ऑफ एंटरटेनमेंट फैंडम, एंड इट स्टार्टेड मेनली एज अ गैदरिंग फॉर कॉमिक बुक लवर्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉमिक कॉन। बट टुडे इट इज वेयर Hollywood's biggest studios come and announce their upcoming films. They bring stars on stage and they give their fans an exclusive first look. Aur maine kaha Hollywood wali filmein aati hain yahan par. So here we are, Ranbir Kapoor and Yash are there together promoting their film Ramayan that's going to release in November this year. So foreign film that is Indian, yani ki Bollywood film hai ye wali khas taur pe, to be a part of this conversation has become a sign of just how global our cinema has become. I can tell you that there's a lot of excitement around this film, lots of, I guess, not only promotion, but, you know, people are like looking forward to watching this great film that has been directed by Nitesh Tiwari, written by Sridhar Raghavan, and of course, फीचरिंग आवर ओन रणबीर कपूर और उनके साथ यश, एक ने राम का रोल निभाया, दूसरे ने रावण का, एंड सीता प्लेड बाय साई पल्लवी।
1: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।
0: Want to talk to you a little bit about what else is trending in the industry, but I will do that right after a short commercial break. Kahin jaiyega nahi, stay here, tune with me on Music Mantra, jisme main hu aapki sang Sangeeta. Aapka aur mera saath rahega subah ke 10 baje tak.
2: ये तारा वो तारा हर तारा।
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
3: तो चल उन सेल्फी से पिज्जास खाते हैं।
4: व्हाट?
5: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर वैलिड टिल August 3rd। विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स।
6: बेटा, 95% आए?
7: हाँ मम्मी।
6: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
6: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, 'cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
3: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, 'cause miracles happen in Mirage. Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
7: Dude, life mein kuch aisa karna hai, jisme main front page pe rahun.
8: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
7: Kaise?
8: Page 3 eatery?
7: No, not another restaurant again.
8: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
7: मतलब ग्रेट फूड ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी यानी कि मैं
9: पेज 3 ईटरी ईट सिप गॉसिप रिपीट
10: इन टुडेज बिजी वर्ल्ड व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रूली पॉज्ड एंड लिसन टू योरसेल्फ रीडिस्कवर पीस एट द ओशो मेडिटेशन रिट्रीट फ्रॉम जुलाई 31st टू ऑगस्ट 2nd एट ओशो केवल्य धाम इन डेनिसन टेक्सास Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपकी संग संगीता। आपको मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत, और साथ साथ बहुत सारी गल्लां बातें, बातचीत, गपशप। वी वर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर ट्रेंडिंग। वांटेड टेक दिस मिनट एक्चुअली टू आस्क यू अ क्वेश्चन। सुनिए इस गीत को और बताइए मुझे इस गाने में हीरो कौन थे, और बताइएगा मुझे 972-235-5555 पे।

शुक्रिया आप सभी के फोन कॉल्स का, जो न, और आपने सभी ने सही बताया मुझे कि ये जो एक्टर हैं इस गाने में वो है मिस्टर आर माधवन। आर माधवन के बारे में कुछ कहें तो ये कह सकते हैं कि जाने माने एक्टर हैं, लेखक हैं, प्रोड्यूसर हैं और बहुत ही जाने माने जाते हैं फॉर हिज पैन इंडियन अपील, फॉर हिज नेचुरल चार्म एंड इन माई माइंड फॉर द रेयर अबिलिटी टू ट्रांजिशन, यस टू ट्रांजिशन फ्रॉम अ रोमांटिक हार्टथ्रॉब टू इंटेंस वर्सटाइल कैरेक्टर रोल्स। और मैंने ये कहा, मुझे पता है कि आपकी नज़रों में वो सब आ रही हैं फिल्में याद आपको, जो कि जिनमें वो हीरो थे, यू नो चॉकलेटी हीरो, वेरी रोमांटिक हीरो, जैसे कि फिल्में थी रहना है तेरे दिल में, एंड देन यू नो तनु वर्सेस और आदर तनु वेड्स मनु, और फिर ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे कि थ्री इडियट्स एंड फ्रॉम देयर इफ यू वॉच द फिल्म शैतान यू वुड नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई से ही हैज द रेयर अबिलिटी टू ट्रांजिशन फ्रॉम अ रोमांटिक हार्टथ्रॉब टू इंटेंस कैरेक्टर रोल्स। नहीं देखी फिल्म तो मैं कहूंगी कि यू नो माई फेवरेट फिल्म फॉर माधवन हैज टू बी शैतान। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस इन दैट मूवी। और आर माधवन की बातें कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं व्हाट्स ट्रेंडिंग ऑन टेल यू की ही हैज बीन कन्फर्ड विद द पद्मश्री, वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स इन रिकॉग्निशन फॉर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट्स एंड अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ही इज अ ग्रेट एक्टर, अ ग्रेट राइटर, डायरेक्टर एंड अ स्टोरी टेलर हु कंटिन्यूज टू री इन्वेंट हिमसेल्फ। And on that, we say congratulations to R. Madhavan for this well-recognized honor.

0: पर कभी कभी तो ऐसा होता है दैट ऑल इज नॉट वेल, और तब आप चाहते हैं कि तुरंत आप कोई डॉक्टर से मिलें, और ऐसे डॉक्टर से मिलें जो आपके साथ वक्त बिताएं और पूरी तरह समझें कि आपका क्या मसला है. एंड दैट्स व्हेन यू थिंक ऑफ अ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर द लीजरली 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. And because at Passion Healthcare, you're not just a patient, you are family. So, aap apne liye, apne parivar ke liye, and for the health of our community, naam yaad rakhiye, Passion Health Primary Care. 30 minutes is all it takes to complete your annual physical. And iske alawa, anxiety care, fibro scan for alcohol-related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, and many other such tests are available at Passion Health. So why wait? Schedule your appointment today. Inka number hai 214-666-6259. And you can reach them and go and get your issues resolved. Passion Health Primary Care. Your health is our passion.
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart. Fun Asia.

कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिकम स्टार्स, कुछ डांसर्स दे बिकम लेजेंड्स, एंड समवन लाइक प्रभुदेवा डिड इट बोथ. और बहुत सालों तक ये इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं कोरियोग्राफी को, एक्टिंग को, डांस स्टाइल्स को, एंड ऑल्सो डायरेक्टिंग अक्रॉस मल्टीपल फिल्म इंडस्ट्रीज. और आज भी यू कैन स्पॉट हिज इन्फ्लुएंस इन मेनी मेनी मेनी मेनी बॉलीवुड डांस नंबर्स. और ये आ रहे हैं आप ही के शहर में. यस, प्रभु देवा विल बी लाइव हियर इन डैलस. विल कम बैक एंड गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. तो दिल थाम के बैठिएगा. विल टॉक अबाउट प्रभु देवा परफॉर्मिंग फॉर अस लाइव राइट हियर इन डैलस.

0: So remember, your chance to watch Prabhudeva live on a Saturday will come true if you book your tickets.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओह हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
11: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
12: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
11: कहाँ?
13: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, One vibe.
14: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
15: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
14: नहीं।
15: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
14: नहीं।
15: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
14: वो भी नहीं।
15: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
16: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
5: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं।
16: What?
17: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
18: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ है मीदे तराने और खूबसूरत संगीत और एक टॉपिक, और इस टॉपिक पे आधारित एक सवाल है आप सभी के लिए। कभी आपने अपनी अलमारी खोल के देखी है और ये नोटिस किया है कि अलमारी या क्लॉजेट इज कम्प्लीटली फुल, और फिर सोच के ये भी सोचा कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, और फिर जब वीकेंड आता है मॉल पहुंच जाते हैं या तो फोन पर ही, भाई आजकल ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो ऑनलाइन शॉपिंग शुरू करते हैं। लेकिन सच बताइए, हम शॉपिंग क्यों करते हैं जब क्लॉजेट पहले से ही फुल होता है? बताइएगा, थोड़ा सोचिएगा और बताइएगा 972-235-5555। Why do we keep shopping when our closet is already full? May I add, when our closets are already full? Let me know.

हम बातें कर रहे हैं भाई, क्लोजेट्स आर फुल, फिर भी वीकेंड आया नहीं तो मॉल पहुंच जाते हैं या मौका मिलते ही फोन पर ऑनलाइन शॉपिंग कर देते हैं। तो इसकी वजह क्या है, मैं आपसे पूछती हूँ। व्हाई डू वी कीप शॉपिंग व्हाइल आवर क्लोजेट्स आर ऑलरेडी सो फुल? लेट मी नो एट 972-235-5555। वैसे जब आप शॉपिंग कर रहे हैं और खर्चे हो रहे हैं तो वेल टैक्सेस और अकाउंटिंग की बातें भी आती हैं, राइट? सो आई एम गोना टेक अ मिनट हियर टू से फर्स्टली अ बिग थैंक यू टू एजी फिनटैक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस पार्ट ऑफ आवर शो टू अस। एजी फिनटैक्स, द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो अ लिटिल बिट अबाउट देम, चाहे आप इंडिविजुअल हों, आप स्टार्टअप हों या आप इस्टेब्लिश बिजनेस हों, एजी फिनटैक्स हैज innovative financial solutions tailored to your needs, from bookkeeping to payroll accounting and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory services. They help keep your finances organized, compliant and future ready. So many services, why would you not call them? You're going to call them at 469-942-9888. AG FinTechs, they are trusted, they are efficient, and they are committed to your success. AG FinTechs is your partner to help build a stronger financial future. One more time, the number 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. Closets are full, yet we want to go shop. Why?

0: और क्यों ना हो भैया, कॉल्स आए मुझे कि क्लॉजेट्स तो फुल है, बहुत फुल है, जगह नहीं है, खड़े रहने की भी जगह नहीं है वहां क्लॉजेट में, लेकिन पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो नया लेने का दिल करता है। नया लेने से पता है क्या होता है, इट गिव्स आवर ब्रेन अ स्मॉल बर्स्ट ऑफ डोपामीन विच इज कॉल्ड एज अ ब्रेन्स रिवॉर्ड केमिकल। और कभी कभी ऐसा है कि यू नो व्हाट, ले लिया तो ऑफकोर्स बहुत खुशी हुई, पर उतनी खुशी हमें मिलती है इन द एंटिसिपेशन ऑफ परचेजिंग समथिंग। एंड यू नो, ये एंटिसिपेशन हमें दिखता है जब हम इंतज़ार करते हैं किसी पैकेज का, पैकेज आने वाला है, पैकेज आने वाला है, जल्द से जल्द यू नो दरवाज़ा खोल के देखेंगे कौन सा पैकेज आया है, और हम ट्रैक करते हैं, चेक करते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, बिकॉज इट इज़ दैट एंटिसिपेशन ऑफ बाइंग समथिंग दैट बिकम्स मोर एक्साइटिंग देन एक्चुअली ओनिंग द आइटम। सोचिए, आप ही सोच के देखिए, आपने कभी ऐसा किया हो कि भाई अब पैकेज आने वाला है, खुशी हो रही है बहुत, और पैकेज आ गया, खोल लिया, देख लिया, और एक आध हफ्ते बाद तो भाई वो पैकेज में क्या था, क्या पैकेज था वो याद भी नहीं है।
1: The Dill of Dallas, Heart to Heart, Fun Asia.
0: What are some other reasons you would go shopping even when your closets are full?

0: शॉपिंग की बात है, ये शॉपिंग के लिए बाहर निकले हैं, वेल भूख भी लग जाती है, तो वांट टू टेल यू कि आपको अगर एंजॉय करना है बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड दैट हैज मॉडर्न फ्लेयर लाइक आइटम्स सच एज कबाब, चाट, फ्यूजन बाइट्स और मॉकटेल्स भी हैं वहाँ पे, तो आपने जाना है Page 3 Eatery पे. Page 3 Eatery इज एट Hub 121. They have vibrant vibes. You want to enjoy that too along with your shopping, right? Vibrant vibes for brunch or lunch or dinner. And it is perfect spot for foodies, for dates and flavor chasers. And you want to visit page3eatery.com and get more information right there. Make sure to make it an outing to count with the shopping and Page 3 Eatery.
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
0: Continuing on with the question, अगर closets full हैं तो हम shopping क्यों करते हैं, फिर भी जाकर कुछ नया ले आते हैं, इसकी वजह क्या है, बताएं मुझे 972-235-5555 पे.

Can it be that when we buy clothes, we are not just buying clothes, we are buying hope? जैसे कि अगर जो आप कुछ अच्छी ड्रेस खरीद कर आए तो बोलेंगे well, जरूरत तो नहीं है बट शायद एक और पार्टी का न्योता आ जाए. हाँ, पार्टीज. उसी तरह कुछ और रीजंस भी हैं. Why we buy new clothes even though our closets are full?

0: ऑलराइट, वखरा स्वैगनी. वेल, होना तो वैसे चाहिए वखरा स्वैगनी, यानी कि योर ओन यूनिक स्टाइल. पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इसलिए भी कपड़े खरीदते हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द या आसपास जो लोग हैं, दे ऑलवेज ऑलमोस्ट हैव समथिंग न्यू टू शो, न्यू टू वेयर. चाहे वो दोस्त हों जो कि वेकेशन वाली तस्वीरें डाल रहे हैं इंटरनेट पर, या कोवर्कर हों जो लेटेस्ट ट्रेंड वाली आउटफिट पहन कर आए हैं, या सोशल मीडिया मेकिंग आउटफिट रिपीट्स फील्स लाइक इट इज अ फैशन मिस्टेक. कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने जाकर शॉप करना है, पर इन वजहों के कारण हमें लगता है कि हमें शॉप करना जरूरी है. एंड साइकोलॉजिस्ट कॉल दिस सोशल कंपेरिजन. एंड देन द क्वेश्चन इज, वाई डू आई फील लाइक आई नीड समथिंग न्यू वर्सेस द क्वेश्चन वाई डू आई हैव नथिंग टू वेयर, बिकॉज दैट्स बीन एस्टैब्लिश दैट वी हैव क्लोजेट्स फुल एंड येट वी गो शॉपिंग मेनी मोर.
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माई टाइम एक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO अपॉर्चुनिटीज and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Yaar, mere phone mein hum dono ke kitne selfies hai yaar.
11: To chal, un selfies se pizzas khate hain.
10: What?
12: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
13: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult
2: qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
14: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
0: And a warm welcome back to the final segment of this morning's Music Mantra, jisme rahi hoon main aapke sang Sangeeta. Aapka aur mera saath rehta hai har Saturday subah 8 se lekar 10 baje tak. Har baar le aati hoon ek anokhi prastuti. Aaj ke is prastuti mein hum baatein kar rahe hain about why do we go shopping when our closets are already full? Aur you know what, I'm going to play a song, come back, and then I will have a giveaway. So stay tuned, giveaway on the topic that we just talked about. The giveaway is coming from Fun Pizza Kitchen. It's going to be a very simple question, saral sawal, aur aap ise khojenge jawab. But after this fantastic song, jo ki trending hai bhai, from the film Dhamal 4, aur naam hai Saadi.

यू सी, वो भी कह रहे हैं मेरे साथ फोटो तो निकाल, बिग पार्ट ऑफ बीइंग आउट एंड ड्रेसिंग अप एंड देन ऑब्वियसली कैप्चरिंग द मोमेंट्स. कैप्चरिंग द मोमेंट से बात हो रही है फ्रेंडशिप डे

फोटो तो निकाल, बिग पार्ट ऑफ बीइंग आउट एंड ड्रेसिंग अप एंड देन ऑब्वियसली कैप्चरिंग द मोमेंट्स. कैप्चरिंग द मोमेंट्स से बात हो रही है, फ्रेंडशिप डे के मोमेंट्स आपने कैप्चर करने हैं. जी, फ्रेंडशिप डे इज राइट अराउंड द कॉर्नर. यू वांट टू कम सेलिब्रेट फ्रेंडशिप डे एट फन पिज्जा किचन विद ग्रेट फूड एंड एन इवन बेटर ऑफर. Grab your friends, of course, very important on Friendship Day. Grab your friends and enjoy delicious favorites like the tangy achari paneer pizza or the smoky tandoori chicken pizza. Uske baad, take a selfie together and post it on Instagram and tag Fun Pizza Kitchen. Ye karne pe aap payenge 10% off of your bill or a free garlic bread. So, this Friendship Day special offer is valid only until August 3rd. Do not miss out. For more information, therefore, visit funpizzakitchen.com. But right now, what I'm doing is I'm giving you a chance to win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen by answering a very simple question in the most creative way. Theek hai? You're going to give me a call at 972-235-5555. Aur main aapse janna chahti hoon ki what is the funniest excuse you have ever used to justify buying another outfit? Let me know. It's got to be the funniest excuse you have ever used to justify buying another outfit. Let me know at 972-235-5555. साड़ी के फॉल सा, दैट्स अ फन एंड अ फनी सॉन्ग इन माई माइंड. हियर इट इज.

ऑल राइट, काफी सारे आए हैं हमारे पास जवाब। तो कभी कभी हम सिर्फ कपड़े नहीं खरीदते, कहते हैं कि भाई उसके साथ एक उम्मीद होती है, स्पेशली व्हेन यू लुकिंग एट दोज क्लोथ्स फॉर वर्कआउट रीजंस, कि हम एक अच्छी आउटफिट पहन के ना जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे। समटाइम्स एज आई सेड अर्लियर, पार्टी का न्योता शायद आ जाए, यू नो, कुछ कभी कभी यू आर इंस्पायर्ड टू डू दैट एज वेल। And sometimes it's all about you want to go out travel, and sometimes it is just want to have a good time and look good and reinvent ourselves. Amazing baat to ye hai na ki just one outfit can make us feel so good and almost like it feels like a new version of ourselves. Acha, now I will also say that sometimes shopping brings up emotions, and shopping makes us feel good because we are celebrating. Sometimes ऐसा भी होता है कि भैया बहुत स्ट्रेस है. स्ट्रेस का जवाब जाकर शॉपिंग कीजिए। कभी बोर्डम का जवाब भी यही है, और कभी कभी जब मॉल जाएं तो मॉल में कुछ और भी यू नो चल रहा होता है, कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं, कुछ मस्ती चल रही होती है, सो शॉपिंग ऑल्सो अलॉन्ग विद फ्रेंड्स बिकम्स एंटरटेनमेंट, राइट? वॉट आर सम अदर रीजन्स you say you would shop for? Let me know at 972-235-5555. The winner will receive a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. If you answer why did you know what was that one funny scenario that you thought would make it justifiable to buy yet another outfit, let me know at 972-235-5555. I'm looking for a fun, creative answer.

उम्मीद करती हूँ कि आज की इस प्रस्तुति को आपने उतना ही पसंद किया जितना मुझे अच्छा लगा आप तक ले आने के लिए। फिर एक बार ले आऊंगी एक अनोखी प्रस्तुति अगले सैटरडे ठीक 8 बजे। तब तक के लिए मुझे यानी कि संगीता बच्चानी को दीजिए इजाजत। साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियो द फनी एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
5: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंग्जाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
3: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
5: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डक्ट्स मे बी टू ब्लेम, एंड क्लॉग्ड ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर। Duck Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
6: आने वाले खाने में डोसा।
7: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
8: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
9: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
16: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
15: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
16: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
18: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में सब संभालेंगे?
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
19: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। सैटरडे और संडे सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक होता है मेरा और आपका साथ। एंड स्टूडियो का नंबर रखें याद, दैट्स 9722355555। सैटरडे को होता है ट्रैवल सेगमेंट, जिसमें ले चलती हूँ आपको दुनिया की एक ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जहाँ या तो आप जा चुके हैं या जाने का मन रखते हैं, या मेरी पूरी कोशिश होती है कि उस जगह के बारे में आपको मैं इतनी सारी बातें बताऊँ कि आपका मन चल ही जाए कि यार चलो देख के आते हैं। सो वेल, आज की हमारी डेस्टिनेशन क्या है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले अ बिग शाउट आउट टू संगीता फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग, फुल ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। राइट नाउ कमिंग बैक टू जस्ट चिल, सो आज की हमारी डेस्टिनेशन है सियाटल। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग सियाटल जा चुके होंगे। अगर हैं कुछ सुनहरी यादें, कुछ खास बातें जो करना चाहें शेयर, देन द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555। आई एम विद यू टिल नून। एंड सबसे पहले अगर सियाटल की मैं बात करूं तो आपको बताऊं कि सियाटल इज कॉल्ड द एमरल्ड सिटी बिकॉज ऑफ द लश एवरग्रीन फॉरेस्ट सराउंडिंग इट। इट्स ग्रीन फॉर मच ऑफ द ईयर, सो व्हेनेवर यू गो यू विल फाइंड इट एब्सोल्युटली ग्रीन।

मुझे तो पता नहीं कि आपका दिल कैसे बहलता है, लेकिन मेरा दिल जरूर बहल जाता है इफ आई गो आउट शॉपिंग यार। अगर वो भी ज्वेलरी की शॉपिंग हो तो मतलब बात ही क्या है। तो आपको मैं श्री कृष्णा ज्वेलर्स के बारे में बताना चाहूंगी, बिकॉज आई एम श्योर मुझ जैसे कई और भी होंगे जिनको ज्वेलरी शॉपिंग करने से काफी अच्छा लगता है, राइट? सो एट श्री कृष्णा ज्वेलर्स, यू नो, ज्वेलरी इज मोर देन एन एक्सेसरी, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी। चाहे आपको क्लासिक गोल्ड डिजाइन्स चाहिए या फिर स्पार्कलिंग डायमंड्स, यू नो, इंट्रिकेट कुंदन या फिर स्टनिंग पोल की कलेक्शंस, मतलब आप बस बताएं आपको चाहिए क्या। मतलब एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ स्पेशल मोमेंट्स, और मुझे लगता है कि लाइफ का हर मोमेंट इज स्पेशल एंड वी शुड सेलिब्रेट इट, राइट? सो वेलकमिंग यू एट द न्यू लोकेशन, 13145 स्वीट 220 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को टेक्सास, श्री कृष्णा ज्वेलर्स। जाएं जहाँ क्राफ्टिंग फाइन ज्वेलरी एंड चेरिश मेमोरीज सिंस 1967, राइट? सो दे विल श्योरली हैव वट एवर यू वॉन्ट। सो मेक श्योर कि आप श्री कृष्णा ज्वेलर्स जाकर कुछ अमेजिंग अमेजिंग ज्वेलरी की शॉपिंग कर लें।

Well, that was Hamdam Suniyore taken from the movie Sathiya. आज हम बात कर रहे हैं सियाटल की. तो अगर आप लव फील्ड एयरपोर्ट से यहाँ से फ्लाइट लेंगे तो इट्स अबाउट अ 4 आवर फ्लाइट. एंड द फर्स्ट थिंग वी डिड आफ्टर लैंडिंग इन सियाटल वॉज कि हम गए थे द म्यूजियम ऑफ फ्लाइट. यू नो नॉर्मली यहाँ पर जनरल एडमिशन इज अराउंड $29, सीनियर्स के लिए $25 एंड फॉर यूथ्स फॉर यंगस्टर्स इट्स $21 एज बिटवीन 5 and 17 एंड फ्री फॉर चिल्ड्रन 4 and under. पार्किंग फ्री है लेकिन हाँ अगर आप एवरी फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जाएंगे सो यू गेट फ्री एडमिशन फ्रॉम 5 PM टू 9 PM एंड नो रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड. साथ ही साथ अगर आप सियाटल एंड किंग काउंटी लाइब्रेरी के कार्ड होल्डर्स हैं देन यू कैन रिजर्व म्यूजियम पासेस दैट कवर 2 adults 2 youths ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी. सो आप अगर यहाँ के मेंबर हैं तो आप ये फ्लाइट म्यूजियम जो है ज़रूर देखें. द मोस्ट कूल फैक्ट अबाउट दिस म्यूजियम विच आई फाउंड वॉज दैट यू कैन एक्चुअली वॉक इनसाइड अ रियल कॉन्कॉर्ड. द म्यूजियम्स कॉन्कॉर्ड फ्ल्यू द लास्ट ब्रिटिश एयरवेज कमर्शियल कॉन्कॉर्ड फ्लाइट न्यूयॉर्क टू लंडन इन 2003. And on its final journey to Seattle, it set a NYC to Seattle record 3 hours 55 minutes and 2 seconds. तो आप इस फ्लाइट को ना केवल देख सकते हैं इस प्लेन को बल्कि अंदर जाके उसमें बैठ भी सकते हैं.

Well, that was a pasuri, right? And if you have any dedication, definitely give me a call. Studio number once again is 972-235-5555. This part of our show is brought to you by AG FinTax, one of the fastest growing tax firm in the US. So basically, कुछ भी टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, देन रिमेंबर एजी फिनटैक्स. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, राइट? सो दे आर ट्रस्टेड, आप उन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं. दे आर वेरी एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. सो यू कैन कॉल एजी फिनटैक्स. द नंबर इज 4699429888 और विजिट agfintax.com. And Hitesh has requested this beautiful song that I'm going to play next for Divya. So here it is. Enjoy.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.
3: जीनी हुकम मेरी अकल, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
4: मिराज लाउंज चलिए मेरी अकल, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
3: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
4: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
3: और एंटरटेनमेंट,
4: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
3: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
4: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो।
8: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
11: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं।
10: व्हाट?
12: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd। विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स।
13: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
13: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
13: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
13: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
15: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
16: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

Well, you are listening to 104.9 FM, Fun Asia Radio. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Saturday होता है हमारा travel show, जिसमें कि आज मैं ले चली हूँ आपको Seattle. So, Seattle की अगर बात करूँ तो it is very famous for rain. तो अगर आप सोचेंगे कि बारिश के लिए मशहूर है तो शायद यही अमेरिका की सबसे रेनियस्ट सिटी होगी, बट नो, दैट्स नॉट ट्रू. इट्स नॉट एक्चुअली वन ऑफ अमेरिकाज रेनियस्ट मेजर सिटीज बाय टोटल रेनफॉल एज सच. लेकिन सियाटल की जो ये रेपुटेशन है, इट कम्स मोर फ्रॉम फ्रिक्वेंट क्लाउडी एंड ड्रिजली डेज. यू नो, अक्सर बारिश रिमझिम चलती रहती है, एंड दैट्स वाई इट्स कंसिडर्ड, यू नो, इट्स नोन फॉर रेन, कि भाई कहीं भी जाएं तो एक छाता लेकर निकलें, बिकॉज इट माइट रेन. जैसे लंदन में नहीं होता उसी तरह का वेदर, काफ़ी लाइक क्लाउडी रहता है, हल्की हल्की बारिश होती रहती है. नो वंडर इट इज़ कॉल्ड एमराल्ड सिटी बिकॉज ऑफ द लश ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स ऑल अराउंड सियाटल. सो बारिश काफ़ी मिलती है यहाँ पे.

वेल, काश कि ये घटा यहाँ भी बरसे, क्योंकि कल बादल तो आए थे बट बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई. एंड गर्मी है तो भैया बिजली का बिल, एनर्जी बिल आपके काफ़ी हाई फाई जा रहे होंगे. नहीं सो सोचिए कि अगर आपके घर का ही एनर्जी बिल इतना हो रहा है तो जो बेचारे बिजनेस ओनर्स हैं उनके तो क्या बिल्स आ रहे होंगे. सो अटेंशन टैक्सेस बिजनेस ओनर्स, जी हाँ, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ रियली फॉर यू इफ़ यू आर लुकिंग

सोचिए कि अगर आपके घर का ही एनर्जी बिल इतना हो रहा है, तो जो बेचारे बिजनेस ओनर्स हैं उनकी तो क्या बिल्स आ रहे होंगे. सो अटेंशन टैक्सेस बिजनेस ओनर्स, यहाँ दिस इन्फॉर्मेशन इज रियली फॉर यू. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, देन तारा कमर्शियल एनर्जी को रखें याद. दे आर प्राउडली सर्विंग टैक्सेस बिजनेसेस सिंस 2002 एंड इनके काफ़ी कंपेटिटिव रेट्स हैं. दे हैव अ वेरी रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स, तो दे विल कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, राइट. सो यू कॉल तारा कमर्शियल एनर्जी, द नंबर इज 844-428-2808 और यू कैन विजिट ताराएनर्जी.com टुडे. दैट्स ताराएनर्जी.com.

वेल दैट वाज बिजुरिया बाय सोनू निगम. एंड यस, सियाटल की अगर बात करें तो वहाँ पे ना कुछ अंडरग्राउंड टूर्स भी होते हैं. सो बेसिकली वो होते इसलिए हैं कि सियाटल जो हैज़ एन अंडरग्राउंड सीक्रेट. जी हाँ, पार्ट्स ऑफ द ओरिजिनल ओल्ड सिटी रिमेन्स अंडरनीथ प्रेजेंट डे स्ट्रीट्स. तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग, आई मीन यू नो, गोइंग एंड टेकिंग पार्ट इन दोज अंडरग्राउंड टूर्स, विच इज़ अगेन अनदर फन थिंग दैट यू कैन डू इन सियाटल.

कई बार पता है कोई कुछ कर देता है तो आप फिसल जाते हैं, कभी हंसी हंसी में ही फिसल जाते हैं। तो अगर आप गलती की मिस्टेक, यू नो, गलती से मिस्टेक हो जाती है, आपकी ना हो सामने वाले की हो, एंड यू गेट इन्वॉल्व इन अ कार या ट्रक एक्सीडेंट या कहीं स्लिप या कोई फॉल इंसिडेंट, तो अटर्नी ओमार ख्वाजा को रखें याद। ये आपका केस लड़ेंगे, यू नो, इंश्योरेंस कंपनी से भी डील करेंगे एंड विल गेट यू द राइट कॉम्पनसेशन। मज़े की बात, आप इन्हें कुछ भी पे नहीं करते टिल यू विन योर केस। सो आप एक फ्री कंसल्टेशन के लिए उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 4693005046, और विजिट अटर्नी ओमार .com, दैट्स अटर्नी ओमार .com।

ऑलराइट, हम बातें कर रहे हैं सियाटल की. दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल, सियाटल की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपकी कोई सॉन्ग्स डेडिकेशन रिक्वेस्ट हो तो स्टूडियो का नंबर 972-235-5555. सो पहले मैं आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ सियाटल से रिलेटेड, एंड उसके बाद आई विल बी प्लेइंग अ सॉन्ग रिक्वेस्ट. तो आपको बताना चाहूंगी, अगर हम सियाटल जाए ना तो गम वॉल है वहाँ पे, एंड एज द नेम सजेस्ट, येस, इट्स बेसिकली अ वॉल कवर्ड विथ थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ पीसेज ऑफ च्यूइंग गम. जी हाँ, स्ट्रेंज लगता है ना, बिल्कुल स्ट्रेंज ही है, लेकिन इट्स यू नो, इफ यू वॉन्ट अ मेमोरेबल सियाटल फोटो देन गम वॉल इज द प्लेस टू बी. अच्छा, अगला गाना जो है इज अ सॉन्ग रिक्वेस्ट, क्योंकि ये गम वॉल की बात कर रही थी तो मैंने खुद वहां पर किसी को कुछ प्रपोज करते हुए भी देखा था. सो अनिल हैज रिक्वेस्टेड दिस रेट्रो बट अ फन नंबर फॉर ममता, सो हियर इट इज, एंजॉय.

Well, that was मैं परवाना टेकन फ्रॉम पिप्पा. एंड यस, आपको मैं बताऊं सियाटल की अगर बातें, तो अगर आप पॉप कल्चर, यू नो, पॉप के फैन हैं, देन डेफिनेटली विजिट म्यूजियम ऑफ पॉप कल्चर. इट्स अ वेरी फन स्टॉप फॉर म्यूजिक एंड पॉप कल्चर फैंस. यू नो, सियाटल्स म्यूजिकल हेरिटेज बींग अ नेचुरल पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस. सो डेफिनेटली इफ यू आर अ पॉप फैन, देन डेफिनेटली म्यूजियम ऑफ पॉप कल्चर इज अनदर प्लेस दैट यू मस्ट विजिट वेन यू विजिट सियाटल.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
6: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
7: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

Well, that was Chanda Chamke Cham Cham, taken from the movie Fana. And this was a beautiful dedication from Arshia going out to her kids, you know. बड़े प्यारे से नाम है उनके, फिल्जा एंड अरफाज. और आपको बताऊं दैट फिल्जा जो है इट मींस जन्नत का गुलाब एंड अरफाज मींस रिस्पॉन्सिबल. एंड यस, इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊं, कुछ अच्छे गाने प्ले करूं सो दैट यू आर एंटरटेन एंड इन्फॉर्म्ड, राइट. दिस इज़ मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. और अब जब चांद की बात निकल ही आई है तो मैं आपको बताऊं कि पता है सियाटल में चांद भी जो है ना वो स्पेस नीडल के साथ सेल्फी लेने आ जाता है कभी कभी. जी हाँ, बिकॉज यू नो वन ऑफ सियाटल्स फेवरेट फोटोग्राफी कॉम्पोजिशन इज बेसिकली अ जायंट फुल मून अपियरिंग बिहाइंड और बिसाइड द स्पेस नीडल. ये जो टावर का फ्यूचरिस्टिक शेप है, इट मेक्स द होल सीन लुक लाइक समथिंग फ्रॉम अ स्काई साईफाई मूवी, यू नो. सियाटल के जो फोटोग्राफर्स हैं, दे रेगुलरली प्लान शॉट्स अराउंड मून पोजीशंस टू कैप्चर दिस अलाइनमेंट. बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स आती हैं. एंड आप वहाँ अगर सियाटल में हैं तो यू कैन, यू नो, देयर इज दिस रियल हिस्टोरिक ऑब्जर्वेटरी इन सियाटल जिसका कि नाम है थियोडोर जेकोबसन ऑब्जर्वेटरी. इट्स अ हिस्टोरिक ऑब्जर्वेटरी जहाँ पर यू नो पब्लिक एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि सम टॉक्स, सम टेलीस्कोप व्यूइंग एंड स्टार गेजिंग डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम एंड ऑफ कोर्स द वेदर, राइट. एंड देयर इज अ प्लैनेटेरियम एज वेल, यू नो, दिस इज द विलर्ड स्मिथ प्लैनेटेरियम एट पैसिफिक साइंस सेंटर. इट्स राइट अराउंड द स्पेस नीडल एरिया. तो जब आप स्पेस नीडल तो देखने जाएंगे, सो यू कैन डेफिनेटली गो टू दिस प्लैनेटेरियम. एंड यहाँ पे लाइव शोज होते हैं एक्सप्लोरिंग द मून, प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशंस एंड द नाइट स्काई, right? So sky watch can teach you how to recognize patterns in the stars visible that night. So planetarium also inke jo shows hote hain, they are included with general admission. So jab aap ye ticket lenge, so you can go and enjoy this show. And of course you need a time ticket, so aap timings dekh kar jaye and timings ke hisab se hi tickets khareede. They also have a moon adventure program exploring earth and the moon. Plus, there's also an astronaut academy connected to NASA's Artemis era of moon exploration. So this is all about, you know, Seattle ka jo ye planetarium hai. And then there's this observatory, very, you know, it gives you a very beautiful information and kafi interactive hai. So you will surely enjoy that.

यू नो दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी स्वदेश. एंड अब आ गया है आपके लिए एक गिव अवे. वेल वीकेंड है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर कोई नया रेस्टोरेंट आया है या कोई खाने पीने की जगह पता चली है तो आपको बताऊं. तो ये जो गिव अवे आ रहा है दैट्स कमिंग फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट. यू नो इट्स लोकेटेड एट द हाईवे 121 एंड कस्टर जंक्शन. एंड हियर इज योर चांस टू विन एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी. दैट्स गोइंग टू बी एट सैन्स इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन फूड. यहाँ आपको 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स जैसे कि क्रिस्पी डोसाज, फ्लफी इडलीज, यू नो कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स, और साथ ही साथ शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी भी मिलती है. सो फैमिली डिनर्स या फिर केटरिंग सर्विसेज कुछ भी आपका करने का मन है देन साथ ही साथ यू नो दे ऑल्सो हैव जैन फ्रेंडली ऑप्शंस. कई बार होता है ना कि आपके कुछ गेस्ट हैं जो भाई प्याज लहसुन नहीं खाते, सो जैन फ्रेंडली ऑप्शंस भी हैं उनके पास. एंड यू कैन ऑब्वियसली विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट. इट्स एट हाईवे 121 एंड कस्टर जंक्शन. और जो गिव अवे का सवाल है वो सवाल ये है कि क्योंकि मैं सियाटल की बात कर रही हूँ, आपको ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें जो आप देख सकते हैं बता चुकी हूँ, तो एक रिकैप हो जाए. आप मुझे कोई भी दो ऐसी जगह बताएं जो आप जब सियाटल जाएंगे तो यू विल गो एंड विजिट. सो लेट मी नो द स्टूडियो नंबर 9722355555. यू विल विन any dosa of your choice plus one filter coffee at Sans Idli Vegetarian Restaurant and Indian Food, right? तो आप मुझे बताएं कि सियाटल जाएंगे तो कौन सी दो जगह हैं जो आप ज़रूर जाके विजिट करेंगे.

0: Well, it's always, always good to love the जिंदगी that we have. We are all truly blessed, right? And yes, giveaway सवाल था Sans Idli restaurant की तरफ से. जो giveaway है उसका सवाल ये था कि आप मुझे call करके बताएंगे कोई भी दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसी जगह जो आप जब Seattle जाएंगे then you will go and visit. So we do have a listener on air with us. Hi, you're live on air.
1: Hi.
0: How
1: Hi,
0: are
1: this
0: you?
1: is Neha.
0: Hi, Neha.
1: Good, how are you?
0: I'm doing great. Thank you for asking. So, बताइए नेहा, सियाटल जाएंगी तो कौन सी दो जगह जरूर जाएंगी?
1: पाइक प्लेस मार्केट, स्पेस नीडल, माउंट रेनियर.
0: Looks like आप ऑलरेडी जा चुकी हैं. Have you been to Seattle?
1: Yes.
0: Awesome. So, can you tell me a little bit more about all these three places that you went to? Like some fun memories, something interesting to share?
1: Yeah. एक्चुअली हम ऑलमोस्ट एक साल रहे थे वहां पे.
0: ओह वाओ.
1: और इट वाज नियर पाइकलेस मार्केट इटसेल्फ.
0: अरे वाह, तो उसके बाद डालस आ गए तो मतलब वेदर का झटका ही लगा होगा
1: एक्चुअली.
0: राइट. अच्छा, तो हाँ आप बता रही थी.
1: तो हमारा एक्चुअली ऑफिस बिल्कुल पाइकलेस के पास था, तो हम रोज वहां से आना जाना था. हमारा वहां पे स्टारबक्स है, द फर्स्ट स्टारबक्स इन पाइकलेस. और आई एक वहां पे बेकरी है, ला पेनियर बेकरी. दैट इज एक्चुअली या फ्रेंच बेकरी, बट बहुत अच्छी है. हम वी यूज टू लव देयर, विजिट देयर एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी वीक इट्स.
0: ओह वाओ, ऑसम ऑसम. एंड स्पेस नीडल में भी यू एंजॉयड?
1: यस, स्पेस नीडल एक्चुअली जहाँ पे हमारा मतलब अपार्टमेंट था
0: जी,
1: दैट वाज नियर स्पेस नीडल इटसेल्फ. और एक साइड स्पेस नीडल था, एक साइड सी व्यू था, तो It was amazing.
0: अरे वाह वाह. सो नेहा, awesome, congratulations, आपने जीत लिया ये डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी कमिंग फ्रॉम सैंस इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. ये लोकेटेड है हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन पे. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू व्हाइल आई एम गोना प्ले अ ब्यूटीफुल सॉन्ग रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम अर्शिया. ऑलराइट, जस्ट होल्ड ऑन.
1: हैप्पी बर्थडे नेहा.

वेल, ऐसा हमें भी लगता है कभी कभी कि जब हमें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाए तो हो गया हमें सब हासिल, लेकिन जब वो डॉक्टर सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट आपके साथ बिताए तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो मैं पूरी बात समझा ही नहीं पाई अपनी, एंड अपॉइंटमेंट ख़त्म। तो इसलिए आपको मैं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ पर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स। यहाँ आपको 30 मिनट्स की विंडो दी जाती है जहाँ पर यू नो द डॉक्टर विल ट्रूली ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर हेल्थ एंड दे गिव यू टाइम, यू नो, बिकॉज पैशन हेल्थ में यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर ट्रीटेड लाइक फैमिली, एंड फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को ज़रूर रखिए याद। यू नो 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल, कहीं एनजाइटी केयर है या फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी टेस्टिंग हो, या फिर यू नो और कुछ जो भी आपका आपको चाहिए, यू नो दिस ऑल इज़ अवेलेबल एट पैशन हेल्थ, सो यू कैन स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे। आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को कॉल करें, द नंबर इज 214-666-6259, और यू नो ये भी याद रखें दैट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज आर पैशन। सो रिमेंबर द नंबर वंस अगेन इज 214-666-6259।

वेल दैट वॉज द टाइटल ट्रैक दिल धड़कने दो. एंड बिल्कुल दिल अच्छे से धड़केगा, हेल्दी हेल्दी धड़केगा, बिकॉज इफ़ यू लव नेचर देन सियाटल इज़ द प्लेस टू विजिट. बिकॉज यू नो इट्स स्पेशली गुड एज यू कैन कम्बाइन अ सिटी वेकेशन विद आउटडोर एक्सपीरियंसेस. आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिस्कवरी पार्क, यू कैन वॉक अलॉन्ग द वाटर फ्रंट, यू कैन विजिट नियर बाई आइलैंड, यू नो यू कैन डू सम कयाकिंग, एंड यू कैन मेक अ लॉन्गर एक्सकर्शन टूवर्ड्स माउंट रेनियर, एंड द व्यूज दैट यू गेट आर जस्ट माइंड बॉगलिंग. सो डेफिनेटली कयाकिंग का शौक है, देन यू कैन गो टू सियाटल एंड एन्जॉय सम नेचर फन.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
4: Lekin aapke doctor ka appointment milna usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
2: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
4: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग
7: हैं। अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
11: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं।
10: व्हाट,
12: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
13: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
14: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: सम जर्नीज बिगिन विद साइलेंस एंड सम बिगिन विद डिवोशन। At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
16: Jud jao apni dharti se, desiyon ka sachcha radio channel, Phonasia 104.9 FM.

वेल दैट वॉज ऑफ कोर्स प्रभु देवा का गाना. जी हाँ, प्रभु देवा आ रहे हैं आपके लिए एक शो लेकर. जी हाँ, यू नो मथंगी एंटरटेनमेंट ग्रुप प्राउडली ब्रिंग्स इंडियाज माइकल जैक्सन प्रभु देवा लाइव टू DFW. जॉइनिंग हिम आर लॉरेन गोटलिब, सोनल भदौरिया, अलेक्जेंडर नोएल, हरिनी नीलाकंतन, नताशा शर्पा एंड सानवी मेघना फॉर द अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट. ये होगा सैटरडे अगस्त 1 को एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी. यू नो यू कैन बुक योर टिकट्स नाउ. यू कैन कॉल देम. द नंबर इज 248-233-3828 एंड द मीडिया पार्टनर ऑफ कोर्स इज फन एशिया नेटवर्क. आप चाहें तो यू नो फन एशिया नेटवर्क के सोशल मीडिया पेजेस पर जा सकते हैं एंड यू कैन इजिली बुक दोज टिकट्स ऑन द पिंड पोस्ट. एंड इसी कॉन्सर्ट का एक गिव अवे टिकट मैं दे रही हूँ आपको. सो वॉट यू हैव टू डू टू विन दैट टिकट इज यू हैव टू गिव मी अ कॉल. स्टूडियो नंबर 972-235-5555.

पोस्ट एंड इसी कॉन्सर्ट का एक गिव अवे टिकट मैं दे रही हूँ आपको. सो वॉट यू हैव टू डू टू विन दैट टिकट इज यू हैव टू गिव मी अ कॉल. स्टूडियो नंबर 9722355555 एंड टेल मी एनी टू प्रभु देवा सॉन्ग्स जो कि हिंदी बॉलीवुड मूवी के हों एंड यू विल विन दिस गिव अवे विच इज वन टिकट फॉर दिस कॉन्सर्ट जो कि होने जा रहा है 1 अगस्त को एट द टेक्सस ट्रस्ट सीयू थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी वे यू विल सी प्रभु देवा लाइव. सो गिव मी अ कॉल, टेल मी एनी टू बॉलीवुड प्रभु देवा सॉन्ग्स एंड विन दिस गिव अवे. Right, and we continue with, you know, some more Seattle cool fun facts after this song.

0: ऑलराइट, मैंने पूछा था आपसे एक सवाल कि आप मुझे प्रभु देवा के बॉलीवुड के कोई भी दो गाने कॉल करके बताएं. एंड वी डू हैव अ लिस्टनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हेलो, हाय,
0: हाउ आर यू?
1: माय नेम इज श्रीकांत. आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग गुड. व्हाट्स योर नेम?
1: माय नेम इज श्रीकांत.
0: ऑलराइट श्रीकांत, तो बताइए कौन से दो गाने हैं प्रभु देवा के?
1: The very famous two songs that I know are the Mukabla Mukabla song and Hey Sara Sara with Madhuri Dixit.
0: Yes, are you a Prabhu Deva fan?
1: Yes.
0: Wow, so then you are in luck. You won this giveaway. So Shrikant, I'm going to take you off air, take some details from you. And in the meantime, I'll play the Hey Sara Sara song for our listeners.
1: Great, thank you so much.
0: All right, thank you.

taken from the movie Pukar. That was के सरा सरा. अच्छा, कभी अगर आपको कुछ फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैसे मैनेज की जाएं, देन यू नीड माई टाइम एक्विटी लेड बाई CPA सुधीर पाई, एज दे ऑफर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दे ऑफर रियल इस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज वेल. विजिट माई टाइम एक्विटी डॉट कॉम. आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं. द नंबर इज 4697021272. दैट्स माई टाइम एक्विटी डॉट कॉम, राइट? एंड बात करें सियाटल की, तो अक्सर ज़्यादातर लोग जो हैं जब घूमते हैं दे लव टेकिंग पिक्चर्स, बट होता क्या है कि यू माइट नॉट नो द राइट स्पॉट्स टू गो टू गेट दोज रियली रियली अमेजिंग पिक्चर्स. तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको वो जो सियाटल का टिपिकल पोस्ट कार्ड शॉट चाहिए ना, देन यू नीड टू गो टू कैरी पार्क. वेल, इफ़ यू वॉन्ट दैट क्लासिक फोटो वेर द स्पेस नीडल, डाउन टाउन स्काई लाइन, माउंट रेनियर, दे ऑल अपीयर टुगेदर, देन दिस इज द प्लेस एंड दैट्स कैरी पार्क. बेस्ट पार्ट है कि फ्री है. आप यू कैन गो अराउंड सनसेट ऑन अ क्लियर डे. माउंट रेनियर कैन अपियर इनॉर्मस बिहाइंड द स्काई लाइन. बहुत ही खूबसूरत लगता है ये. या फिर आप जा सकते हैं गैस वर्क्स पार्क, वन ऑफ द कूलेस्ट सनसेट स्पॉट्स. ये बड़ा ही एक अनयूजल सी जगह है, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग अमंग रेमिनेंट्स ऑफ एन ओल्ड इंडस्ट्रियल गैसिफिकेशन प्लांट, जहाँ पर अक्रॉस द लेक यूनियन यू गेट अ गॉर्जियस सियाटल स्काई लाइन. सो देर इज ऑल्सो अ बिग हिल फेमस फॉर काइट फ्लाइंग. सो आप जाकर यू कैन फ्लाई काइट्स. इट्स फ्री एंड मेक्स अ ग्रेट पिकनिक या फोटो स्टॉप. सो रिमेंबर दैट द प्लेस इज गैस वर्क्स पार्क, वे यू कैन एंजॉय सम काइट फ्लाइंग एज वेल.

डेफिनेटली ये खूबसूरत सियाटल शहर जो है जन्नत जैसा ही है, और डालस से जाएं तो यू फील कि यार कितना ग्रीन है. सो आई डू होप दैट सियाटल सिर्फ स्पेस नीडल और कॉफ़ी का शहर नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ माउंटेन्स भी हैं, वाटर फ्रंट है, फ्लाइंग फिश हैं, म्यूज़िक है, क्वर्की प्लेसेस जहाँ यू नो आपको हर कॉर्नर में एक नई स्टोरी मिलेगी. तो कभी माउंट रेनियर के साथ सियाटल स्काईलाइन की परफेक्ट पिक्चर, तो कभी पाइक प्लेस मार्केट की हासिल बसल, और कभी एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ ठंडी सियाटल की ब्रीज. सो वेल दिस सिटी ट्रूली हैज़ इट्स ओन वाइब. तो उम्मीद है आज का सियाटल का ये छोटा सा सफ़र आपको पसंद आया होगा, और क्या पता नेक्स्ट टाइम जब आप वेकेशन प्लान करें तो आपकी लिस्ट में जो है सबसे पहले सियाटल आए, राइट? सो इट्स ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू ऑल, प्लेइंग सम मेलोडियस सॉन्ग्स अलॉन्ग द वे. इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, बट आप कहीं जाइएगा नहीं, डू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, एज यहाँ हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे. कमिंग अप नेक्स्ट इज नीलम. मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 बजे इन जस्ट चिल, जहां करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

दिस इज KZMP 104.9 FM फन एशिया रेडियो पे आप है मेरे यानी नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी दोस्तों, आपके लिए लाती हूँ ये प्यारे नगमे तराने हर शनिवार की दोपहर 12 से 2 के बीच में और 2 से 3 के बीच में बातें होती है हमारी कम्युनिटी राउंड अप में। और आज की बातें जो है वो है क्या विषय क्या सेगमेंट मैं आपको बताती हूँ। पहले शुक्रिया अदा कर लूँ मैं हमारी दोस्त मधुरिका का जिन्होंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से एंटरटेन किया टिल नून। अब मेरा और आपका साथ टिल 3 PM। सो आज आपके लिए जो मैं लाई हूँ, आप जानते हैं अमूमन हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग विषय होते हैं, शब्द की बातें, कलाकार की बातें, कुछ आपकी राय, कुछ हमारी राय, फिल्मी कहानी का सेगमेंट वगैरह वगैरह। और एक ऐसा भी सेगमेंट होता है जहाँ पर मैं आपके लिए एक ही साल में रिलीज हुई फिल्मों की बातें लाती हूँ, कलाकारों की उसी साल की बातें लाती हूँ। चलते चलते हम आ गए 2019 में। जी हाँ दोस्तों, 2019 की कुछ फिल्मों की करेंगे बातें, उस साल के अवार्ड्स की कुछ करेंगे बातें, कुछ फ्लॉप्स, कुछ हिट, कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्म, सारी बातें सारे गाने टिल 2 PM ऑन 104.9 FM।

इमरान हाशमी पे फिल्माया गया था ये गीत, और फिल्म का नाम जो है वो है वाई चीर इंडिया। सो ये फिल्म रिलीज हुई थी इन 2019। कहा जाता है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उससे पहले इस फिल्म का टाइटल सोचा गया था चीट इंडिया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये शायद कुछ गलत मैसेज दे देगा एंड वी आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू एनकरेज इंडिया को कि भाई चीट कीजिए, और इसीलिए प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि नहीं नहीं चलिए टाइटल बदल देते हैं, और टाइटल बदल गया जिसका नाम रखा गया वाई चीट इंडिया। 2019 का साल बहुत ही शानदार रहा था। इस साल में हमने एक्शन फिल्म्स देखी, रोमांटिक देशभक्ति की पिक कुछ दो या तीन आ गई थी उनकी भी कुछ बात करेंगे, समाज को आईना दिखाने वाली भी कुछ बेहतरीन कहानियां थी। तो ये जो सफ़र है वो है 2019 का। आज थोड़ी सी घड़ी हम पीछे ले गए हैं, और अमूमन इस सेगमेंट में हम एक ही साल की बहुत सारी फिल्मों की बातें करते हैं। शुरुआत की थी इस सेगमेंट की मैंने 1989 से, जी हाँ कुछ बहुत सारे महीने या हफ्ते पहले की ये बात है। एंड ऑफ कोर्स वी डोंट डू दिस एवरी सैटरडे राइट, लेकिन धीरे धीरे चलते आ गए हम 2019 में। तो बातें होती रहेगी इसी साल की कुछ फिल्मों की, कुछ कहानियां, कुछ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें, और उसी के साथ अवार्ड्स की भी करेंगे बात फॉर द ईयर ऑफ 2019। अगली फिल्म जो थी वो बहुत बड़े बजट की रही। इस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। हिंदी के अलावा इस फिल्म ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म में थे प्रभास और श्रद्धा कपूर। फिल्म का नाम साहो, जी हाँ, 104.9 FM।

आपको वो फिल्म याद है 1942 लव स्टोरी? ऑफ कोर्स याद होगी भाई, ये कोई पूछने की बात है ना? तो वो फिल्म में जो गीत था, एक अमर गीत, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसमें अनिल कपूर पे फिल्माया था ये गीत, राइट? नाउ अनिल कपूर और उनकी बेटी एक ऐसी फिल्म में साथ हो जहाँ पे ये गीत को ऑफ कोर्स लिया गया था. नॉट ओनली दैट, इसी गीत से इस फिल्म का टाइटल बना गया था, एंड फिल्म का नाम था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये पूरी फिल्म का टाइटल है. और इसमें अनिल कपूर साहब थे, उनके साथ थी जूही चावला, एंड ऑफकोर्स सोनम भी थे, राजकुमार राव. फिल्म नहीं चली, बिल्कुल नहीं चली, ठीक ठाक थी, आई वुडंट से नहीं चली, इट वॉज एन एवरेज फिल्म, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को कहानी पसंद नहीं आई थी. आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2019 के गाने. जी हाँ, जो साल बॉलीवुड के लिए शानदार रहा. एंड हमारे बॉलीवुड में अक्सर बहुत सारी फिल्म रिलीज होती है, राइट? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फिल्म होती है जो फ्लॉप हो जाती है, कितनी भी कोशिश करने के बावजूद, कितनी भी मेहनत करने के बावजूद. लेकिन इस साल जो रही बातें, कहीं ना कहीं फिल्म अच्छी रही थी, देशभक्ति की बातें रही थी इस फिल्म में, बहुत सारी ऐसी फिल्म आई थी इस साल, अच्छे स्ट्रांग कंटेंट की फिल्म भी आई थी, एंटरटेनिंग की भी कुछ बात थी. तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही कैटेगरी की फिल्म आई थी, बहुत सारी ऐसी हम बातें करते रहेंगे आपके लिए. चलिए, जब एंटरटेनिंग फिल्म की बात निकली है तो मैं आपके लिए लाई हूँ अगली फिल्म जिसका नाम था लुका छुपी. इस फिल्म में थे कार्तिक आर्यन, उनके साथ कृति सेनन. एक अलग कहानी जो एक नए जनरेशन को पसंद आए, ऐसी कहानी थी इस फिल्म में. फिल्म का नाम लुका छुपी, रिलीज इन द ईयर ऑफ 2019.

आज ये थोड़ी सी घड़ी हमने पीछे कर दी, वैसे तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन गानों से बिल्कुल हो सकता है, यादों से बिल्कुल हो सकता है। आज के हमारे सेगमेंट में मैं आपके लिए जो भी गाने लाई हूँ 2019 की साल में रिलीज हुई फिल्मों की। इस सेगमेंट में हमने 89 से शुरुआत की थी और देखिए चलते चलते हम आ गए 2019 तक, और बहुत सारी फिल्मों की कुछ बातें करेंगे, फ्लॉप डिजास्टर्स से लेके ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, अवार्ड्स की भी बातें करेंगे, और ये सारी बातें तो भाई चलती ही रहेगी 2 बजे तक। और 2 से 3 के बीच में हम आपके लिए लाते हैं कम्युनिटी की बातें। जी हाँ, एंड दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी राउंड अप विथ मी योर होस्ट नीलम, जहाँ पर बहुत सारे नॉन प्रॉफिट के इवेंट्स, एक्टिविटीज, सोशल इवेंट्स की जानकारी लाती हूँ। हमारे साथ जुड़ते हैं समाज के जो भी नॉन प्रॉफिट इवेंट्स के प्रतिनिधि होते हैं, वो भी हमसे जुड़ते हैं, कुछ बातें करते हैं अपने अगले इवेंट्स की। वो सारी जानकारी मैं आपके लिए लाती हूँ टिल 3 PM। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी ड्रीम होम मॉर्गेज का। जी हाँ भाई, सालों से, दशकों से आप ही की सेवा में, हमारे समाज, हमारे कम्युनिटी की सेवा में। 9722455626 इज द नंबर टू कॉल, एंड द वेबसाइट इज dreamhomemortgage.com। वंस अगेन, दैट इज dreamhomemortgage.com। हुसैन जी को बिल्कुल कॉल कीजिएगा, आपके ख्वाब के घर को बिल्कुल आपने ले तो लिया, लेकिन मॉर्गेज के जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपके मसले हैं, सॉल्यूशन आपके लिए लाएंगे, एंड दैट इज dreamhomemortgage.com। अब चलते हैं अगली फिल्म की तरफ, और इस साल कुछ ऐसी फिल्में आई थी, जैसे मैंने कहा कि देखिए जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, 80s में 90s में जो फिल्म आती थी एक ही कैटेगरी की, या तो एक्शन या तो रोमांस, राइट। 2000 में कुछ बातें बदलने लगी, लेकिन आई थिंक लेट 2000 के बाद, 2015, 2016 के बाद जितनी भी फिल्म्स आने लगी, कंटेंट पे बहुत ही जोर दिया गया था। इट वाज नॉट कि भाई ये मासेस को पसंद आएगी या बात नहीं, दे डिड नॉट रियली केयर अबाउट दैट। कंटेंट जो है, कहानी है, उस पर बहुत जोर दिया गया था। तो कभी कभी लगता था कि इंस्पायर्ड बाय सम अदर रीजनल मूवीज या इंस्पायर्ड बाय सम अदर लैंग्वेज मूवीज, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही थी। तो इस साल ऐसी बहुत सारी फिल्म आई थी जिसकी जानकारी मैं आपको देती रहूंगी, और ये जो अगली फिल्म आपके लिए लाई हूँ मैं, वो है बदला। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, उनके साथ तापसी पन्नू भी थी, और कहा जाता है कि इस फिल्म जो थी एक स्पेनिश फिल्म थी जिसका नाम था द इनविजिबल गेस्ट, उसकी रीमेक। खैर, थ्रिलर फिल्म थी, बहुत ही अच्छी फिल्म, अगर आपने नहीं देखी, कभी कभी छूट जाती है, राइट, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं फिल्म देखने के लिए। तो 2019 की ये फिल्म जरूर देखिएगा। वंस अगेन, उसका नाम है बदला। तापसी पन्नू के सामने अमिताभ बच्चन, 91.9 FM।

0: सब आए, एक तुम ना आए भी हम आ जाते हैं बिल्कुल वीकेंड्स में ही सिर्फ आपके लिए 12 से 3 के बीच में सबको आप सुनते हैं एवरी डे मंडे टू फ्राइडे। लेकिन अगर आप हमें सुनना चाहते हैं तो हमारी मुलाकात आपके साथ होती है सिर्फ और सिर्फ सैटरडेज एंड संडेज़। लेकिन जितनी भी मुलाकातें जितने भी लम्हे हैं कोशिश होती है बिल्कुल मेरी आपके साथ कि वो लम्हे आपके लिए बहुत ही सुर और संगीत भरे हो, म्यूज़िकल भले भरे हो। ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो। संगीत की तो बातें हो लेकिन उसी के साथ कुछ बातें ऐसे भी हो जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बातें जानकारी मिले। विषय कोई भी हो, थीम कोई भी हो, सेगमेंट कोई भी हो, लेकिन बहुत सारी बातें होती है बॉलीवुड की भी, बियॉन्ड बॉलीवुड की भी, संगीत की, सांस की, आवाज़ की, कलाकारों की, और कभी कभी कुछ हम अलग ही दिशा में चल जाते हैं और आपकी राय लेते हैं कुछ ज़िंदगी के बहुत ही कठिन मसलों में, है ना। तो ये सारी बातें मेरे साथ यानी कि नीलम के साथ होती है आपकी एवरी सैटरडे एंड संडे ऑन 104.9 FM। उमर ख्वाजा जी को बिल्कुल याद करना चाहूंगी और शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उनका इस सेगमेंट के लिए। नंबर है उनका 4693005046 और यू कैन विजिट attorneyomar.com। आप जब तक केस नहीं जीतेंगे उनकी फीस आपको नहीं देनी। जी हाँ, एक्सीडेंट के कोई भी बात हो, अगर आपके जो भी मसले हो इंश्योरेंस से लेके कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, एक ही नाम एंड दैट इज उमर ख्वाजा 4693005046। एंड द वेबसाइट इज attorneyomar.com। मैं हूँ नीलम आपके साथ, कहीं मर जाएगा। अभी तो कुछ और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प कहानियां बातें बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेके फ्लॉप्स की बातें हो।
1: Moments don't fade, they echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels, timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest. Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.

पैपोन और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत सुनकर आपको लगा होगा कि भाई ये मंजिल का गीत है एंड व्हाई आई एम हियरिंग इट इन दिस न्यू सॉन्ग न्यू वॉइस। तो वेल, आज एक तो पहले स्वागत कर लेती हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत आप सभी का ऑन दिस शो। मैं हूँ नीलम आपके साथ, टिल 3 PM होगा आज का और हमारा आपका साथ। आज जो बातें हो रही है, जो विषय है, दैट इज़ अबाउट 2019 के बहुत सारे गाने आपको सुनवा रही हूँ, कुछ ऐसी ही फिल्मों की बातें कर रही हूँ, इसी साल रिलीज़ हुई फिल्मों की। बॉलीवुड की बातें हम करते हैं कि इस साल कौन कौन सी बॉलीवुड की फिल्में रिलीज़ हुई थी, राइट? लेकिन ये जो फिल्म थी वो टेक्निकली बॉलीवुड की फिल्म है, लेकिन नॉट अ थिएट्रिकल रिलीज़, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म की फिल्म है, जिसका नाम था म्यूज़िक टीचर। द रीज़न आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं आपके लिए ये शामिल करूँ मेरे लिस्ट में, कि कभी कभार ये बात होती है कि OTT फिल्म्स की जब जानकारी नहीं होती, हम भूल जाते देखना या हमने नहीं देखी होती। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी, नेटफ्लिक्स की फिल्म है, मैं जब संडे मेरा शो होता है, गैर फिल्मी गानों की बातें जब करती हूँ, उसमें बहुत बहुत बार मैंने इस फिल्म का जिक्र किया है, जिसका नाम है म्यूज़िक टीचर। ज़रूर देखिएगा, मानव कौल है उनके साथ इसमें, और RD साहब के गाने को एक बार फिर से इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह से रिमास्टर किया गया है। सो वेल, बनी रही हमारे साथ, 2019 की कुछ बातें बनी रहेगी, चली रहेगी आज टिल 2 PM। और इस साल पता नहीं फॉर वॉट एवर रीज़न पेट्रियोटिक फिल्म बहुत है, देशभक्ति की भावना जग गई थी फिर बॉलीवुड में। तो सुनते ये गीत फ्रॉम द फिल्म मणिकर्णिका, जिसमें कंगना रनौत थी।

प्रीतम के संगीत में सजा हुआ आपने ये कलंक फिल्म से टाइटल गीत सुना। आलिया भट्ट, वरुण धवन, उनके साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा एंड माधुरी दीक्षित एज वेल। 2019 की ये फिल्म जो करण जौहर पहले बनाना चाहते थे, बहुत सालों से वो सोच रहे थे इस फिल्म को बनाने के लिए, और ये सारी स्टारकास्ट तो थी ही ओरिजिनली उनके जहन में, लेकिन माधुरी दीक्षित का जो रोल था वो रोल लिखा गया था श्रीदेवी जी के लिए। हाँ, श्रीदेवी जी के वो बहुत बड़े फैन थे। करण जौहर की कोई भी फिल्म ने आप में अपने श्रीदेवी को नहीं दिखाता, राइट? एंड करण जौहर ऑल्सो न्यू दैट कि भाई मेरी फिल्मों में मैंने कभी भी श्रीदेवी जी के साथ काम नहीं किया। सो दिस वॉज अ फिल्म ही रियली वॉन्टेड टू वर्क विथ हर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, श्रीदेवी जी इस दुनिया में नहीं रही थी तब ये रोल दिया गया था माधुरी दीक्षित को। फिल्म में मैंने जैसे कहा कि ढेर सारे भर भर के बड़े बड़े कलाकार थे, संगीत अच्छा था, प्रीतम जी का संगीत था, फिल्म की कहानी अच्छी थी, डायरेक्शन ऑफ कोर्स करण जौहर साहब की खुद की फिल्म थी, तो इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट, गुड फिल्म। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म इतनी नहीं चली जितनी करण जौहर साहब ने उम्मीद रखी थी कि भाई ये फिल्म तो ब्लॉकबस्टर बन जाएगी, ऐसा नहीं हुआ था। इस साल ऐसी बहुत सारी फिल्म थी जो शायद कम बजट की थी लेकिन ब्लॉकबस्टर बन गई थी। सिमिलरली सलमान खान जिन भी अक्सर सोचते हैं कि भाई मेरी फिल्म अगर आए मैं तो दबंग हूँ, दबंग आए और लोग ना देखे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन दबंग भी फ्लॉप हो सकती है, ये इस साल 2019 ने प्रूव कर दिया था। 2019 में उनकी दबंग 3 आई थी, लोगों ने बिल्कुल प्यार से नकार दी, भाई कहा कि बस बहुत हो चुका, दबंग आप बंद कर दीजिए। सो दबंग 3 वॉज रिलीज इन द ईयर ऑफ 2019।

आवारा दिल मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है, और हम आपके लिए अच्छे गाने ही ढूंढते रहते। फिल्म दबंग जैसी क्यों ना हो, लेकिन अगर दबंग में भी कुछ ऐसे सुरीली बात हो तो वो ही सुनेंगे आप मेरे साथ। फिल्म फ्लॉप होगी, हिट होगी, डिजास्टर होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन गाने जहाँ जहाँ सुरीले होंगे, जहाँ जहाँ उसके सिर पैर होंगे, वो सारे गाने आप सुनेंगे। सिर पैर के बगैर गाने मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए ना लाऊं। 104.9 FM फनेशिया, आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ। आज 2019 की क्यों भाई बातें कर रही हूँ, बिकॉज ये जो सेगमेंट है उसमें मैंने बहुत सालों पहले इस सेगमेंट की शुरुआत की थी, क्योंकि हर शनिवार अलग एक विषय होता है, राइट, जहाँ अलग अलग साल की फिल्मों की हम बातें करते थे। एंड एज आई सेड, आई स्टार्टेड विद 80s और आज 2019 में हूँ मैं। दबंग 3 से आपने सुना ये गीत, जो 2019 की फिल्म थी। एंड एज आई सेड, यू नो, दबंग 1 ऑफकोर्स बहुत बहुत चली, लोगों को पसंद आई। दबंग 2 ठीक ठाक चली, 3 के बाद लोगों को लगा कि बस बहुत दबंग हो गया, आप दबंग मत कीजिएगा प्लीज़ भाई, हमें बख्श दीजिए। सो दबंग 3 इतनी नहीं चली थी। इसी साल सलमान खान की एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था भारत। नाउ भारत फिल्म में उन्होंने 17 से 70 तक उनके जो रोल, उनकी पूरी ज़िंदगी का सफ़र दिखाया गया था कि 18 से 70 साल तक के एक इंसान जो है, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, क्या क्या टर्न्स आते हैं, क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स है, अप्स एंड डाउन्स, एवरीथिंग इन दिस फिल्म जिसका नाम था भारत। इस फिल्म में पहले प्रियंका चोपड़ा के लिए सोचा गया था, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि भाई अब तो मैं हॉलीवुड की ही फिल्म्स करती हूँ, सॉरी मैं बॉलीवुड नहीं करूँगी। तब लिया गया था कैटरीना कैफ को। इन द ईयर ऑफ 2019, वंस अगेन इट इज़ सलमान खान।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Aaja meri gaadi mein baith ja.
7: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
8: Wo thoda overheating tha.
7: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
11: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
12: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
13: तो चल उन सेल्फी से पिज़्ज़ास खाते हैं.
12: व्हाट,
14: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन. पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड. ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd. विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स.
15: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
16: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage. Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
17: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
18: एंड वेलकम बैक. दिस इज केजीएमपी 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. मैं हूं नीलम आपके साथ. प्यार भरा स्वागत इस कड़ी कड़ी धूप में, इस गर्मी में. लेकिन उम्मीद रखती हूं कि हमारे गाने सुनकर आपके दिन को, आपके आफ्टरनून को हम म्यूजिकल बना पाए, आपके दिल में थोड़ी सी ठंड ठंड हो जाए. टिल 3 PM आपका और हमारा साथ. आज का सेगमेंट है जहां पर आपके लिए एक ही साल की फिल्म्स की बातें कर रही हूं जो एक ही साल रिलीज हुई थी. एंड दैट ईयर इज 2019 टुडे. तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट को भी याद कर ले, क्योंकि क्यों, लंच टाइम हो चुका है ना. तो अगर आप बाहर निकले हैं और सोच रहे कि कहाँ जाए, सो वेल, इफ़ यू आर अराउंड द गार्लैंड एरिया ज़रूर जाइएगा वहाँ पे. एंड अगर आपको स्पाइसी बातें अच्छी लगती है, उसी के साथ खाना अच्छा लगता है, तो वेल, इट इज़ द प्लेस फॉर यू. तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट, सिजलिंग तंदूरी प्लेटर से लेके रिच करी से लेके नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स के लिए आपका एक ही डेस्टिनेशन. एंड दैट इज़ तंदूरी फ्लेम, लोकेटेड इन गार्लैंड. एजी फिनटेक्स को बिल्कुल याद करते चले, 4699429888. और यू कैन विजिट agfintechs.com. ट्रस्टेड भी है, एफिशिएंट भी है, और आपके फ्यूचर के लिए आपको बिल्कुल रेडी कर सकते हैं. इंडिविजुअल्स की बात हो या बिजनेसेस की बात हो, एक ही नाम, एंड दैट इज एजी फिनटेक्स, आपके लिए, आपके टैक्स रिटर्न के लिए. वंस अगेन, इट इज agfintechs.com. जैसे कि मैंने कहा, 2019 की भी कर रही हूँ मैं बातें, और इसी साल रिलीज हुई फिल्म्स की कुछ बातें कर रही हूँ. बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग कैटेगरीज की फिल्म्स इस साल आई थी. कुछ रोमांटिक फिल्म्स थी, कुछ थ्रिलर फिल्म जैसे कि बदला, कुछ कंटेंट वाली स्ट्रॉन्ग कंटेंट फिल्म्स भी रही थी इस साल. कुछ मासेस को पसंद आए ऐसी फिल्म्स भी रही थी. लेकिन कुछ ऐसी फिल्म आती है जिसका जिक्र बहुत नहीं होता, जो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है गुमनामी में, अच्छी होने के बावजूद. एक ऐसी फिल्म का मैं बिल्कुल जिक्र करना चाहूँगी जो मैंने पहले भी 2-3 बार की है बातें उसकी, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट 2019, इस फिल्म की बिल्कुल बातें बनती है क्योंकि ये फिल्म उसी साल रिलीज हुई थी. फिल्म का नाम है मलाल. जी हाँ, मलाल, जिसमें जावेद जाफरी के बेटे ने पहली बार फिल्म में काम किया था, और उनका नाम है मिजान जाफरी. उनके साथ संजय लीला बंसाली की भांजी जो है शर्मिन सैगल, उन्होंने डेब्यू किया था इस फिल्म से. इस फिल्म को प्रोड्यूस पता है किसने किया था? इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली ने. जी हाँ, एंड एज आई सेड, यू नो, सम टाइम इट डज हैपन. फिल्म अच्छी होने के बावजूद, जस्ट बिकॉज देर आर सम न्यू फेसेस, न्यू नेम्स, प्रोड्यूसर थे संजय लीला भंसाली, लेकिन फिर भी इस फिल्म को इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली थी. सो इफ़ यू एवर गेट अ चांस, सैटरडे संडे आप बोर हो रहे, सोच रहे कि क्या देखा जाए, सब कुछ देख लिया, ट्राई दिस फिल्म. इट्स नॉट, आई वुडंट से कि अरे देखने के बाद आप फ्री ना हो जाएंगे, बट स्टिल अ गुड फिल्म जिसमें मिजान जाफरी ने बहुत ही डिसेंट एक्टिंग की है. उनके साथ है शर्मिन सैगल, एंड गुड सॉन्ग्स, बहुत अच्छे गाने हैं उसके, समथिंग डिफरेंट. तो ज़रूर देखेगा कभी मौका मिले तो. फिल्म का नाम है मलाल, विच वॉज रिलीज इन द ईयर ऑफ 2019.
19: तुम लोग को डर लगता हो तो मैं भी सो जाऊँ क्या?
20: नो, गुड नाइट.

मलाल, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम। और इतने सारे कॉल्स आए ये पूछने के लिए कि भाई ये फिल्म कब रिलीज हुई थी। तो आज मैं बात कर रही हूँ 2019 की। ऑफकोर्स 2019 में रिलीज हुई थी। एंड आई हैव प्लेड एक्चुअली मैनी टाइम्स इन माई शो व्हेन आई डू डिफरेंट कैटेगरीज सॉन्ग्स। तो उसमें बिल्कुल ये गीत मैंने आपको सुनवाया है। फिल्म का नाम वंस अगेन इट इज़ मलाल, जिसमें जावेद जाफरी साहब के बेटे ने पहली बार बॉलीवुड में डेब्यू किया है। एंड इट वॉज अ नॉट वेरी लो प्रोफाइल फिल्म। सी समटाइम्स इट डज हैपन, राइट, कि बड़े बड़े जब फिल्म आ जाती है, बड़े बड़े स्टार्स के नाम होते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के नाम, फॉर सम रीज़न कहीं ना कहीं ये जो बेचारी सारी छोटी छोटी मछलियाँ होती है ना, समुंदर में छुप जाती है, कहाँ गुमनामी में गुम जाती है। यही बात शायद कहीं पे हुई थी इस फिल्म के साथ, जिसका नाम है मलाल। अ गुड फिल्म, गुड कंटेंट, गुड स्टोरी, कहानी कुछ डिफरेंट थी। कहानी के साथ जो कलाकार, मैंने जैसे कहा कि जो नए दो कलाकार थे उनके किरदार भी बहुत अच्छे थे। एंड दे डिड प्रीटी डिसेंट रोल, यू नो, प्रीटी डिसेंट जॉब फॉर द फर्स्ट फिल्म, फॉर द बींग वेरी वेरी न्यू इन द बॉलीवुड। इसके बावजूद उनका काम बहुत अच्छा रहा। तो वेल, ऐसी बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे आपके साथ एवरी वीकेंड। और अगली जो फिल्म है 2019 की, मिशन मंगल से आपको सुनवाने जा रही हूँ ये गीत, जिसमें विद्या बालन के साथ थे ऑफकोर्स अक्षय कुमार, आप जानते होंगे। और एक बहुत ही अलग फिल्म बनी थी। ऑन दैट नोट, मैं सोच रही थी कि जब ये फिल्म भी देख रही थी तब मैं सोच रही थी कि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया की, बॉलीवुड की अगर बात कर ले, ऐसी फिल्म्स बहुत कम बनी है। एंड फॉर माय नॉलेज पहली शायद ये फिल्म थी जिसमें इतने सारे स्पेस की बात दिखाई गई थी या दिखाया गया था, कुछ ना कुछ डिस्कशन हुआ था। तो आप मुझे बताएं, जब तक मैं आपको ये गाना सुनवा रही हूँ, कि जैसे मिशन मंगल बनी थी, ऑफकोर्स मंगल के लिए, मंगल ग्रह की बात है, जो मिशन था पूरा, जो इट्स अ रियल लाइफ इंस्पिरेशनल इवेंट की बात, राइट, कि हमारे जैसे नासा है, इसे तरह से इसरो है इंडिया में। सो इसरो के जो साइंटिस्ट थे, किस तरह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, एंड हाउ डिड दे सक्सेस, ऑल दो स्मॉल डिटेल्स इस फिल्म में दिखाई गई थी। टू माई नॉलेज आई थॉट इट वॉज अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एवर कि इतनी सारी डिटेल्स इसरो के लिए या स्पेस के लिए दिखाई गई हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको और कोई फिल्म याद है? आई डू रिमेम्बर वन मोर फिल्म, लेकिन इट वॉज नॉट कम्प्लीटली लाइक दिस। तो खैर, चलिए आप मुझे बताइए, अगर इफ़ यू रिमेम्बर, कि बॉलीवुड की बात करिए, नॉट हॉलीवुड, हॉलीवुड में तो ढेर सारी फिल्म थी भाई, बॉलीवुड में ऐसी कितनी फिल्म बनी है जहाँ पे स्पेस की कुछ बात हो, जहाँ पे ऐसे जैसे कि मिशन मंगल की बात है, कहीं ना कहीं स्पेस रिलेटेड बात हो, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी की ऐसी बात हो। 972-235-5555 बताएंगे मुझे आप ऑन 104.9 FM।

0: ले रही हूँ कुछ कॉल्स ऑन एयर एंड ऑफ कोर्स ऑफ एयर भी बातें होगी. फनीशा बताइए, यू आर ऑन एयर.
1: यस, परमाणु एक मूवी थी,
0: परमाणु एक मूवी थी, बट परमाणु जिस,
1: जॉन
0: यस दैट वाज
1: जॉन
0: अबाउट
1: अब्राहम वाली.
0: शायद रिमेम्बर जो राजस्थान में, व्हाट इज दैट प्लेस जहाँ पे उन्होंने पहली बार दे वर ट्राइंग टू डू द न्यूक्लियर की एक्सपेरिमेंट, वो थी उसके लिए. द कहानी वॉज
1: ओके,
0: अबाउट नॉट द स्पेस, इट वॉज
1: देन
0: आई बिलीव
1: अबाउट
0: पोखरा, व्हाट इज दैट.
1: रॉकेट्री. हैव यू सीन दैट मूवी, आर माधवन?
0: यस यस सो जी यस, उनके साइंटिस्ट जो थे उनकी बायोपिक काइंड ऑफ फिल्म थी वो, राइट?
1: यस
0: यस
1: यस
0: एब्सोल्युटली. थैंक यू सर. एंड व्हाट्स योर नेम सर?
1: रहीम.
0: रहीम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर.

0: सवाल मैंने पूछा है कि आपको कौन सी ऐसी याद आ रही है फिल्म्स जहां पे आउटर स्पेस की कुछ बातें की गई हो. इफ यू रिमेम्बर प्लीज लेट मी नो. एंड फनीश, या यू आर लाइव ऑन एयर. हेलो.
1: हेलो.
0: यस सर, यू आर ऑन एयर, बताइए.
1: यस, एक मूवी थी मैं हूं ना, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान थे.
0: मैं हूं ना, नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान थे. यस आई रिमेम्बर, किरण खैर भी थी एंड ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें
1: जी
0: स्पेस
1: जी
0: की
1: जी
0: बातें थी सर. आई डोंट थिंक दैट उसमें कुछ स्पेस, या ऑफ कोर्स इट वाज अबाउट टेररिज्म एंड उनके जो प्राइवेट.
1: नो नो नो नो, उसका जो एक पार्ट में नसीरुद्दीन शाह जो थे वो स्पेस में होते हैं, वो अपनी किरण खैर को छोड़ के चले जाते हैं
0: ओके
1: दूसरे
0: मे बी आई
1: प्लैनेट
0: मिस
1: में
0: दैट
1: या कुछ.
0: पार्ट. ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू.

0: बिल्कुल, इस फिल्म ने बहुत सारी शाबाशियां बटोरी थी। मंगलायन जो थी हमारी भारतीय मिशन मंगल, इसरो की बहुत बहुत बड़ी जीत थी। इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से इसे दिखाई गई थी। एंड आई एम आस्किंग माई लिसनर्स, आप सभी से पूछ रही हूँ कि हमारे बॉलीवुड में कहीं ना कहीं ऐसी फिल्म बनी नहीं है। एंड फनीश, योर लाइव ऑन एयर। हेलो, यस सर, यू आर ऑन एयर, बताइए।
1: वन ऑफ द मूवी इन द बॉलीवुड इज हैविंग लाइक पार्ट वेयर इट रिलेटेड टू द
0: हाँ,
1: स्पेस,
0: यस सर,
1: नो द मूवी नेम इज जीरो ऑफ अनुष्का
0: हाँ,
1: शर्मा एंड
0: यस
1: शाहरुख
0: यस,
1: खान।
0: आई डिड हैव दैट नेम ऑन माय माइंड बिकॉज उसमें लास्ट पार्ट एक्चुअली नासा का दिखाया गया था, विच ऑनेस्टली आई फेल्ट वेरी रिडिकुलस। मुझे लगा कि ऐसे कौन किसी को प्रिपेयर कर लेता है भाई, कोई भी ऐसे आके बोल सकता है कि मैं नासा में से मैं जाऊंगा स्पेस पे, एंड दे आर रेडी फॉर दैट, एंड दे आर मेकिंग हिम रेडी, यू नो। दैट वॉज लिटिल, ऑफकोर्स बॉलीवुड की स्टाइल थी उसमें, सो कांट चैलेंज द बॉलीवुड लॉजिक, राइट? बॉलीवुड फिल्म्स की देखने के वक्त यू कैन नॉट चैलेंज देयर रीजनिंग।

0: शाबाश, या बिल्कुल 2019 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, मिशन मंगल, एंड एज आई सेड, वेरी फर्स्ट फिल्म आई बिलीव बॉलीवुड में ये एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा, जो आउट एंड आउट इट वॉज ऑल अबाउट स्पेस. ऑफकोर्स स्पेस में दिखाई नहीं गई थी, इट वॉज नॉट डन कि जैसे हमारी हॉलीवुड में इंटरस्टेलर फिल्म हो या मार्स की बात हो या यू नो देर आर सो मैनी प्रोजेक्ट हेल मेरी आई थिंक राइट देर आर सो मैनी ऑन माई हेड, मैं भूल जाती हूँ नाम कभी कभी. लेकिन बॉलीवुड में पहली बार ऐसी फिल्म थी जिसमें इवन दो इट वॉज नॉट रियली शोन कि स्पेस में क्या होता है, बट स्टिल नासा की बहुत जरा इसरो की बहुत सारी बातें थी एंड वेरी स्मॉल डिटेल्स जो उनकी साइंटिफिक डिटेल्स होती है दे मेड श्योर कि उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए. सो वेरी गुड जॉब. एंड द नाम्बी इफेक्ट, इफ़ यू रिमेंबर रॉकेटरी जो फिल्म थी 2022 में आई थी, आर माधवन ने किरदार निभाया था नाम्बी नारायण का, दैट वॉज काइंड ऑफ अबाउट स्पेस बिकॉज ऑफकोर्स वो उन्होंने खुद ऐसी रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, सो इट वॉज अबाउट स्पेस आई वुड से. उसके अलावा मुझे ऐसी कोई सीरियस फिल्म नज़र नहीं आ रही है या मैंने देखी नहीं शायद. अगर आपकी राय हो तो बिल्कुल बताइएगा. एंड फनीश, या यू आर लाइव ऑन एयर. हेलो
1: हेलो नीलमबेन, गुड आफ्टरनून.
0: यस दिस जी बताइए, यू आर ऑन एयर.
1: मूवी नेम आई रिमेम्बर इज कोई मिल गया, ऋतिक रोशन एंड प्रीति जिंटा.
0: उसमें एलियन की बात थी राइट सर. कोई मिल गया,
1: एलियन इज कमिंग फ्रॉम दैट आउटर वर्ल्ड,
0: आउटर स्पेस. यस एब्सोल्युटली आई वुड टेक दैट, कम्प्लीटली अग्री. आउटर स्पेस से वो आए थे एंड दैट वाज ऑफ कोर्स कोई मिल गया क्रिश फिल्म के बाद, उसके बस बहुत सारी उनकी भी सिक्वल आई थी. सो दैट वॉज ऋतिक रोशन. सो वेल दैट्स अ गुड मैसेज फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स. हमारा शो तो पता नहीं कौन सुन रहा है बॉलीवुड में अभी, लेकिन अगर कोई सुन रहा है तो उनसे बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी कि भाई एक ऐसी फिल्म बनाइए जिसमें ज़्यादातर कुछ ऐसी बात रोमांटिक भी ना हो, थ्रिलर एक ही कहानी ना हो, कुछ आउटर स्पेस की भी बात हो. एक और लास्ट कॉलर ले लूँगी ऑन एयर. फनीश आई लाइव ऑन एयर. रेडियो की आवाज़ प्लीज़ कम कर लीजिए. हाय जी बताइए. यस यू आर ऑन एयर, लेकिन रेडियो की आवाज प्लीज कम.
2: राइट, सो देयर वाज दिस मूवी बिलू द बार्बर.
0: हाँ बिलू द बार्बर जी, शाहरुख खान की थी, इरफान खान, आई रिमेम्बर.
2: यस इसके अंदर भी स्टोरी के अंदर थोड़ा सा स्पेस रिलेटेड था.
0: स्पेस रिलेटेड था, ऑल राइट. मैंने शायद वो पार्ट मिस कर दिया होगा, बट थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. एंड फनीश, रेडियो की आवाज प्लीज कम कर दीजिए. हेलो
3: हello ma'am.
0: Hello, yes.
3: Hello, ma'am.
0: Yes, I can hear you. What's your name?
3: My name is Ethan Masson, ma'am.
0: Very nice. Tell me, what is your answer? What do you want to say?
3: And my answer is the movie Swadesh.
0: Swadesh. Yes, he was working in NASA. Very good. See? Yes. He did not go to space, but he was working in NASA in that film. Good job. How old are you, beta?
3: 11 years old.
0: All right, thank you.

0: तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जोग्राफिया, क्या बात है भाई। ऋतिक रोशन आए थे इस साल सुपर 30 के साथ, जिसमें ज़्यादा फोकस था एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन पर। सुपर 30 अगेन एक बायोपिक पर आधारित ये फिल्म बनी थी, जो ऋतिक रोशन का कुछ अलग किरदार था उसमें। ज़िंदगी की जो छोटी छोटी बातें होती है कि सरकमस्टेंसेज में अगर कोई इंसान आगे आना चाहे तो नहीं आ सकता, तो कैसे इंस्पिरेशन मिलती है उनको, मोटिवेशन मिलती है, ये बात थी उस फिल्म में जिसका नाम था सुपर 30। 2019 की फिल्मों की बात कर रही हूँ। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू डेफिनेटली एक्नोलेज एंड से गुड जॉब, कमेंडेबल जॉब टू ईच एंड एवरी ऑफ यू हु आर कॉलिंग मी एंड स्टिल गिविंग मी एन आंसर कि भाई आप सोच धीरे छोटी छोटी बातें। मैंने पीके फॉर एग्जांपल, पीके फिल्म के लिए मुझे हमारी एक लिसनर का कॉल आया कि भाई उसमें भी रिमेम्बर आमिर खान बाहर से आए थे, एलियन थे, एब्सोल्युटली पीके में भी वो बाहर के थे, तो स्पेस की बात हुई ना। आई मस्ट से यू ऑल आर सच अ स्मार्ट लिसनर्स जो बहुत बारीकी से फिल्म्स देखते हैं, बारीकी से फिल्म्स की बातें याद रखते और हमें बताते भी हैं। एंड फनीश आई योर लाइव ऑन एयर।
1: हेलो
0: हेलो, यस यस, यू हैव ओनली 30 सेकंड्स, बताइए क्या है आपका जवाब। Absolutely, Steven Spielberg ki, but yeah, that was a Hollywood film. But thank you, appreciate your calling in. Chandrayaan, hamari ek aur listener ne kaha ki wo ek TV show tha, bilkul. So dekhe, baat, it is not about the question ki maine sawal kya pucha hai, it is about your participation. आपकी जो दिलचस्पी से आप हमें कॉल करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी नंबर लग जाए, और जिस तरह से आप प्यार से हमें जवाब देते हैं, इट इज़ अबाउट दैट। एंड वंस अगेन, कोई भी विषय हो, कोई भी सेगमेंट हो, जिस तरह से आपके पास जानकारी होती है, ईच ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, कमेंडेबल जॉब, थैंक यू सो मच। बस यही होता है प्यार, यही होता है आपका और हमारा कनेक्शन। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट जस्ट द सॉन्ग्स, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट बींग हियर ऑन द रेडियो इन फ्रंट ऑफ माइक, इट इज़ अबाउट मेकिंग दैट कनेक्शन विच वी डू every weekend with you all.
2: ये तारा वो तारा हर तारा।
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: भूख लगी
9: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
1: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.

स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू रिलीज्ड इन 2019, एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत ऑन 104.9 एफएम फनेशा रेडियो। ये है आपका और हमारा साथ है एवरी वीकेंड का, सैटरडेज 3 बजे तक और 2 बजे तक। आज आपके लिए जो गाने लाई हूँ वो गाने हैं कुछ 2019, एक ही साल की कुछ फिल्मों की हम कर रहे हैं बातें, टिल 2 PM होगी ये बातें। चलिए शुक्रिया अदा करते चलो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का। 214-666-6259 इज द नंबर टू कॉल एंड इफ़ यू वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट, पूरी 30 मिनट्स आपको मिलेगी। जी हाँ, अक्सर अमूमन हम जब डॉक्टर्स के पास जाना होता है हमें 2 मिनट उनके दर्शन हो जाते हैं नाम बढ़े दर्शन छोटे, राइट? 2 मिनट में बस आए, नहीं गए, नहीं बाहर रूम के। तो यही बात शायद पैशन हेल्थ में ना हो, आप अगर जाएंगे आपको पूरी अटेंशन मिलेगी, आपके जो भी कंसर्न्स है क्वेश्चन है उनको एड्रेस किया जाएगा एंड दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। जरूर जाइएगा, विटामिन की डिफिशियंसी हो या एंग्जाइटी केयर एंड देन देर आर सो मेनी डिफरेंट इश्यूज, राइट? इवन आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन की तलाश में आप है, वेल दिस इज द नेम फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर योर एंटायर फैमिली, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। जैसे कि मैंने कहा आज 2019 की बातें हो रही है, बस ऐसे ही आपको लगेगा क्यों भाई आउट ऑफ द ब्लू रैंडमली 2019 लेकर बैठ गई हो, क्योंकि इस सेगमेंट में 89 से मैंने शुरुआत की थी और हर सैटरडे तो होता नहीं है सेगमेंट, अलग अलग विषय होते हैं। तो आज के हमारे इस सेगमेंट में जहां एक ही साल की बातें होती है, इट इज़ अ टर्न ऑफ 2019। और इस साल जैसे मैंने कहा डिफरेंट कैटेगरीज की फिल्म आई थी, देशभक्ति की भी फिल्म बहुत सारी आ गई थी, मिशन मंगल की बात हो, उरी 20 साल रिलीज हुई थी, केसरी

इट इज़ अ टर्न ऑफ 2019। और इस साल जैसे मैंने कहा डिफरेंट कैटेगरीज की फिल्म आई थी, देशभक्ति की भी फिल्म बहुत सारी आ गई थी, मिशन मंगल की बात हो, उरी भी इस साल रिलीज़ हुई थी, केसरी भी इस साल रिलीज़ हुई थी, कुछ एंटरटेनिंग फिल्म्स थी, कुछ कंटेंट वाली अच्छी फिल्म्स भी बनी थी, कुछ डिफरेंट कहानियाँ लेकर भी इस साल में हमने देखी थी फिल्म्स। और जैसे मैंने मलाल की बात की थी आपको कि कुछ फिल्म जो थी जो छोटा बजट था कहीं ना कहीं गुमनामी में गुम हो गई थी, क्योंकि लोगों ने इसे शायद देखा नहीं था, इसके लिए इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई थी, मार्केटिंग नहीं हुई थी कि लोग देख पाए। सिमिलरली आई वॉच्ड वन फिल्म इन 2019, मुझे लगा कि इस फिल्म की होनी चाहिए इतनी पब्लिसिटी, हुई नहीं थी। फिल्म काफ़ी अच्छी थी एंड अगेन इट वॉज इंस्पायर्ड बाई ट्रू इवेंट, एक लड़की की कहानी थी और फिल्म का नाम है द स्काई इज पिंक, बॉलीवुड की है, डोंट वरी मैं हॉलीवुड का नाम नहीं दे रही हूँ भाई। और इसमें फरहान अख्तर के साथ प्रियंका चोपड़ा थी, जी बिल्कुल आपने सही सुना, फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा, एंड अ गुड फिल्म। इट वॉज नॉट अ टिपिकल कमर्शियल फिल्म नहीं थी, इट वॉज नॉट ऑफकोर्स अ डॉक्यूमेंट्री भी नहीं थी, लेकिन इट वॉज नॉट लाइक ए लव स्टोरी है और सब हैप्पी हैप्पी एंडिंग है। इट वॉज अबाउट अ गर्ल हु इज फाइटिंग अ कैंसर, तो उसके लिए कुछ कहानी थी, दिल ही तो है गीत का नाम है, लेकिन फिल्म का नाम है द स्काई इज पिंक। फिल्म नहीं देखी, नहीं सुना, वेल आज आपने सुन लिया, मौका मिले जरूर देखेगा। रिलीज्ड इन द ईयर ऑफ 2019, फिल्म में थी प्रियंका चोपड़ा एंड फरहान अख्तर, द स्काई इज पिंक ऑन 104.9।

द स्काई इज पिंक, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आपने अभी सुना। 2019 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, प्रियंका चोपड़ा और उनके साथ फरहान अख्तर की। ये फिल्म अ वेरी वेल मेड फिल्म, यस, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट जरूर देखिएगा। प्यार की कहानी है, हस्बैंड वाइफ की कहानी, एंड देन संतान उनकी जो बेटी होती है, जिस तरह से उस बेटी के लिए उनका एक फाइट। इट्स नॉट ओनली अबाउट द डॉटर एंड फादर मदर की कहानी, लेकिन बेटी किस तरह सर्वाइवल के लिए लड़ रही है और उसके साथ पूरा परिवार। इट इज स्काई इज पिंक। 2019 में एक ऐसी फिल्म की बात बिल्कुल करना चाहूंगी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। यू नो, समटाइम्स फिल्म्स अच्छी हो बुरी हो डजंट मैटर, कॉन्ट्रोवर्सी जब होती है तहलका मच ही जाता है। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी, फॉर मैनी रीजन्स, इट वॉज नॉट ओनली अबाउट शाहिद कपूर का किरदार जो था, अबाउट कहानी क्या थी, मैनी रीजन इट डिड क्रिएट स्टर और कंट्रोवर्सी इन द इंडस्ट्री कि भाई ऐसे भी कोई प्यार करता है, ऐसे भी कोई लड़का होता है, ऐसा कोई डॉक्टर होता है। खैर, लेकिन बुरी वजह से, तो बुरी वजह से फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। लोगों को फिल्म पसंद आई ना पसंद आई, दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। अच्छा बिजनेस किया बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स एज वेल, गाने बहुत अच्छे रहे थे। और इस फिल्म में शाहिद कपूर ने, देखिए डायरेक्टर का जो विजन होता है, राइट, किरदार ऐसे ही होते हैं। शाहिद कपूर की पर्सनल चॉइस क्या है, शाहिद कपूर पर्सनली क्या मानते थे, दैट इज़ नॉट द पॉइंट हियर। शाहिद कपूर ने वो किया जो डायरेक्टर ने उन्हें बोला कि भाई आपको ऐसे ही किरदार निभाना है, ये है आपकी पर्सनालिटी और आपको ऐसे ही बिहेव करना है, दैट्स वॉट ही डिड। तो ये गीत सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूछना चाहूँगी, आपको बनाऊँगी मैं जूरी मेम्बर और इस साल के हम आपके लिए बेस्ट एक्टर के ऑप्शन देंगे और फिर आप मुझे बताइएगा कि कौन बनेंगे बेस्ट एक्टर आपकी नज़र में। खैर, पहले सुन लेते हैं कबीर सिंह, एज आई सेड, फॉर गुड रीजंस और बैड रीजंस फिल्म बहुत अच्छी चली, फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और गाने बन गए थे ब्लॉकबस्टर।

0: कबीर सिंह से सुना आपने गीत तुझ पर तो मेरा ही हक है, एंड फिल्म में कुछ ऐसी कुछ अलग बात थी जो कई लोगों को पसंद नहीं आई थी। बट एज आई सेड, यू नो, बॉलीवुड में कंट्रोवर्सीज से भी फिल्म ज़्यादा चलने लगती है। चलिए, अक्सर जब हम अमूमन ये हम आपके लिए सेगमेंट लाते हैं, आपको बिल्कुल मौका देते हैं टू बिकम अ जूरी मेंबर और बताने के लिए कि अगर आपके बस में होता तो आप किसको बेस्ट एक्टर का रोल या किरदार अवार्ड देते, राइट? कुछ ऑप्शन दे रही हूँ उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो जो ऑप्शन आए थे, नॉमिनेशंस थे, और आप तय करेंगे आपकी राय में। यू डोंट हैव टू टेल मी द एग्जैक्ट आंसर कि भाई उस साल कौन जीते थे। आई एम नॉट आस्किंग यू दैट। व्हाट आई एम आस्किंग इज व्हाट इज योर ओपिनियन कि आप किन को बनाना चाहेंगे बेस्ट एक्टर ऑफ दैट ईयर। सो पहला ऑप्शन है आपके पास साथ, शाहिद कपूर, कबीर सिंह। जी हाँ, कबीर सिंह उनका नाम था, कबीर सिंह के लिए उनकी नॉमिनेशन। विकी कौशल फॉर द फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसी साल रिलीज हुई थी। ऋतिक रोशन फॉर सुपर 30 एज आनंद कुमार, एंड रणवीर सिंह गली बॉय भी उसी साल रिलीज हुई थी। सो आपके ऑप्शन फिर से आपको बता देती हूँ, आपके नॉमिनेशन रणवीर सिंह इन द गली बॉय, या फिर ऋतिक रोशन सुपर 30 में, शाहिद कपूर कबीर सिंह में, या विकी कौशल उरी में। बताइए मुझे कि आप किन को अवार्ड देना चाहेंगे, कौन बनेगा आपके लिए मैन ऑफ द ईयर, यानी कि एक्टर ऑफ द ईयर। फिल्म फेयर अवार्ड गोज टू हो 104.9 FM फनीशिया रेडियो। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहूँगी 2 बजे तक, और आपकी राय ले रही हूँ, आपकी ओपिनियन, क्योंकि आप है भाई आज की जूरी मेंबर फॉर द अवार्ड्स।
1: कांधे पे सूरज

0: फिर से नॉमिनेशंस आपको बता रही हूँ, रणवीर सिंह फॉर गली बॉय, आयुष्मान खुराना नहीं सॉरी ऋतिक रोशन फॉर सुपर 30, शाहिद कपूर और विकी कौशल एंड फनीशा, क्या है आपका जवाब, क्या है आपकी राय सर?
1: ऋतिक रोशन फॉर सुपर 30,
0: आनंद कुमार को आपने अवार्ड दिया, वेरी गुड सर, इवन आई लाइक दैट मूवी, डिफरेंट कैरेक्टर राइट ऋतिक रोशन का,
1: वेरी अनलाइक ऑफ हाउ ऋतिक हैज डन हिज अदर रोल्स,
0: यस यस,
1: तो उसने बहुत अच्छा उसमें, yeah, he stepped into that shoes very well. Yeah.
0: And you know his makeup as well. I don't know if you have noticed that in his film ki aksar unki makeup mein bhi bahut unki bariki rahi, to usme jo unka Anand Kumar ka role tha, because he grew up in a very humble background in a slum area. To unka jo makeup tha, it was shown in such a way ke it doesn't look like shiny shiny Ritik. Kyunki Ritik Roshan ke jo looks hai, wo lag nahi rakte, kabhi bhi lag nahi sakte ki wo slum area mein bade hue ho.
1: So
0: he did make sure ki unki मेकअप ऐसा हो कि वो लगे कि ही इज फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड. सो थैंक यू सर.
1: इनफैक्ट उसने वो एक्सेंट भी अच्छा पकड़ा,
0: बिहारी एक्सेंट, यस,
1: एंड हिज स्पीच वाज आल्सो, या आई मीन हाउ ही डिलीवर्स द,
0: एब्सोल्युटली, यस सर, थैंक यू जी. एंड फनीशा, किनको बनाएंगे आप बेस्ट एक्टर, बताइए.
2: देखिए फैन तो वैसे मैं हूँ रणवीर सिंह की, लेकिन जो नाम आपने दिए हैं उस हिसाब से तो कबीर
0: सिंह को आप बना देंगे बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर. चलिए, शाहिद कपूर ने एक्चुअली अच्छा काम किया था, राइट, इवन दो इट वाज अ कंट्रोवर्शियल रोल, बट ही डिड वेरी वेरी वेल इन दैट रोल. उनका जो किरदार था लग रहा था गुस्से वाले, एंड यू नो द वे ही वाज शोन अल्कोहलिक इन सम ऑफ द पार्ट्स, वेरी वेरी गुड जॉब. सो अब तक भाई ऋतिक रोशन को मिला है अवार्ड, आपकी तरफ से शाहिद कपूर को भी मिला है, रणवीर सिंह भी लाइन में खड़े हैं उनके साथ, विकी कौशल भी है, तो बताइए आप किनको बनाएंगे?

0: बहुत सारे ऑफर कॉल्स भी ले रही हूँ एंड सरप्राइजिंगली कबीर सिंह को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं. कबीर सिंह को बनाया जा रहा है भाई मैन ऑफ द ईयर, एक्टर ऑफ द ईयर. तो रणवीर सिंह, अक्षय कुमार को केसरी के लिए नॉमिनेट उस साल किया गया था, लेकिन मैंने नहीं दी थी नॉमिनेशन. मैंने आपको से पूछा था रणवीर सिंह के लिए, उनके साथ ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर एंड विकी कौशल. सो विकी कौशल उरी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, नो डाउट अबाउट दैट. ऋतिक रोशन की मैं भी पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. सुपर 30 में उन्होंने बहुत अच्छा किरदार, द वे ही डिलीवर्ड हिज डायलॉग्स एंड इट वॉज वेरी वेरी वेल डन, वेरी वेल प्रैक्टिस्ड रोल. बहुत उन्होंने अभ्यास किया था उस रोल के लिए. शाहिद कपूर, पर्सनली आई थॉट कि उन्होंने ही डिड एन एक्सेलेंट एक्सेलेंट रोल. हालांकि कहानी, ऑफकोर्स आई डिड नॉट अग्री विद द एंटायर स्क्रिप्ट, आई डिड नॉट अग्री विद द एंटायर वे द लव वॉज पोर्ट्रेड, क्योंकि प्यार, हर किसी के लिए प्यार के अलग अलग मायने होते. खैर, वो दिस इज लाइक अ डिफरेंट शो, डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. रणवीर सिंह के लिए भी बहुत लोगों ने कॉल किए, लेकिन पर्सनली आई वुड गिव इट टू शाहिद कपूर. खैर, उस साल का अवार्ड मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का नहीं, लेकिन जो अवार्ड गया था उस साल, जिस एक्टर को बाकायदा फिल्म फेयर की तरफ से, वो एक्टर जिनका किरदार का नाम था मुराद अहमद. जी हाँ, जो मुराद अहमद बने थे वो थे रणवीर सिंह. फॉर दैट ईयर ही डिड विन एन अवार्ड फॉर द फिल्म गली बॉय.
1: अंदर की सच्ची कहानी, अंदर का लाभ फटके बाहर आंदे.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Jaane wo kaun sa desh jahan tum chale gaye.
6: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
4: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
7: बेटा 95% आए?
8: हाँ मम्मी।
7: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
9: मेरा?
7: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
9: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
12: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

एंड वेलकम बैक, दिस इज़ केजीएम 104.9 एफएम फनीशा रेडियो पे। मैं हूँ नीलम, आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप। जी हाँ, यह कार्यक्रम आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर हमारी कोशिश होती है आपके लिए बहुत सारी धार्मिक या सामाजिक संस्था की जानकारी लाए, बहुत सारे हम आपके लिए नॉन प्रॉफिट इवेंट्स की जानकारी लाए, कुछ आपकी पसंद के इंस्पिरेशनल स्पिरिचुअल मोटिवेशनल गाने भी हो। ये सारी बातें, ये सारे गाने रहेंगे आपके साथ टिल 3 PM एंड इट इज़ ब्रॉट टू यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर एंड प्रेजेंटेड बाय मी योर होस्ट नीलम दवे।

कितना

104.9 FM फनी शरीर पे आप है मेरे यानी नीलम के साथ और कार्यक्रम जो आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अभी उसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए बहुत सारे इवेंट्स की जानकारी लाते हैं। हमारे साथ जुड़ते हैं धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि टिल 3 PM। उसी के साथ आप ही के पसंद के कुछ स्पिरिचुअल मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल गाने पेट्रियोटिक गानों के साथ होते हैं। चलिए कुछ कार्यक्रम की आपको जानकारी दे दूं। आज शाम TFW हिंदू टेंपल में आप जा सकते हैं सुंदरकांड पाठ बाय श्री अतुल पुरोहित जी एंड ग्रुप। जी हाँ, सैटरडे जुलाई 25th, इट इज स्टार्टिंग एट 5 PM DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी इन अर्विंग। वैष्णव संघ ऑफ डेलस आपके लिए प्रस्तुत करते हैं कल्चरल फेस्टिवल एंड इट इज हैपनिंग ऑन अगस्त 26। जी हाँ, कल्चरल फेस्टिवल अगस्त 29th एक्चुअली एंड अगस्त 26 टिल 29th दे हैव श्री द्वारकेश लालजी महोदय श्री इन डेलस एंड अगस्त 29th दे आर सेलिब्रेटिंग कल्चरल फेस्टिवल। इट इज कल्चरल फेस्टिवल ऑन अगस्त 29th एंड श्री द्वारकेश लालजी महाराज महोदय श्री विल बी इन डेलस फ्रॉम 26 टिल 29th अगस्त श्री यमुना जी गुणगान महोत्सव। INT प्रस्तुत करते हैं आनंद बाजार 49th आनंद बाजार हैपनिंग एट कोमरेका सेंटर इन फ्रिस्को 2 PM ऑनवर्ड्स एंड हैपनिंग ऑन 15th दिस टाइम सी इट इज कोइंसिडेंटली हैपनिंग ऑन 15th अगस्त इटसेल्फ सैटरडे। राधा कृष्ण टेंपल सीनियर क्लब मेट एंड इट इज हैपनिंग टुडे। जी हां, 4 PM टिल 7 PM इन द टेंपल वंस अगेन राधा कृष्ण टेंपल सीनियर क्लब मेट। राधा कृष्ण टेम्पल प्रस्तुत करते हैं लाइव ट्रांसफॉर्मेशन विद स्वामी मुकुंदानंद हैपनिंग फ्रॉम जुलाई 24 टिल 30th इट इज टिल नेक्स्ट थर्सडे मीट एंड ग्रेट 8:45 PM टिल 7:15 एंड लेक्चर आर फ्रॉम 7:15 PM टिल 9 PM। सुरदान 2026 वंस अगेन आलाप स्कूल ऑफ म्यूजिक आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सुरदान 2026 म्यूजिक फॉर मिरेकल्स हैपनिंग ऑन सैटरडे अगस्त 8 एट 4 PM इन लुइसविल ग्रैंड सेंटर। विवायो प्रस्तुत करते हैं महारास एंड सुख सैयाजी मनोरथ टुमारो 26th ऑफ जुलाई संडे 4 PM टिल 7 PM विवायो श्रीनाथ धाम हवेली इन कॉपिल टेक्सास। आरडी बर्मन नाइट एंड एक्चुअली दिस ऑलरेडी हैपेंड यस्टरडे नाइट। रघुनाथ टेंपल में दे आर स्टार्टिंग अ हिंदी क्लासेस रघुकुल विद्यापीठ एंड इट इज हैपनिंग एट रघुनाथ टेंपल। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम की जानकारी हम आपको देते रहेंगे।

0: एंड एज आई सेड जी, बिल्कुल बहुत सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि। फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई है DFW हिंदू टेम्पल की प्रतिनिधि वंदना जी, जिनसे करेंगे हम बातचीत फॉर टू इवेंट्स। वंदना जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मैम, एंड बताइए क्या है आपके लिए कुछ बातें आपके पास हमारे शहर में होने वाले टेम्पल में होने वाले इवेंट्स की।
1: थैंक यू निरंजी फॉर हैविंग मी ऑन एयर। आई ट्रूली अप्रिशिएट दिस अपॉर्चुनिटी। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ओनली सुंदरकांड पार्ट बाय श्री अतुल पुरोहित जी। इट इज बी कॉर्नर्ड बाय DFW हिंदू टेम्पल सोसाइटी, आप सभी का अपना एकता मंदिर। तो ये इवनिंग विल बी, दिस इवनिंग विल बी फिल्ड विद डिवोशन, म्यूजिक, डिवाइन वाइब्रेशंस। टाइम विल बी 5 PM। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये प्रसिद्ध डिवोशनल सिंगर हैं हमारे अतुल पुरोहित जी, और उनकी जो सुंदरकांड रेसिटेशन है वो तो उनकी जो गहराई है, म्यूजिकल डेप्थ है, जो उसकी बात ही अलग है। तो आप ये अवसर जाने ना दें। मैं सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि आप सभी DFW हिंदू टेम्पल में आए और इस सुंदरकांड पाठ का हिस्सा बने। एंड जैसा कि मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे कि इसमें सुंदरकांड में कहा गया है कि प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी को असलपुर राजा, यानी कि आपके सभी काम, सभी संकट दूर होंगे। एवरी चैलेंज विल बी इजियर टू ओवरकम इफ यू जस्ट डू द सुंदरकांड। तो
0: जी,
1: सभी से कहते, फिर से अनुरोध करती हूँ कि आइए इस भक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करें। DFW हिंदू टेम्पल में आइए, शाम को 5 बजे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसके बाद महामंगल आरती होगी 7:30 PM एंड महाप्रसाद विल बी एट 7:45 PM। तो आप सभी आए, सुंदरकांड पाठ का हिस्सा बने और आरती के बाद महाप्रसाद ग्रहण करके सुंदरकांड पाठ का हिस्सा बनकर अपने जीवन को संवारें और आसपास के जिसके अपने संकट और दूसरे के संकटों को दूर करने का प्रयास करें।
0: वंडरफुल वंडरफुल, इट हैपनिंग दिस इवनिंग 5 बजे शाम को DFW हिंदू टेम्पल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। और उसके अलावा आपके पास एक और इवेंट की जानकारी है जो हमारे लिसनर्स को प्लीज दे दीजिए।
1: जी, मैं कहना चाहूंगी कि DFW गुजराती समाज इज डूइंग अ वंडरफुल कम्युनिटी सर्विस फॉर आवर यंगस्टर्स। तो जो भी अपने जीवन में, जैसा कि सभी जानते हैं कि इस जीवन को और भी सुंदर बन जाता है अगर हमारा साथी खूबसूरत हो, तो जीवन सफल सा लगता है, सार्थक सा लगता है। तो इसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं, दे आर डूइंग दिस इवेंट हिंदू रिश्ते मैच एंड मिंगल। दिस विल बी ऑन August 8th एंड इट विल स्टार्ट, द इवेंट विल स्टार्ट एट 1 PM। दे आर रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू रजिस्टर on www.gujarati.life/match2026। So, Gujarati Samaj ye conduct kar raha hai, aap log register karein. It will be on August 8th, 2026. Venue will be Spring Hill Suites by Marriott. It will be, it is in Plano.
0: Great,
1: and for
0: great.
1: More information, please reach out to Vigyan Gotwal ji. उनका नंबर दे देती हूँ, बाकी लोग भी हैं, रूपल चौकसी जी, अनिल पटेल जी। सो द नंबर विच आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी इज 214-566-2171। एंड गुजराती समाज वेबसाइट पे जाकर भी आप सभी लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई विल गिव टू रूपल चौकसी, इज द फर्स्ट वन ऑन द फ्लायर। रूपल चौकसी जी, इज नंबर इज 214-7, हर नंबर रूपल चौकसी इज 214-733-0716।
0: Great. So once again, we are talking about DFW Gujarati Samaj event, a matrimonial event, which is happening on August 8th, Rishte Nate, happening at Spring Hill Suites Marriott. And once again, you can call Vigyan ji, Vigyan Gotewal ji, 214-566-2171. थैंक यू सो मच वंदना जी, आज शाम बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी एक भक्तिमय वातावरण में, जहाँ पर हम सुनेंगे श्री अतुल भाई जी को, वहाँ पर उनकी ही मुख से सुंदरकांड का पाठ सुनेंगे और हनुमान जी के चरित्र, हनुमान जी के जीवन की एक बहुत ही खूबसूरत घटना, अद्भुत घटना हम सुनेंगे। सो थैंक यू सो मच वंदना जी फॉर कमिंग लाइव ऑन एयर और हमें यह जानकारी देने के लिए। मैम
1: थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू दिस इवनिंग।
0: एब्सोल्युटली, थैंक यू मैम, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग।
1: थैंक यू, बाय। थैंक यू टू, बाय।

104.9 FM फनेशिया, ये है आपका कार्यक्रम, आप ही से बनता है ये कार्यक्रम जिसका नाम है वंस अगेन कम्युनिटी राउंडअप। जी हाँ, और हम आपके लिए कम्युनिटी आउटरीच के कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रस्तुति कर रहे हैं, और जो भी बातें होती हैं हमारी कम्युनिटी में, हमारी कोशिश होती है, हमारा प्रयास होता है कि आपके लिए वो बातें, वो इवेंट्स की जानकारी हम लाए। एंड इट्स एन एब्सोल्युटली फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी ड्यूरिंग दिस आवर। जी हाँ, 2 से 3 के बीच में हम आपके लिए जो भी अनाउंसमेंट्स, जो भी प्रमोशन करते हैं फॉर ऑल दोज टेम्पल्स, फॉर ऑल द नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस, चाहे आप मंदिर से है, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ से भी आपकी धार्मिक संस्था हो, जो भी आपकी संस्था एक प्रयास में हो हमारे समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, बिल हम आपके प्रयास को सफल बनाने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग दिस आवर।

104.9 FM वन एशिया रेडियो, और ये कार्यक्रम आपके लिए, आपकी प्रस्तुति हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, और जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप विथ मी और होस्ट नीलम दवे। और चलिए एक और कार्यक्रम की आपको जानकारी दे दूँ। आत्मज्ञानी पूज्य श्री दीपक भाई देसाई विल बी इन टाउन अगस्त 6th and 7th। जी हाँ, आपने सही सुना, थर्सडे अगस्त 6th जनरल सत्संग 7 to 9 PM एंड फ्राइडे अगस्त 7th इट्स ज्ञान विधि। And the spiritual seminar is happening once again August 6th and 7th. And the venue, जो आपके लिए मैं बता दूँ आपको कि ये कहाँ पे हो रही है, ये सारी बातें डैलस में हो रही है। And of course, if you want more information, I will give you the number as well. हैपनिंग 4 पॉइंट वेस्ट शेरिटन डालस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट की जो होटल है 4 पॉइंट शेरिटन में हो रही है ये बातें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 1-877-505-3232। वन सेकेंड, दैट इज 1-877-505-3232 एंड 4 पॉइंट वेस्ट शेरिटन डालस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, श्री दीपक भाई देसाई इन डालस अगस्त 6th and 7th 7 to 9 PM Once again, the venue is 4 Point by Sheraton, Dallas Fort Worth Airport, 877-505-3232. Ekal Foundation Fundraising Gala, jiha, Indian Fundraising Gala and Charity Fundraising Event is happening on August 28th. Garland mein ho rahi hai ye baatein, to zarur aap Ekal Foundation ki website par jaiyega, and it's for the very, very noble cause. They also have a बॉलीवुड कथक ऑन द स्क्रीन, ये एक अखिला राव की तरफ से प्रेजेंटेशन। वंस अगेन, इट इज हैपनिंग ऑन अगस्त 28th इन गार्लैंड टेक्सास। इट्स अ फंड रेजिंग गाला एंड इट्स अ वेरी गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल शो। एक अच्छे काम के लिए, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के लिए, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन बैक इन इंडिया, तो आप जरूर आगे आइएगा एंड सपोर्ट एकल फाउंडेशन। वंस अगेन, अगस्त 28th। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लाएंगे कुछ अक्षय पात्र फाउंडेशन की जानकारी। जी हाँ, उनके यूथ वॉलंटियर्स जुड़ेंगे हमारे साथ, और उसी के साथ श्री राम मंदिर प्लानों की कुछ जानकारी होगी, फोर्ट वर्थ हिंदू टेम्पल की कुछ जानकारी होगी। ये सारी जानकारी, ये बातें, ये गाने रहेंगे आप ही के साथ टिल 3 PM हर शनिवार की दोपहर की तरह। जी हाँ, आपका और हमारा साथ होता है, आपका और हमारी पूरी कम्युनिटी का साथ होता है, क्योंकि ये है आपका कार्यक्रम, हमारी पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम, जहाँ पर हमारी कोशिश होती है आपके लिए कुछ ऐसे गाने लाए, इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशनल हो, स्पिरिचुअल हो, और जो बातें लाए वो भी आप ही की जानकारी की हो।

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
2: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
3: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार
4: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं
3: व्हाट
5: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स
0: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
7: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
8: And welcome back. This is once again KZMP 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूँ नीलम आपके साथ रहती हूँ हर शनिवार के दोपहर 2 से 3 के बीच में with this segment on. जी हाँ ये है फनेशा रेडियो की प्रस्तुति आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं ये कार्यक्रम हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए प्रस्तुत करते हैं ये कार्यक्रम वनेसा इवेंट्स को बिल्कुल याद करना चाहेंगे आपके इवेंट छोटे हो या बड़े उससे ज़्यादा यादगार बनाने के लिए एक ही नाम एंड दैट इज़ वनेसा इवेंट 4694428770 योर सेलिब्रेशन पार्टनर आज ही हरी जी को कॉल कीजिएगा 4694428770 वेन्यू सिलेक्शन की बात हो या कोई भी फोटोग्राफी से लेकर हॉस्पिटैलिटी की बात हो सारी बातें एक ही जगह पर एंड दैट इज आज ही कॉल कीजिएगा वनेसा 4694428770 और जब हम बहुत सारे इवेंट्स की और भी ये बातें करते हैं आपके लिए तो चलिए प्रभु देवा की भी आपको याद दिला दूं प्रभु देवा अ ग्रेट ग्रेट डांसर जिसे इंडिया का माइकल जैक्सन भी कहते हैं ही वुड बी लाइव हियर इन DFW कब तो दैट इज हैपनिंग 1st of August दैट इज नेक्स्ट सैटरडे TCU थिएटर ग्रैंड प्रेरी में ज्यादा जानकारी के लिए 2482333828 प्रभु देवा के साथ बहुत सारे और भी टैलेंटेड डांसर्स हैं और जैसे कि आपने हरिणी का नाम सुना होगा नताशा का नाम सुना होगा अलेक्जेंडर सोनल एंड लॉरेन ये सारे डांसर्स होंगे प्रभु देवा के साथ इट्स अ ब्यूटीफुल इंडियन कॉन्सर्ट इंडियन डांस कॉन्सर्ट हैपनिंग ऑन 1st of August वंस अगेन इट इज 2482333828 कार्यक्रम की जानकारी बहुत सारे आप ही के पसंद के गाने इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल ये सारी बातें गाने आप ही के साथ रहेंगे टिल 3 p.m. ऑन 104.9 FM.

ओ रे चिरैया एंड वॉकथॉन. जी हाँ, बात कर रहे थे हम अक्षय पात्रा फाउंडेशन की. एंड इट इज़ हैपनिंग ऑन अगस्त 16th. एक्चुअली वंस अगेन इट इज़ हैपनिंग अगस्त 16th इन द मॉर्निंग 8 AM. सो बात बहुत सारी ऐसी हम करते रहेंगे, आपके सारे इवेंट्स की जानकारी हम आपको देते रहेंगे ड्यूरिंग दिस आवर एवरी सैटरडे. श्री राम मंदिर इन प्लेनो एंड देयर गुरुकुल एनरोलमेंट इज नाउ ओपन एंड क्लासेज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd of August. वंस अगेन क्लासेज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd of August. सत्यनारायण पूजा ऑन 29th of July. गजानन महाराज गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन ऑन 30th. माता की चौकी ऑन 14th of August. एंड श्रावण मंडे स्टार्टिंग ऑन 3rd of August. ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं बाय श्री राम मंदिर इन प्लेनो. 29th of July is Guru Purnima. Many temples across DFW are having celebrations, including Sri Ram Mandir in Plano, Fort Worth Hindu Temple, Sai Baba Temple, and also Raghunath Temple, including DFW Hindu Temple. Once again, it is 29th of July, Guru Purnima celebration. और भी ऐसे इवेंट्स की एक बार फिर से आपको मैं याद दिला दूंगी, जानकारी दूंगी, क्योंकि ये है आपका कार्यक्रम, हमारा कार्यक्रम, पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम, Community Roundup. Ready.

ईमान का असर ऑन 104.9 FM। जी हाँ, कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, इंस्पिरेशनल, पैट्रियोटिक गाने सुन सकते हैं आप इसी सेगमेंट में हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM। माइंडफुल हैप्पीनेस एंड वेलनेस वर्कशॉप एंड दिस इज हैपनिंग विथ मेडिटेशन गुरु अर्चना दीदी। जी हाँ, बहुत सारे और भी ऑप्शन है आपके पास। 7th, 8th, 9th, August 3rd, 3 days की है ये सेमिनार वर्कशॉप। फ्राइडे 6 PM टिल 8:30 PM भारतीय निवास में, 8th August 10 AM टिल 12 इट इज श्री रघुनाथ टेम्पल। वंस अगेन 8th August 6 PM टिल 9 PM DFW हिंदू टेम्पल। 9th August 10 AM टिल नोन श्री रघुनाथ टेम्पल। दिस इज वेलनेस वर्कशॉप विथ मेडिटेशन गुरु अर्चना दीदी। INT एक बार फिर से 49th आनंद बाजार लेकर आए हैं आपके लिए फ्रिस्को में 15th of August 2 PM ऑनवर्ड्स कॉमरिका सेंटर। रघुनाथ टेम्पल स्टार्टेड हिंदी क्लासेस, चलो हिंदी सीखे रघुकुल विद्यापीठ। श्रीनाथ दाम हवेली इन कॉपेल प्रस्तुत कर रहे महाराज एंड शुक सयाजी मनोरथ, हैपनिंग टुमारो 26th of July संडे 4 PM टिल 7 PM। सुरदान 2026 म्यूजिक फॉर मेरेकल्स एंड दिस इज बाय आलाप स्कूल ऑफ म्यूजिक, हैपनिंग वंस अगेन एक बार फिर से चैरिटी के लिए August 8 लुइसविल ग्रैंड सेंटर। Mindsets for happiness and fulfillment and this is life transformation with Shri Mukundanand ji, Swami Mukundanand ji, July 24th till 30th. Sundar Kant Path by Shri Atul Purohit ji and group happening this evening July 25th 5 PM onwards DFW Hindu Temple. Akshay Patra Foundation Walkathon happening on 16th of August. Once again, it is August 16th. Akshay Patra Foundation के लिए आप जरूर जाएगा। Walkathon happening DFW Chapter Sunday, August 16th, 8 AM. And the address is Wind Haven Meadows Park, 5400 Wind Haven Parkway, Plano, Texas. आत्मज्ञानी श्री दीपक भाई देसाई would be in Dallas, August 6th and 7th, Sheraton में. 4 Points by Sheraton, Dallas DFW Airport. Rishte Nate and it is by DFW Gujarati Samaj happening August 8th and it is also Springfield Suites by Marriott. DFW Ekal Chapter, Ekal Foundation ki ye hai fundraising annual gala happening on August 28th and it is happening Garland Center. It's a fundraising gala, zarur aage aaiye, support the Ekal Foundation's effort and once again it is on August 28th. Main hoon Neelam Dave, ye karyakram prastut karti hoon aapke liye har shanivar ke dopahar 2 se 3 ke beech mein hamare karyakram mein hum jo bhi baatein laate hain wo aapki baatein hoti hain. Ji haan, agar aap bhi aapke events ki baatein, events ki jankari hum tak pahunchana chahe, then well, neelam@funasia.net.

कुछ इंस्पायरिंग पैट्रियोटिक स्पिरिचुअल ऐसे गाने ऐसी बातें आप ही के लिए और आप ही के इवेंट्स की जानकारी के साथ। जी हाँ दोस्तों, यह आपका कार्यक्रम। अगर आप कोई भी आपके इवेंट्स की जानकारी हम तक पहुँचाना चाहे देन प्लीज डू रीच आउट टू अस neelam@oneasia.net। इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर 501c3, अगर आप इंडिविजुअली किसी प्रयास में है, किसी संस्था को मदद कर रहे हैं, किसी परिवार को मदद कर रहे हैं, आपके जो भी कैंपेन को आपकी अवेयरनेस हम तक पहुंचाना चाहे देन प्लीज डू रीच आउट टू अस एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। वंस अगेन इट इज neelam@oneasia.net। क्योंकि ये कार्यक्रम है पूरी कम्युनिटी का, ये कार्यक्रम है आपका, हमारे लिए एक ही प्रयास है आपके लिए कि जो हम लाए आपकी जानकारी वो हो किसी के समाज के लिए, किसी ना किसी से हम जानकारी दे पाए। एंड दैट इज वंस अगेन कम्युनिटी राउंड अप एवरी सैटरडे। एक छोटी सी कहानी से ये कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगी। जी कार्यक्रम सुनते आप हर शनिवार, आपके सहकार के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तो कहानी किस्त ऐसी है कि एक छोटा सा शहर था और उस शहर में अंधेरी गली, तंग और अंधेरी गली थी। गली में स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही थी, बिगड़ गई थी। सो जिससे रात के समय वहाँ से जितने भी गुजरने वाले बुजुर्ग थे, बच्चे थे, कहीं ना कहीं चोट लग जाती थी। लोग सालों से देख रहे थे कि भाई लाइट बिगड़ गई है, लाइट बिगड़ गई है। सो म्यूनसिपलिटी को, गवर्नमेंट को कोस रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। सबको लग रहा था कि अरे गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, लाइट चल रही नहीं है, यहाँ की म्यूनसिपलिटी क्या कर रही है, वगैरह वगैरह लोग कोस रहे थे। एक शाम एक छोटा सा बच्चा था जो स्कूल में पढ़ रहा था, उसने देखा कि हर रोज़ की ये किचकिच है, हर रोज़ कोई ना कोई यहाँ पे खड़ा रहता है स्ट्रीट लाइट के नीचे एंड दे वुड स्टार्ट कर्सिंग गवर्नमेंट और चला जाता है। उसने बाजार से जितनी भी उसकी अकल थी एक बिजली का बल्ब लंबा तार खरीदा, अपनी खिड़की के बाहर, अपनी जो घर के खिड़की के बाहर वो तार और वो बल्ब लगा दिया, जहाँ से गली की तरफ वो लाइट थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगी। उसको देखकर उसका जो एक दूसरा दोस्त था उसने भी वही किया, उसने भी अपनी खिड़की के बाहर एक बल्ब लगा दिया ताकि उसकी रोशनी धीरे धीरे गली में आ पाए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कभी कभी ये बहुत ही आसान होता है कि हम किसी को कोसना कि ये काम इतने नहीं किया, इसका काम था, देखिए गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने किया नहीं, बल्ब इतने सालों से बिगड़ गया है, कोई आ नहीं रहा है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जब हम दूसरों के भरोसे छोड़ देते काम, सोचते हैं कि भाई ये उसका काम है, वो कर लेगा, मैं क्यों करूँ, मेरा काम थोड़ी है, तब कुछ नहीं होगा। बस काम बदलाव के लिए एक छोटा सा कदम उठाना होता है। छोटा सा कदम अगर हम उठाएंगे तो हमारे साथ कारवा जुड़ते जाएंगे, समाज जुड़ता जाएगा, कम्युनिटी जुड़ती जाएंगी। और वही है बातें कम्युनिटी की एवरी सैटरडे विथ मी योर होस्ट नीलम दवे टिल 3 PM।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better।
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
8: Wait, itna sab aur price?
7: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
8: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
9: बेटा, 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
15: जीनी, हुकम मेरे आका।
16: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
15: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका। लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
16: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
15: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
16: और एंटरटेनमेंट,
15: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
16: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
15: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
17: जाने वो कौन सा देश,
10: जहां तुम चले गए।
14: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
3: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
11: सच में सब संभाल लेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: Cínico.
1: बोरिंग दिनचर्या में
2: घोलिए नए रंग फनेजा रेडियो के संग।

0: it.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं.
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं.
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं.
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
9: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
7: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
5: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
7: तो चल उन सेल्फी से पिज्जा खाते हैं.
5: व्हाट?
14: दिस फ्रेंडशिप डे, ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन. पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
15: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.

लवली सॉन्ग इंडीड. स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. फिलवक स्टूडियो की घड़ी में इट्स 42 मिनट्स पास्ट 3 on this 25th of July 2026. I'm so glad you decided to spend your Saturday afternoon with us. जैसे कि आप जानते हैं, हर Saturday की दोपहर 3:30 से लेकर 5 बजे तक I have a special segment for you, which is titled बोली प्यार की. अगर आपने पहले ये सेगमेंट नहीं सुना तो चलिए रिकैप कर देते हैं, बता देते हैं what to expect from this show. बोली प्यार की सेगमेंट में हम उर्दू, हिंदी या इंग्लिश के गाने नहीं प्ले करते, बल्कि प्ले करते हैं आपके फेवरेट रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग्स बाय रिक्वेस्ट. अब आपका गाना चाहे सिंधी हो, पश्तो हो, मलयालम हो या तमिल, भोजपुरी हो, गुजराती हो या हो हरियाणवी, वट एवर साउथ एशियन लैंग्वेज सॉन्ग यू वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, फील फ्री टू कॉल अस 972-235-5555. और आइए अब सुनते हैं ये सराय की गीत.

0: ते तेल में पवानिया नदीम अब्बास लोने वाला की आवाज में सुन रहे थे आप ये सराय की लोक गीत. एंड आई नो इट साउंड्स अ लॉट लाइक पंजाबी बट देर आर मेनी लैंग्वेजेस दैट आर सिमिलर टू ईच अदर. 46 minutes past 3 ये है बोली प्यार की. लेट्स सी हमारा अगला गाना कौन सी भाषा में होगा. फनीशा रेडियो आप ऑन एयर है. आपका नाम
1: भारती.
0: जी भारती बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी.
1: I want to listen Kannada song.
0: Kannada song?
1: Popcorn Monkey. Yeah. The movie name is Popcorn Monkey Tiger and the song name is Mahadeva.
0: Okay. Mahadeva gaane ka naam hai. Correct?
1: Yeah.
0: Okay. Let me find
1: movie,
0: that for you.
1: Popcorn Monkey Tiger.
0: ठीक है. मैं play करती हूँ आपके लिए. और भारती जी आप कहाँ से call कर रही हैं हमें?
1: I'm calling from Keller.
0: All right. Thank you for your call. All right, ladies and gentlemen, let's go ahead and enjoy this Kannada song.

सो माई अपोलॉजीज टू यू भारती जी. जैसे हमने सेगमेंट की शुरुआत में कहा था, इस सेगमेंट में हम उर्दू, हिंदी या इंग्लिश गाने नहीं प्ले करते. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू प्ले एन एक्चुअल कन्नडा सॉन्ग, क्योंकि इस गाने में तो सिर्फ एक महादेवा वर्ड ही है जो मुझे लाइक आई कैन रेफर टू एज समथिंग दैट इज नॉट इंग्लिश, हिंदी और उर्दू. सो माई अपोलॉजीज, आई वुड हैप्पीली लाइक टू प्ले अनदर कन्नडा सॉन्ग, बिकॉज दिस इज प्रीटी मच ऑल इंग्लिश एंड राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द साउथ एशियन रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग्स. सो हियर इज अ पॉपुलर ट्रैक दैट आई होप एवरीवन विल एंजॉय. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू काउंट एज आवर फर्स्ट कनाडा सॉन्ग. जैसे कि आप जानते हैं, हर रीजनल लैंग्वेजेस के हम सिर्फ दो ही गाने प्ले करते हैं. नो इंग्लिश, नो उर्दू, नो हिंदी, नॉट ऑन बोली प्यार की.

0: You're listening to Dil Se on 104.9 FM Funisha Radio. मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन हसनात. I'll be with you till 6 p.m. Matangi Entertainment Group brings you India's Michael Jackson. That's right, Prabhu Deva will be live in DFW along with a huge team for the ultimate pan-Indian dance concert. All this is happening on Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre in Grand Prairie. You can book your tickets by calling 248-233-3828. You can also check out Fun Asia social media pages to get a special discount on your tickets, and it's easier to get the tickets there. I will be giving away a Prabhu Deva event ticket shortly. Stay tuned. Let's see who is our next caller. Fun Asia Radio, aap on air hai, aapka naam? Hello, you're on the air, aapka naam?
1: Hello, aap sun sakte mujhe?
0: Ji ji, I can hear you, aapka naam?
1: मेरा नाम है जुबैर.
0: जी जुबैर, बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे आप?
1: तेलुगु गाना चलाइए.
0: तेलुगु गाना, और आपके गाने का क्या नाम है?
1: ये बुमरीलू मूवी से है, और इसका नाम, इसका गाना ये ऐसा है, क्या है, बुमनगी से नीला उंदी.
0: बुमन क्या था? बुमनगी,
1: बुमनु,
0: बुमनु
1: गीस्ते
0: इस्ते
1: नीला उंदी.
0: ओके, मेरी तेलुगु यही खत्म हो जाती है, जस्ट पहले ही बता दूं मैं आपको. ओके, बट यू नो व्हाट, आई एम गोना फाइंड दैट सॉन्ग फॉर यू. अच्छा जुबैर, ये बताइए कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें?
1: जी, मैं सैक से कॉल कर रहा हूँ.
0: ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल. ये रहा आपका तेलुगु सॉन्ग. यू आर लिसनिंग टू बोली प्यार की ऑन 104.9 FM.

0: And you know, I'm amazed at the actors and actresses जो के multiple languages की फिल्मों में काम करते हैं, even though it's not their native language. जैसे कि ये Janelia Deshmukh हैं इस गाने में, in this Telugu song. And I know she's done other, you know, like Marathi language songs. And I know for sure कि ये उनकी अपनी भाषा नहीं है, but she's still able to do that, and that is amazing. All right, before I go on to the next caller, I wanted to just remind you guys ki hum har language ke sirf do hi gaane play kar rahe hain. Okay, to jaise ek telugu gaana ho gaya to bas ek aur hi telugu ho sakega ya ek aur hi kannada ho sakega. I'm also doing the Prabhu Deva live event ka giveaway, and chunke aaj it is the 25th, so the lucky number will be 7, since the combination is 2 + 5 = 7, and it's a 7th month, so yes, lucky number 7, and I will be taking those calls during the break, not right now. Abhi to hum sirf request hi lenge. So chalte hain next caller ki taraf. Fanisha Radio, aap on air hai, aapka naam? Hello? Fanisha Radio ji, aap on air hai, aapka naam?
1: Hi, this is Dipali.
0: Hello Dipali, how are you?
1: I'm good, thank you.
0: बताइए.
1: मुझे मराठी गाना सुनना है.
0: ओके, क्या नाम है आपके गाने का?
1: माउली माउली.
0: माउली या माउनी?
1: माउली, MAULI.
0: ओके, माउली. लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड दैट सॉन्ग.
1: मूवी लई भारी, रितेश देशमुख एंड Janelia, एज यू वर स्पीकिंग अबाउट Janelia Deshmukh जस्ट बिफोर.
0: ओके, लेट्स सी, क्योंकि मुझे कुछ और मिल रहा है, पर थैंक यू फॉर द एडेड इंफॉर्मेशन, दैट हेल्प्स. लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड दैट. आई थिंक मुझे मिल, आपने क्या बोला गाने का नाम है? माउली
1: माउली माउली
0: माउली माउली. और फिल्म का नाम क्या बताया आपने?
1: लई भारी, LAIBHARI.
0: अरे ओके, मुझे बहुत सारे गाने माउली. इज इट माउली विथाल, समथिंग लाइक दैट?
1: यस यस.
0: ओके ओके, ठीक है. ऑलराइट, आई थिंक आई गॉट इट. और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं हमें?
1: प्लेनो.
0: प्लेनो, ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल. ये रहा आपका गाना. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू टेक कॉलर नंबर 7 टू विन द कॉन्सर्ट टिकट.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
7: ओह हाँ, ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
8: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
6: अरे वो केक आया क्या?
7: डीजे कौन हैंडल करेगा?
10: डेकोर वाले को कॉल किया,
7: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
6: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया।
7: ऑसम इवेंट्स?
6: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग।
11: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म।
6: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ।
8: कॉल नाउ एट 214-725-7466, दैट्स 214-725-7466, एंड टर्न योर सेलिब्रेशन इनटू एन ऑसम इवेंट।
12: तारा वो तारा हर तारा।
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
14: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
14: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
16: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
17: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
19: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
20: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
19: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
20: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
21: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
14: Welcome back to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. अभी अभी आपने प्रभु देवा इवेंट का एड सुना. I also want to congratulate Faisal. He was the seventh caller. He was the lucky caller. और उन्होंने जीता कॉन्सर्ट का टिकट. Speaking of events, well, guess what? India Association of North Texas is ready to celebrate India's 80th Independence Day at IANT's आनंद बाजार 2026 सैटरडे अगस्त 15 को हो रहा है ये इवेंट दोपहर 2 बजे से लेकर रात गए तक एट द कोमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट, एक तो ये इट्स इंडोर्स यानी कि आपको गर्मी की चिंता नहीं होगी, दूसरा इट्स फ्री फॉर एवरीवन. यू गेट टू एंजॉय ऑथेंटिक इंडियन फूड, देयर इज अ ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, लाइव म्यूजिक भी होगा, शॉपिंग एंड एन इनक्रेडिबल ड्रोन शो, और फिर Fireworks ka grand finale. So apni family ke saath, apne doston ke saath, come be part of North Texas biggest Indian Independence Day celebration at the Anand Bazaar 2026. All right, ladies and gentlemen, ye hai hamara segment Boli Pyar Ki. Boli Pyar Ki mein hum aapko aapki request par regional languages ke gaane sunwate hain by request. इस सेगमेंट में होल टाइम कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 5 to 10 मिनट्स. सो अगर आप जल्दी में हैं या उतना पेशेंस नहीं है, यू नो आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू फ्रॉम कॉलिंग, पर मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करना चाहती हूँ कि होल टाइम could go up to 10 minutes. But एक गारंटी मैं जरूर दूंगी, इफ यू कंटिन्यू टू स्टे ऑन द लाइन, योर कॉल विल बी आंसर्ड in the order it was received, because I actually look at the time, the exact time when you call and how long you've been holding, so I answer the calls accordingly. So there will be no additional hold time, there are no favorites, I will take the call as they come in. 972-235-5555 hamare studio ka number hai. So far we've played a Saraiki song, Kannada song, Telugu song and ए मराठी सॉन्ग. आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशर रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो,
22: राम कुमार.
14: जी राम कुमार, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप?
22: पंजाबी.
14: पंजाबी सॉन्ग, ऑलराइट. और आपके पंजाबी गाने का क्या नाम है सर?
22: तेरा नहीं रुतबा करदा.
14: रुतबा बाय सतिंदर सरताज.
22: हाँ जी, हाँ जी.
14: All right, such a beautiful song. और राम कुमार जी, आप हमें कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
22: एलन
14: से. All right, thank you so much for your call. ये रहा आपका गाना. And you know, I love all of Satinder Sartaj's song, but this one extra special, है ना?

0: सतिंदर सरताज की आवाज में सुन रहे थे आप रुतबा, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. 11 मिनट्स पास्ट 4, यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 एफएम. बोली प्यार की सेगमेंट विल कंटिन्यू टिल 5 पीएम. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? प्लीज स्पीक अप, यू मिस योर स्पॉट. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, प्लीज स्पीक अप. Okay, I'm going to have to move on to our next. Sometimes I feel so bad jab logon ki ya to call connect nahi hoti ya wo bolte nahi hai. Funisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
1: Nikita.
0: Ji, Nikita, how are you?
1: I'm good, how are you?
0: I'm doing well. Boliye, kaun si language ka gana request karengi?
1: Marathi.
0: Marathi, all right. This is going to be our second Marathi song today. That means no more Marathi song request. Bataiye, kya naam hai aapke gaane ka?
1: येड लागले फ्रॉम सैराट.
0: येड लागले, ऑलराइट, फ्रॉम सैराट. ओके, व्हिच इज क्या नाम था वो, उसकी हिंदी वर्जन भी था, राइट?
1: सॉरी,
0: इसका हिंदी भी वर्जन था, राइट? हिंदी मूवी भी थी, करेक्ट?
1: आई थिंक सो,
0: या. ऑलराइट, आई प्ले योर सॉन्ग. और आप कहां से कॉल कर रही हैं हमें?
1: डैलस.
0: डैलस, थैंक यू.

0: Yaar Lagla, this was our second Marathi song. Amazing music composition. Ajay Atul are the ones to credit for that. 15 minutes past 4. You are listening to Boli Pyar Ki, jisme hum aapko sunvate hain aapki request per regional languages song request. Our whole time between 5 and 10 minutes. Fanisha Radio, aap on air hain, aapka naam? Hello, Fanisha Radio, aap on air hain?
1: Hello.
0: जी आप ऑन एयर हैं. कैन यू हियर मी? हेलो जी, आई कैन हियर यू. आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो
1: हेलो जी, मलिक बोल रहा हूँ.
0: हाँ जी मलिक साहब बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: जी वो पश्तो सॉन्ग है एक, उसका हदीका क्यानी का
0: जानान. ऑलराइट,
1: जानान.
0: आई विल प्ले दैट फॉर यू. और कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें?
1: New Mexico.
0: All right. Well, you drive safely. Thank you so much for being part of our show. Aaiye sunte hain hamare segment ka pehla Pashto song.

0: हदीका कियानी और इरफान खान की आवाज में सुन रहे थे आप ये क्लासिक पश्तो गाना जानान, विच वी प्लेड फॉर मलिक साहब कॉलिंग अस ऑल द वे फ्रॉम न्यू मेक्सिको. ही इज प्रॉबली ट्यून्ड इन टू आवर शो थ्रू द ऐप. आप भी हमारी फनीशा की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. सो आप कहीं भी चले जाएं, हम आपके साथ साथ रहेंगे, आपके हम सफर बनके. वेल, आई डोंट नो वहां का मौसम क्या है, पर मिकिनी में इट्स 98 डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड यस आई नो इट्स रियली रियली हॉट, बट यू नो व्हाट, स्टे इनडोर्स. अगर आपका बाहर जाना जरूरी नहीं है देन स्टे इनसाइड. एंड अगर आप गाड़ी में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका एसी चल रहा है, होपफुली आपका एसी चल रहा है, वरना तो आप गए काम से. बट स्टिल इट्स नॉट टू बैड. यू नो द पास्ट कपल ऑफ डेज इट हैड बीन रियली रियली bad with three digit temperatures. Right now 98, today's low was 81, tomorrow it's going to be kind of the same, high of 98 and a low of 79 degrees Fahrenheit. All right, chalte hain next caller ki taraf. Fanisha Radio, aap on air hain, aapka naam?
1: Hey, my name is Krishna.
0: Ji Krishna, boliye kaun si language ka gana request karenge?
1: It's from Tamil.
0: Tamil song, all right, and what's the name of your song?
1: It's Maranam, Masu Maranam.
0: Okay. Do you know the name of the movie?
1: It's name of the movie is Pata.
0: Is it like a Rajnikant ka gana hai?
1: Yes.
0: Okay. Yeah, yes. I think I found the song and I hope I'm going to play the right one for you. Aap kahan se call kar rahe hain hamein?
1: From Irving.
0: All right. Thank you for your call. I hope मैं सही गाना प्ले कर रही हूँ. वो क्या है ना कि मेरी मेरी तमिल थोड़ी वीक है.

0: எவண்டா மேல எவண்டா கீழே எல்லா உயிரையும் ஒன்னா வைப்பாரு. முடிஞ்ச வரைக்கும் அன்ப சேரு தலையில் ஏத்தி வச்சு கொண்டாடும் ஊரு. நியாயம் இருந்து எதிர்த்து வரிய ஒன்னு மதிப்ப அது ஏன் பழக்கம். காலை இழுத்து உயர நினைச்சா கேட்ட பயசா ரெடியா இடிக்கும்.
1: எத்தான் நந்து வரான் கேட்ட எல்லாம் கண்டு வரான். பெரிய ஒண்ணு போடு தில்லால சுருட்டி வரா காலரத்தான் பெருட்டி வரா முடிய சிலுப்பி விட்டா ஏறும் உள்ளார. மரணம் மாசு மரணம் டப்பு தரணும்.
2: मासे मरना, that was a Tamil song. कितनी एनर्जी थी इस गाने में. सीरियसली इफ यू ट्राइंग टू डू अ वेट लॉस रेजिम यू नो एंड यू वांट टू एक्सरसाइज एंड लाइक ओ मुझे तो एरोबिक नहीं आती मुझे कुछ नहीं आता, पुट अ तमिल वीडियो डांस सॉन्ग और समथिंग एंड डांस विद इट. आई मीन जस्ट वॉचिंग इट I got tired. I was like, oh my God, these people have so much energy. Thank you for tuning in to Dil Se on 104.9 FM. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. एक बार फिर से रिमाइंड करती चलूं, द होल टाइम ड्यूरिंग दिस सेगमेंट इज 5 to 10 minutes. इफ यू हैंग अप एंड कॉल बैक ओवर एंड ओवर, इट इज नॉट गोना मेक इट एनी इजियर और क्विकर फॉर यू. इन फैक्ट इट्स गोना पुट यू बैक इन द क्यू एंड यू हैव टू होल्ड इवन लॉन्गर. सो प्लीज धीरज धरिए, पेशेंस रखिए, सबर का फल हमेशा मीठा होता है. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, प्लीज स्पीक अप.
3: हेलो
2: जी, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
3: मेरा नाम कमल खनाल है.
2: जी बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
3: नेपाली.
2: नेपाली?
3: हाँ.
2: ऑलराइट, क्या नाम है आपके गाने का?
3: पुरानो उदय माया.
2: ओके, कैन यू टेल मी, आपकी आवाज ना इतनी क्लियर नहीं आ रही है, इट साउंड्स लाइक यू आर डिस्टेंट. कैन यू से द फर्स्ट वर्ड अगेन टू मी प्लीज?
3: पुरानो दैना माया.
2: कैन यू स्पेल इट फॉर मी? आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है.
3: पी यू आर ए एन ओ
2: पुरानो ओके
3: एच यू
2: हुदैना माया, इज दैट व्हाट यू सेड?
3: Yes.
2: All right, got it. और आप कमल हमें कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: Fort Worth.
2: Fort Worth. All right, thank you so much. Here is a beautiful Nepali song for all of our Nepali listeners. Enjoy.

0: कुमार सानू और संजीवनी की आवाज में सुन रहे थे ये गाना। आई थिंक इट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा गाना आपने रिक्वेस्ट किया कमल, बहुत एंजॉय किया हमने ये नेपाली सॉन्ग। लेट्स सी हमारा अगला गाना कौन सी भाषा में होगा। फनीशर रेडियो यू आर ऑन द एयर, प्लीज टर्न डाउन द रेडियो सो आई कैन हियर यू बेटर। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: Hi, this is Meenakshi.
0: जी मीनाक्षी, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: मैं भी नेपाली सॉन्ग रिक्वेस्ट कर रही हूँ।
0: अरे वाह, बैक टू बैक नेपाली, बोलिए कौन सा गाना?
1: कुमार सागर का हवा को लहर संगई।
0: कुमार सागर इज अ सिंगर और गाने का नाम क्या बताया आपने?
1: हवा को लहर संगई।
0: हवा, ओके लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड इट। इज इट ओके, आई थिंक आई गॉट इट। और कहाँ से कॉल कर रही हैं आप मीनाक्षी हमें?
1: मैं अरविंग से कॉल कर रही हूँ एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस शो।
0: यू वेरी वेलकम,
1: वी रियली लव इट।
0: ओह थैंक यू। You know, yeah, whenever I see Nepali people and I'm able to identify them and I'm like, oh, do they know who I am? You know, so if you're out there and you think you see me, say hi to me because I want to say hi to some of the listeners who tune into this show. Don't be shy. I'm very friendly.

0: That was Havako Lahar, Kumar Sagar's song. That was our second Nepali song. Unfortunately, hum aur Nepali gaano ki request nahi le payenge because Boli Pyar Ki segment mein we have so many different regional language songs to cover ke har language ke hum sirf do hi gaane play kar payenge. Again, our whole time for this segment is 5 to 10 minutes and right now all 6 lines are on hold. So if you drop the call, it's not going to make it any faster. Do not disconnect. We'll take a break. We'll be right back.
1: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
2: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
3: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं.
2: What?
4: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
5: Hello Texas परिवार, क्या आपको पता है there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for conforming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call कीजिए कामना को at 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
6: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में डोसा.
3: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
7: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
3: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 120 1 or Custer Junction. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
0: खुशामदीद कहती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक। वी स्टार्टेड बोली प्यार की सेगमेंट, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं रीजनल लैंग्वेजेस के गाने ऑल बाय रिक्वेस्ट। द होल टाइम इन आवर सेगमेंट टुडे इज 5 to 10 minutes, सो प्लीज बी patient. It is 35 minutes past 4 on this 25th of July 2026, and this part of our show brought to you by Texas Primary Care. For 13 years, their clinic has proudly cared for our community, and now they are growing with a brand new name and a second Frisco location. Introducing Lenoxy Medical. This has been founded by Dr. Mandeep Acharya. Lenoxy Medical brings you primary care, urgent care, in-house lab testing, x-ray CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan Med Spa services, sabhi ek hi location par. And the best part, they're open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. So you can walk in anytime. Appointment lene ki bhi zarurat nahi hai. All right, let's continue with our segment. Ek baar phir remind karti chalu that we only play 2 songs per language. So recap kar deti hoon aapke liye. Saraiki, Kannada, तेलुगु, मराठी के 2 गाने हो गए, नेपाली के 2 गाने हो गए, 1 पंजाबी 1 तमिल। लेट्स सी हमारा अगला गाना कौन सी लैंग्वेज में होगा। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर होल्डिंग पेशेंटली। क्या नाम है आपका?
15: हेलो, माय नेम इज कृष्णा।
0: क्या नाम है आपका?
15: कृष्णा है मेरा।
0: कृष्णा, हेलो कृष्णा, कैसी हैं आप?
15: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप इतनी देर से होल्ड पे थी, बोलिए।
15: आपकी आवाज बहुत मीठी है।
0: थैंक यू सो मच, मैं जलेबियां खा के आती हूँ। अच्छा ये बताइए कौन सी लैंग्वेज का गाना आप सुनना चाहेंगी?
15: गुजराती।
0: ऑलराइट, क्या नाम है आपके गाने का?
15: गोतिलो गोतिलो
0: गोतिलो। अच्छा, वो तो हमें भी बहुत पसंद है। इट्स सच अ फन सॉन्ग, यू नो, उसमें लैंग्वेज की बात तो आती ही नहीं है। इट इज जस्ट ग्रेट रिदम, ग्रेट वॉइस, मजा आ जाता है सुन के। सो थैंक यू कृष्णा फॉर रिक्वेस्टिंग सच अ पॉपुलर सॉन्ग। ये रहा आपका गुजराती सॉन्ग।
16: प्रवासी

0: कृष्णा जी की रिक्वेस्ट पर सुन रहे थे हम ये ऑसम गुजराती गाना. लेट्स सी हुज़ आवर नेक्स्ट कॉलर. फनीशा रेडियो, थैंक यू फॉर होल्डिंग. आप ऑन एयर हैं. आपका नाम? हेलो.
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: मेरा नाम प्रमिला है और मैं भोजपुरी सॉन्ग की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ.
0: श्योर, आई विल बी हैप्पी टू प्ले दैट फॉर यू. बोलिए, क्या नाम है आपके भोजपुरी गाने का?
1: आप कोई भी भोजपुरी शारदा सिन्हा का बता दीजिए ना, कोई भी सॉन्ग. लाइक
0: किसी सिंगर का नाम लिया आपने, क्या नाम बताया? हेलो,
1: शारदा सिन्हा.
0: आई एम सॉरी, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए.
1: शारदा.
0: ऑल राइट, आई गॉट इट. आई विल फाइंड अ नाइस सॉन्ग फॉर यू. और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं हमें?
1: मैं आर्लिंगटन से.
0: आर्लिंगटन से. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. ये रहा आपका भोजपुरी सॉन्ग एंड थैंक यू फॉर होल्डिंग पेशेंटली. यू आर लिसनिंग टू बोली प्यार की.

0: शारदा सिन्हा की आवाज में सुन रहे थे आप ये भोजपुरी गाना. एंड आई थॉट आई शुड आस्क यू गाइस, लेट्स सी, एक रैंडम क्विज कर रही हूँ कि ये कौन सी हिंदी मूवी का गाना है. एंड यू नो व्हाट, सिंस आई ऑलरेडी हैव समवन ऑन होल्ड टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग, लेट्स सी उन्हें पता है या नहीं. फनीशा रेडियो, यू आर ऑन द एयर. आपका नाम? हेलो, यू आर ऑन द एयर. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. हेलो, प्लीज स्पीक अप. फनीशा रेडियो, हेलो हेलो, प्लीज कैन यू टॉक, अदरवाइज आई हैव टू ड्रॉप द लाइन एंड गो टू द नेक्स्ट पर्सन. हेलो, ओके, माय अपोलॉजीज, आई एम गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है. आपका नाम? हेलो जी, जी आप ऑन एयर है. आपका नाम?
1: हाँ मैम, सुनी दे रहा मैंने.
0: जी जी, क्या नाम है आपका?
1: गणेश. गणेश मैम.
0: दिनेश बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे आप?
1: मैं ओडिया लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करूंगा मैम.
0: ओके, क्या नाम है आपके गाने का?
1: बटर चालू चालू
0: बाटा. ओके, बाटा रे चालू चालू. ऑलराइट, बाय द वे, ये जो भोजपुरी गाना इस वक्त चल रहा था, डू यू हैव एनी आइडिया ये कौन सी हिंदी फिल्म का गाना है?
1: ओ वाव, दैट वाज बहुत पुराना मूवी है मैम.
0: नाम याद नहीं आ रहा?
1: नहीं नहीं मैम, सॉरी.
0: सुपर हिट फिल्म थी, सबने देखी है, कोई ऐसा नहीं है जिसने ये फिल्म नहीं देखी. वो दोनों एक्टर्स की पहली फिल्म थी. अब कुछ याद आया? अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, इट्स ओके इट्स ओके. अच्छा, आप हमें कहाँ, आप हमें कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: मैं मैकेनिज्म में कर लूँ.
0: ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. हम आपका गाना,
1: वन थिंग आई वांट टू टेल यू मैम, सी हमेशा मैं जब भी इस टाइम में बाहर जाता हूँ ना, आपका तो ही आता रहता है, तो आई एम लकी टू हैव अ कॉल आउट, यू नो.
0: आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच. आई एम लकी दैट यू आर ऑन द रोड एट दिस टाइम.

0: सुन रहे थे बाबुल सुप्रू की आवाज में आप ये उड़िया सॉन्ग, इट इज 48 मिनट्स पास्ट 4। ये है बोली प्यार की, जिसमें हम आपकी रिक्वेस्ट पर सुनवाते हैं आपको रीजनल लैंग्वेजेस के गाने। एक भोजपुरी गाना मैंने सुनवाया था एंड आई हैड आस्क्ड कि ये गाना कौन सी फिल्म से, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। लेट्स सी इफ द नेक्स्ट पर्सन हैज द आंसर। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: अब मेरी आवाज सुन पा रही हैं?
0: बिल्कुल सुन पा रही हूँ। अच्छा, कौन जी, रेखा जी बात कर रही हैं?
1: जी रेखा,
0: हेलो, बताइए क्या हाल है आपका?
1: मैं ठीक हूँ। तीन बातें करनी है आज आपसे मैंने।
0: बोलिए।
1: पहला तो ये है कि अभी आपसे किसी ने कहा था बहुत मीठा बोलती हैं।
0: जी
1: है ना, तो आपकी आवाज वाकई में इतनी मीठी है कि हमारे कानों के थ्रू हमारे बॉडी में गई और मुझे तो शुगर हो गई।
0: थैंक यू सो मच, दैट इज सच अ स्वीट कॉम्प्लीमेंट। नहीं, पर आई वुड नॉट वांट यू टू फॉल इल। एज लॉन्ग एज मेरी आवाज से आपको फायदा हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है।
1: फायदा भी हो रहा है, okay. कानों में रस घुलता है। दूसरी बात यह है कि वो गाना उससे था मैंने प्यार किया।
0: बिल्कुल सही, ऑसम, दैट इज द करेक्ट आंसर और आपको प्राइज मिलेगा, सो लाइन पे रहिएगा। और तीसरी बात क्या है?
1: तीसरी बात वो लट्ठे की चादर उत्ते सलेटी रंग माइया।
0: ओके, ये लेकिन आपको कौन सा वर्जन, क्योंकि ये गाना इतने सारे लोगों ने गाया है तो यू डोंट माइंड किसी का भी वर्जन हो, राइट?
1: ओके, ठीक है, गाना तो गाना है।
0: ओके, सो एक पुराना जो सुरेंद्र कौर का गाया हुआ है वो प्ले कर दूं?
1: दैट बिल्कुल।
0: ओके परफेक्ट। और रेखा जी आप कहाँ से कॉल कर रही हैं हमें?
1: टेक्सास, लुइसविल।
0: ऑल राइट, लाइन पे रहिए। फ्लेवर लाउंज का जो गिफ्ट है वो आपके लिए है एंड आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू ऑफ एयर। ऑल राइट, लेट्स एंजॉय लट्ठे दी चादर एंड कॉन्ग्रेट्स टू रेखा जी फॉर विनिंग डिलिशियस फूड फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को।

0: लठे दी चादर, व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग. इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड सॉन्ग जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों में बहुत पसंद किया जाता है और बहुत सारे लोगों ने उसे गाया है. मैंने आपको एक उसका बहुत ही पुराना वर्जन सुनाया. आई होप यू एंजॉयड इट. रेखा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस. फ्लेवर लाउंज फ्रिस्को पे इंजॉय कीजिएगा मजेदार खाना. फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर टू माई क्वेश्चन. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर. फनीशा रेडियो, थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग. आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: हेलो.
0: हेलो जी,
1: कैन यू हियर मी?
0: आई कैन. आपका नाम?
1: यस. नमस्कार जी, मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे है.
0: जी सर, बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: मैं एक अवधी गाना सुनना चाहता हूँ.
0: क्या नाम?
1: अवधी में बच्चों के जन्म पर.
0: अवधी लैंग्वेज का नाम है?
1: यस.
0: Okay.
1: अयोध्या के आसपास जो लैंग्वेज बोला जाता है वो अवधी होता है, अयोध्या और लखनऊ का.
0: ओके.
1: तो अवधी में एक सोहर एक गाना है, ठीक है, और उसके बोल हैं ललना लाल भैले. आप बहुत फेमस गाना है अवधी में.
0: ओके.
1: और बहुत सारे लोगों ने इसको गाया है. आप देखिए, अगर सुना सकते हैं तो ये.
0: ओके, जरूर. और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें?
1: जी, मैं इस समय मेलिसा से बोल रहा हूँ.
0: अच्छा.
1: और सैटरडे को अक्सर करके मैं फोन करता हूँ भोजपुरी और अवधी के लिए.
0: अच्छा, इज इट कॉल्ड जुग जुग जिए से ललनवा के? ओके, तो उसका नाम उन्होंने लेकिन भोजपुरी दिया हुआ है कि भोजपुरी सॉन्ग है, तो भोजपुरी है?
1: नहीं,
0: क्या
1: नहीं, वो ओरिजिनली अवधी है. नहीं, ओरिजिनली वो अवधी है. ये श्री राम जी के जन्म पर गाया गया था, उसके बाद से सिर्फ अलग अलग लोगों ने.
0: ओके, गॉट इट. ऑलराइट, तो ये लीजिए, हम इसका ओरिजिनल वर्जन आपको सुनवा रहे हैं. हियर यू गो.
1: हाँ, थैंक यू मैम.
0: थैंक यू.

0: जुग जुग जीसू ललनवा के सुन रहे थे हम ये गाना. होप यू गाइस एंजॉयड इट. एंड गेस व्हाट, टाइम इज अप, यानी कि अब एक आखिरी गाना प्ले करने की गुंजाइश रह गई है. सो लेट्स सी हु इज आवर लास्ट कॉलर. फनीशर रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? हेलो, आप ऑन एयर हैं, प्लीज स्पीक अप. फनीशर रेडियो, हेलो, आई कैन हियर द विंड, सो आई नो देयर इज समवन ऑन द अदर एंड. Can you please speak up?
1: अस्सलाम वालेकुम जी, can you hear me?
0: वालेकुम अस्सलाम, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: जी अब्दुल रहीम, मैंने इससे पहले कॉल किया था मगर वो कट गया था.
0: हाँ, आई थिंक आवाज नहीं आ रही.
1: थैंक यू सो मच फॉर द शो.
0: श्योर, बोलिए कौन सी लैंग, थैंक यू, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना?
1: अभी बाकी है, अभी
0: गाना. वी कैन डू वन मोर तेलुगु. श्योर, बोलिए क्या नाम है आपके गाने का?
1: जी, इट इज इलैयाराजा's मैस्ट्रो कंपोजिशन. इट इज कॉल्ड आकाशम एनाटिदो.
0: आकाशम, आगे क्या वर्ड बताया आपने?
1: एनाटिदो.
0: एनाटिदो, ओके. मेरी तेलुगु की स्पेलिंग कितनी अच्छी है, पर हम कोशिश करेंगे आपके लिए. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सॉन्ग. और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें?
1: जी मैं रिचर्डसन से.
0: रिचर्डसन से, और ये पुराना गाना है राइट?
1: बहुत ही पुराना. ओके,
0: ठीक है, नो प्रॉब्लम. ये रहा आपका तेलुगु सॉन्ग. एंड दिस रैप्स अप आवर सेगमेंट ऑफ बोली प्यार की.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
7: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
8: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
7: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
8: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
7: और एंटरटेनमेंट,
8: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
7: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
8: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो. 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
13: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
13: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
14: बेटा, 95% आए?
15: हाँ मम्मी।
14: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
16: मेरा?
14: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
16: वो
17: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
19: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
17: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
19: इतना सब और प्राइस?
17: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
20: मैं हीरो।
15: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
16: Welcome back to 104.9 FM Funisha Radio, bringing the community together. Main hu aapki host, aapki dost Tamreen Hasnat. I hope you enjoyed the Boli Pyar Ki segment, jisme humne kitni alag alag bhashaon ke gaane aapko sunwaye. Just to recap, we had Saraiki, Kannada, Telugu, Marathi, Punjabi, Tamil, Nepali, Gujarati, Bhojpuri, Odia. Wow, that was a lot, right? और हर सैटरडे को हम ये सेगमेंट करते हैं. सो फॉर एनी रीजन इस बार आपकी रिक्वेस्ट प्ले नहीं हुई या कॉल थ्रू नहीं हुई, कोई बात नहीं. डू रिमेंबर टू कॉल इन नेक्स्ट सैटरडे. इट्स 6 minutes past 5 ऑन दिस 25th of July 2026. आई होप यू आर डूइंग वेल वेयर एवर इट इज दैट यू आर. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय इंजरी एक्सीडेंट अटर्नी Omar Khwaja. इनका नाम जरूर आपने सुना होगा, और वो इसलिए बिकॉज ही इज नोन टू फाइट इंजरी एंड एक्सीडेंट केसेस इन सच अ ग्रेट वे दैट पीपल हु आर हिज क्लाइंट्स गेट द मोस्ट कॉम्पनसेशन पॉसिबल. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो चाहती है कि कम से कम आपको कॉम्पनसेट करें, बट नॉट इफ अटर्नी Omar Khwaja इज ऑन योर साइड. इफ यू हैव बीन इन एन एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, you need to get in touch with him. Inki consultation bilkul free, plus you don't have to pay him anything because he will only charge you when you win. So number note kar le, last minute wait mat kare. 469-300-5046, or you can visit attorneyomar.com. So ab janab bari hai hamare next segment ki. Hamare next segment ka naam hai border paar se. क्या मतलब है सेगमेंट का? वेल, सेगमेंट का मतलब यह है कि एक वक्त तो ऐसा था जब बीच में बॉर्डर था ही नहीं, सब एक ही देश, एक ही मुल्क था. इट वॉज वन ह्यूज कंट्री वेयर एवरीवन लिव्ड हैप्पीली एंड पीसफुल टिल थिंग्स चेंज्ड एंड इट बिकेम टू सेपरेट कंट्रीज. हमारा कल्चर बहुत हद तक एक जैसा है, हमारी लैंग्वेज बहुत हद तक एक जैसी है, एंड सच पूछिए तो हमारा म्यूजिक तो बिल्कुल ही एक जैसा है. और वो आप आज एविडेंस में देखेंगे, हम आपको प्रूव करेंगे बहुत सारे ऐसे गाने जो बॉर्डर के उस पार से इस पार तक पहुंचे और उन्होंने अपना रंग और रूप कैसे बदला, वो आप सुनेंगे और एंजॉय करेंगे. सो लेट्स गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. ओरिजिनली आई बिलीव कि ये एक फोक सॉन्ग है. सो इन ऑल ऑनेस्टी दिस इज also not the actual original song, but this is the one that became very popular and famous. Aur uske baad jo iski copy bani, wo bhi hum aapko sunwayenge. So let's enjoy Hatika Kiani.

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुन रहे थे आप हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का टाइटल ट्रैक बॉर्डर के उस पार से, और अब चलते हैं बॉर्डर के इस पार और सुनते हैं ये गाना मुसर्रत नजीर जी की आवाज में।

आहिस्ता, मुसर्रत नज़ीर की आवाज़ में, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता। और अब आहिस्ता से हम लेकर चलते हैं आपको बॉर्डर के उस पार।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में ये गाना फिल्म सड़क से लिया गया था और पिक्चराइज किया गया था ये संजय दत्त और पूजा भट्ट पर। यू आर लिसनिंग टू द सेगमेंट बॉर्डर पार से। मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन हसनात एंड आई बी विथ यू टिल 6 PM। आई होप यू आर एंजॉयिंग आवर सॉन्ग सिलेक्शन टुडे। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय श्री कृष्णा ज्वेलर्स। नाउ दिस इज अ स्टोर व्हिच गिव्स रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी। हर तरह की खूबसूरत ज्वेलरी आपको यहाँ इनके पास मिलेगी, चाहे आपको डायमंड्स पसंद है या कुंदन पोलकी सेट चाहिए। Whatever it may be, whatever is the occasion, you will find something special here, whether you are buying something for yourself or a gift. Now, they've got a new location in Frisco, which is on 13145 on Main Street. So, do check it out. That is Shri Krishna Jewelers. Border Par Se ka jo agla nagina hum aapko sunwane ja rahe hain. I know it's going to make many of you very, very happy.

रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। उस्ताद मेहदी हसन साहब की आवाज में सुन रहे थे आप ये गजल। और अब तैयार हैं आप बॉर्डर के उस पार जाने के लिए?

लेकिन फ्रॉम द फिल्म बाजी, ये गाना आमिर खान और ममता कुलकर्णी पर पिक्चराइज किया गया था. आवाज तो आपने पहचान ली होगी, उदित नारायण. And I believe that was Anuradha Podwal, if I'm not mistaken. 24 minutes past 5, you're listening to our special segment, Border Parsi. And this part of our show brought to you by Page 3 Eatery. If you haven't checked it out, you've got to. I don't know what you're waiting for. They've got some of the best kebabs, chaats, fusion bites and mocktails. And it's a perfect place for brunch, lunch, yeah, phir dinner. टेस्ट आपको मिलेगा जो बिल्कुल अलग है, यूनिक है, हटके है. एंड ऑफ कोर्स आजमाइश शर्त है, यानी कि ट्राई आउट कीजिए, फिर ही आप ये कह सकेंगे. नाउ दैट्स पेज 3 ईटरी एट हब 121. यू कैन विजिट देयर वेबसाइट page3eatery.com. बॉर्डर पार चलते हैं एक बार फिर और सुनते हैं अबरारुल हक का गाया हुआ ये गाना.

असा ते जाना बिलो ते कार सुन रहे थे आप अबरारुल हक की आवाज में ये सुपर हिट गाना और ये पहुंचा बॉर्डर पार।

0: सनी देओल पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म जिद्दी से लिया गया था और आवाज थी ललित सेन की। आई होप यू आर एंजॉयिंग आवर सेगमेंट बॉर्डर पार से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं एक ओरिजिनल गाना और फिर उसका रीमेक वर्जन फ्रॉम द अदर साइड। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक, सो कहीं जाइएगा नहीं। इफ यू हैव एनी फीडबैक फॉर आवर प्रोग्राम, यू वेलकम टू कॉल 972-235-5555.
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट। एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game।
2: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
3: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
2: कहाँ?
1: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब।
5: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
6: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 469-734-3338, 469-734-3338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
13: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
14: तो चल उन सेल्फी से पिज्जास खाते हैं।
13: What?
15: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
16: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
0: खैर, मकदम करती हूँ तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM. फनीशा रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तमरीन हसनात. आई बी विद यू टिल 6 PM. हो सकता है कि आज आप ये प्रोग्राम पहली बार सुन रहे हैं, इन विच केस यू लाइक ये मेरी दोस्त कब बनी, मुझे तो नहीं पता चला था कि रेडियो पे मेरी एक दोस्त है. वेल, मैं बहुत पुरानी दोस्त हूँ, एज एन आपकी नहीं पर रेडियो वालों की बहुत पुरानी दोस्त हूँ. आप पहली बार सुन रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, हम आज नई दोस्ती कर लेते हैं. आई एम ऑन एयर एवरी सैटरडे एंड संडे बिटवीन 3 and 6 PM, सो डू ट्यून इन टू 104.9 FM ड्यूरिंग दोज डेज. It is 34 minutes past 5 on this 25th of July 2026. उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और हमारे आज के सेगमेंट यानी कि बॉर्डर पार से को इन्जॉय कर रहे हैं, जिसमें हम दोनों तरफ एज इन बॉर्डर के दोनों तरफ से गाने सुनवा रहे हैं और मिलते जुलते गाने. आफ्टर ऑल हम रिलेटेड हैं कि नहीं, जुड़वा भाई बहनों की तरह जो बचपन में बिछड़ जाते हैं. दैट्स हाउ आई फील अबाउट हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान. एनीवे, दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय PMJ जूल्स. नाउ दिस इज देयर ब्रांड न्यू शोरूम हियर इन DFW एंड इट्स इन फ्रिस्को. पिछले 60 सालों से दे हैव बिन विनिंग पीपल्स हार्ट्स विद देयर ब्यूटिफुल ज्वेलरी, टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप. और अब वो तमाम ज्वेलरी यहाँ फ्रिस्को में आप खुद देख सकते हैं और खरीद सकते हैं अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए. स्पेशली अगर आप, इसीलिए दोस्त की बात तो मैंने इसीलिए तो की थी पहले. यस, मैं अपनी बात कर रही थी. तो आप अगर मेरे लिए कोई अच्छा गोल्ड, डायमंड या कोई खूबसूरत सा सेट लेना चाहते हैं, देन यू कैन गेट इट एट PMJ जूल्स. नाउ दे आर प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा गतमेनिनी एंड इट्स अ नेम दैट इज ट्रस्टेड बाय जनरेशंस. पर अब यहाँ फ्रिस्को में है आपके लिए, मेरे लिए, मेन स्ट्रीट पर. So you will find the most beautiful jewelry for yourself or once again apni friend ke liye jaise ki main. All right, continue karte hain hamara segment aur sunte hain ye gana border ke us paar se aawazein hain Mehdi Hasan aur Nahid Akhtar ki.

मेहदी हसन साहब और नाहिद अख्तर की आवाज में ये गाना जो आपने सुना पाकिस्तानी फिल्म नजराना से लिया गया था, जो कि 1978 में रिलीज हुई थी। और फिर बहुत सालों के बाद अलका याग्निक, शंकर महादेवन और उदित नारायण ने इसे गाया फिल्म बड़े दिलवाला के लिए। यू आर लिसनिंग टू बॉर्डर पार से।

What a lovely song, बहुत ही प्यारा गाना लगता है मुझे ये. Original गाना भी बहुत प्यारा and this remake version from Bollywood equally beautiful. 44 minutes past 5, you're listening to Dil Se on 104.9 FM and I know a lot of people ask me कि मैं कहाँ चली गई थी और अब क्या करती हूँ. So I want to tell you about my company Awesome Events. What I do is full service event management. So if you need some help with your event, अब वो चाहे छोटी सी बर्थडे पार्टी हो या corporate event हो या कोई शादी ब्याह का मौका हो, whatever it is, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ना सिर्फ प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, बल्कि एक्चुअल इवेंट मैनेजमेंट में. हो सकता है कि बहुत कुछ आप ऑलरेडी खुद से मैनेज कर चुके क्योंकि आपको मेरा पता नहीं था. दैट्स ओके, आई कैन हेल्प यू ऑन द डे ऑफ, ताकि जो जो कुछ आपने प्लान किया है मैं वैसे ही उसे एग्जीक्यूट कर सकूं. एंड लेट्स से उसके लिए भी आपने किसी को हायर कर लिया, नो प्रॉब्लम, आई कैन बी देयर टू एमसी योर इवेंट और टू ऐड सम एंटरटेनमेंट वैल्यू टू योर सेलिब्रेशन. गिव मी अ कॉल 214-725-7466 214-725-7466 फॉर एनी रीजन. इफ यू आर नॉट एबल टू राइट इट डाउन, आप स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर लें, मैं आपको फिर से दे दूंगी. एंड अगेन, दैट इज ऑसम इवेंट्स, दैट्स व्हाट आई डू, मेक योर इवेंट ऑसम. आइए बॉर्डर पार से सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं इस अगले गीत की तरफ.

तस्वर खानम के गाए हुए इस बहुत ही पुराने पाकिस्तानी गाने को श्रेया घोषाल ने बहुत ही खूबसूरती से निभाया फॉर द फिल्म, आई बिलीव इट वॉज क्या नाम था, जहर, जी जहर फिल्म के लिए इसी गाने को गाया श्रेया घोषाल ने. यू आर लिसनिंग टू बॉर्डर पार से.

अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, जहर फिल्म से लिया गया ये गाना आप सुन रहे थे एज पार्ट ऑफ आर सेगमेंट बॉर्डर पार से। और इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताबुन किया है तारा कमर्शियल एनर्जी ने। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, यू वांट टू मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विद एन कमर्शियल एनर्जी कंपनी दैट गिव्स यू द बेस्ट रेट्स, reliable service and has a customized energy plan that works for you. Well, that's what Tara Energy has been doing since 2002. So here's a company you can trust. Give them a call 844-428-2808 or visit taraenergy.com. Aye, border par se select kiya gaya ek aur nagina aapki khidmat mein pesh karte hain.

बहुत खूबसूरत है मेरा सनम उस्ताद मेहदी हसन साहब की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत पुराना पाकिस्तानी गाना, और जब ये बॉर्डर पार पहुंचा तो और भी खूबसूरत हो गया अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गाना सुनिए और मुझे बताइए ये कौन सी फिल्म से लिया गया है, स्पेशली इफ यू हैवंट वॉन द गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन, बिकॉज इनाम में यही मिलेगा आपको। सो इफ यू हैव वॉन प्रीवियसली यू डू नॉट क्वालिफाई, बट इफ यू हैव नॉट देन ट्राई योर लक। लिसन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग एंड टेल मी कि ये गाना कौन सी फिल्म का है, और जीतिए फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। 972-235-5555 है हमारे स्टूडियो का नंबर।

कॉन्ग्रेचुलेशंस अशोक, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये गाना फिल्म सैजन से लिया गया था एंड माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज किया गया था। एंड यू हैव जस्ट वन योरसेल्फ अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन।

0: को सनम। अशोक साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, फिल्म का नाम साजन था। एंड ऑल द अदर पीपल हु अटेम्प्टेड टू आंसर, सिंस आई वाज डूइंग द गिव अवे टू द फर्स्ट पर्सन हु कॉल्स विद द करेक्ट आंसर, अशोक साहब फन पिज्जा किचन के गिफ्ट कार्ड के हकदार बने। आई होप आप लोगों ने आज का ये सेगमेंट इंजॉय किया। बॉर्डर पार से में हमने आपको बहुत सारे ओरिजिनल और फिर रीमेक गाने सुनवाए। एंड डोंट वरी इफ यू थिंक दिस वॉज अ ग्रेट शो, वेल आगे आगे देखिए, एज इन कल आपसे होगी फिर मुलाकात, सेम प्लेस सेम टाइम राइट हियर ऑन 104.9 FM।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better।
8: ये तारा वो तारा हर तारा।
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
11: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
12: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
11: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
17: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
18: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
11: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार,
9: आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
17: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
19: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
20: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
19: कैसे?
20: पेज 3 ईटरी?
19: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
20: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
19: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं.
21: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat. For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी और आपका और मेरा साथ आज कुछ खास होने वाला है क्योंकि हम एक साथ बने रहने वाले हैं, ना कि एक घंटे ना कि दो घंटे, पूरे के पूरे 3 घंटे 6 से 9 का शो होने वाला है। तो बहुत सारे मजे आने वाले हैं दोस्तों, स्टे ट्यून्ड। और आज का टॉपिक शुरू करती हूँ फटाफट। तो आज का टॉपिक है ना उन मूवीज के बारे में है जहाँ हमने पूरी फिल्म देख ली होती है लेकिन हमें लास्ट में रियलाइज होता है कि यार एंडिंग ना ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, ये मेरे को थोड़ी पसंद नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ, मतलब हीरो के साथ कुछ इमोशनल हो गए, विलेन से नफरत की, ट्विस्ट का वेट किया और फाइनली एंडिंग आई और हमने सोचा कि अरे यार बस क्या यही इतना ही था, ये था क्या, ये क्यों था। और ऐसे अगर मूवी की मैं बात करूं तो गजनी एक ऐसी मूवी है जिसमें मेरे को लास्ट में लगता है कि अरे यार कल्पना को काश पता चल जाता कि वो संजय सिंघानिया है मतलब कि आमिर की जो आमिर के बारे में उनको पता चल जाता कि एक्चुअल उनका नाम क्या है, जिसके बारे में यू नो आसिन का जो कैरेक्टर था कल्पना का, तो वो थ्रू आउट बातें करती रहती है, उनके अराउंड स्टोरीज बनाती रहती है और उनको पता ही नहीं होता है कि वो सेम पर्सन उनके साथ पूरे मूवी में जो है घूम रहा होता है। तो दैट वाज माय मोमेंट उस मूवी से। और आपके पास अगर आपको कुछ ऐसी मूवी याद आ रही है जहां आपको लगाओ कि यार एंडिंग ऐसी नहीं ऐसी होती तो ज्यादा अच्छा, ये रह गया ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो जस्ट लेट मी नो बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555। और अगर गजनी की बात छेड़ी दी है तो गुजारिश तो बनता है।

आ गई भाई, आप लोग कब से बुला रहे थे कि आ जा रहे। तो ये लीजिए, आरजे सिम्मी आ गई है और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने आप सबसे पूछा है कि भाई वो कौन सी मूवीज हैं जिसकी की एंडिंग आपको पसंद नहीं आई, आपको लगा कि ऐसे नहीं यार, ऐसे होना चाहिए। तो उसमें से अगर हम उन मूवीज की बात करें जहाँ पे लास्ट में एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की डेथ हो जाती है, जो लीड एक्टर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो बहुत बुरा लगता है यार। मतलब कल हो ना हो की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें उस मूवी को देख के ना एक मतलब अलग ही, मतलब इट्स लाइक एन एवरग्रीन मूवी। आप जब जहाँ से शुरू करो आपको इतनी प्यारी लगेगी, अच्छी लगेगी, और हर बार हम उसकी एंडिंग देख के इमोशनल हो जाते हैं। जो अमन का कैरेक्टर है शाहरुख खान का, उसने तो पूरी फिल्म में सबकी लाइफ जो है वो सही करते रहते हैं, सबको लाइफ के मायने सिखाते रहते हैं, नैना को प्यार करना सिखाया होता है, रोहित और नैना को भी मिलाया होता है, और जब फाइनली लगता है कि सब परफेक्ट हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो हमें पता चलता है कि यू नो जो अमन है उन्हीं के साथ काफ़ी ट्रेजेडी हो गई है एंड ही डाइज एट द एंड, विच वी एज ऑडियंस डिड नॉट लाइक एट ऑल। और एक और बात करें रॉकस्टार की, जो एंडिंग है उसमें भी जो है जॉर्डन और हीर की लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती है, दोनों की डेथ हो जाती है, तो वो भी हमें काफ़ी अखरा था। वैसे कौन सी मूवीज़ है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यू नो एंडिंग जो है दूसरी होनी चाहिए थी तो ज़्यादा अच्छा होता, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 9722355555।

0: आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और आज हम बात कर रहे हैं उन मूवीज के बारे में जिनकी एंडिंग हमें कुछ खास पसंद नहीं आई या फिर लगा अरे यार दिल टूट गया, हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमारे साथ फोन लाइन पे हैं शशि जी और वो आपको बताएंगे कि उनको कौन सी मूवीज हैं जिनको की एंडिंग उनको पसंद नहीं आई। शशि जी, ओवर टू यू।
1: हेलो या हाय एवरीवन, मैं शशि प्रभा बोल रही हूँ और मुझे दो क्लासिक मूवीज थी जिसकी एंडिंग मैंने सोचा कुछ अच्छी हो सकती थी तो कितना अच्छा होता। एक था देवदास जहाँ शाहरुख।
0: आई थिंक आपको पीछे आवाज आ रही है। आई थिंक यू मैंशनड देवदास। डेफिनेटली उसमें तो ये मोमेंट होता है ना कि जब लास्ट में ऐश्वर्या और शाहरुख ऐसे होते हैं और गेट बंद हो रहा होता है, ओ माई गॉड, उस टाइम पे लगता है कि अरे यार, मतलब यार मिल लेने देते हैं उस टाइम पे। थैंक यू सो मच शशि जी, आई थिंक वी लॉस्ट यू ओवर कॉल। बट देवदास की बातें हो रही है तो एक देवदास का सॉन्ग प्ले कर लेते हैं।

दिस इज आरजे सिम्मी और आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम। स्टूडियो में वक्त हो गया है 6:45 और मेरा और आपका साथ होने वाला है पूरे 9 बजे तक। तो स्टे ट्यून्ड रहिए भाई, बहुत सारी अमेजिंग बातें करनी है आपके साथ। और आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं बता देना चाहती हूँ कि टॉपिक क्या है। पहले टॉपिक ये है कि हमें उन मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी एंडिंग्स हमें ना ऐसा हमारा हार्ट ब्रेक हो गया या फिर लगा गया यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बुरा हुआ, किसी में एक्टर की लीड एक्टर की डेथ हो जाती है या फिर दो हमारे जो फेवरेट कपल रहते हैं वो मिल नहीं पाते। और ऐसी ही एक मूवी है सदमा, जिन लोगों ने देखी होगी उन लोगों को जो काफ़ी इमोशनल लगी है ये मूवी। उसमें कमल हासन और श्रीदेवी का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही अमेजिंग सा एक बॉन्ड डेवलप होता है दोनों में, उनकी मेमोरी चली जाती है, उनको मेंटल हेल्थ इश्यू हो जाता है और लास्ट में श्रीदेवी परफेक्टली फाइन हो जाती है और वो कमल हासन को ही भूल जाती है। मतलब इतना डिवास्टेटिंग लगता है, वो एक ट्रेन का सीन है अगर आपने देखा हो, आपको याद है तो, अगर सदमा देन यू विल रियली फील इमोशनल एट दैट मोमेंट। और ऐसा ही कुछ हुआ ए दिल है मुश्किल मूवी में। हम सब ने चाहा कि रणबीर और अनुष्का जो है एक साथ आ जाए पर वो आ नहीं पाए और अगेन हम सबको मिला हार्ट ब्रेक। और जब हार्ट ब्रेक होता है तो जो टॉप लिस्ट में गाना है चन्ना मेरेया वो तो प्ले होना ही चाहिए।

और बहुत ही शिद्दत के साथ याद किया है आतिफ जिन्हें इस मूवी को। हम बात कर रहे हैं उन मूवीज के बारे में जिनकी एंडिंग हमें पसंद नहीं आई, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ मोमेंट हो गया, दुख हुआ, एक्टर्स की डेथ हो गई। इस मूवी में भी अगर आप देखें तो जो राधिका मदन और सनी कौशल की जो पेयरिंग रहती है वो मिल नहीं पाते हैं, वो प्लेन सीन अगर आपको याद होगा एंड में, तो वो काफी ट्रॉमेटिक है। और विनय जी ने भी कॉल किया था, उन्हें याद आ रहा है रंग दी बसंती जो मूवी है उसका भी एंड जो है बहुत पेनफुल रहा है, मतलब पीपल वेयर क्राइंग कमिंग आउट ऑफ सिनेमा हॉल्स। और अभी जो पूरे इंडिया में यूथ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है तो उस इस टाइम पे रंग दे बसंती की बातें करना, और मतलब पूरा ऐसा लगता है ना कि द मूवी वॉज अहेड ऑफ टाइम, और आज यूथ की हम बातें कर रहे हैं, उनकी आवाज़ उठ रही है। और अशोक जी ने हमारी अधूरी कहानी को मेंशन किया कि लास्ट में लग रहा होता है कि यार सब सही है सही है सही हो रहा है, और एंड में बूम हार्ट ब्रेक। और उसी का एक गाना हम बजाने जा रहे हैं अभी, हंसी बन गया। आई होप यू गाइज विल लाइक इट, एंड दिस इज आवर जस्ट सिमी। स्टे ट्यून्ड विद फनी शो रेडियो 104.9 FM।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
5: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy. Easy, live safe with Duck Time.
6: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights B.
7: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oora can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit oora.org or call 888.